नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 अगस्त 2026। इस समय 5:57 होने को हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने

0: परियोजना को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, NSS वॉलेंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नक्काशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं, गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को की गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडेम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। प्रस्तुति है

0: उदित तिवारी की और वाचन स्वर हैं मुकाम सिंह चौहान के।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रातःकालीन आयोजन वंदना।

प्रातः कालीन इस पावन बेला में आरंभ करते हैं चंद्रसेन विराट रचित इस देश वंदना से। लीजिए समवेत स्वर में सुनिए।

ये संसार क्षणभंगुर है, इसका आभास होने के बाद भी हम इसे ही जीवन समझते हैं, जबकि ये तो मात्र स्वप्न है। फिर क्यों न उस परम शक्ति की शरण अभिलाषा करें। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद प्रसाद जयपुर वाले के स्वर में सुनिए ये पारंपरिक रचना।

जैसे एक निरर्थक दशा में जलती आग अन्य अनगिनत को प्रज्वलित कर देती है, ठीक वैसे ही परम ज्योति परमात्मा बाहरी रूप से भिन्न भिन्न नाम व रूप वाले प्राणियों को प्रकाशित एवं चैतन्य करता है। केवल एक ही सर्वोपरि ब्रह्म है जो अद्वितीय है। उसकी स्मृति मन में बनाए रखो, उसका स्मरण सदा सुखदायी होता है। पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में सुनिए संत तुलसीदास रचित भक्ति पद।

यदि कोई ठीक ठीक आंतरिकता तथा प्राणों की व्याकुलता के साथ ईश्वर को पुकार सके तो क्या उसके लिए गुरु की आवश्यकता होगी? किंतु साधारणतः हृदय की इतनी व्याकुलता नहीं दिखाई देती, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है ताकि प्रदर्शनकारी नीतियों और आडंबर से बच सकें। कबीर की यह रचना गा रहे हैं जगजीत सिंह।

0: इसी के साथ हमारी आज की वंदना संपन्न होती है।
1: अभी आपने सुना वंदना, प्रस्तुति थी उदित तिवारी की और वाचन स्वर थे मुकाम सिंह चौहान के। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन, उजाला भी बेघर था। आलेख है अक्षर शर्मा के और वाचक हैं नीलेश जोशी।
2: उजाला भी बेघर था, इस दुनिया को देखते देखते एक अजीब सा सच समझ आया। यहाँ हर कोई कामयाब है पर खुश कोई नहीं लगता। कामयाबी की भीड़ और खामोश खुशी का प्रश्न कभी कभी जीवन के विस्तृत आकाश में एक ऐसा प्रश्न उभर आता है जो किसी शोरगुल से नहीं बल्कि

0: झांक लिया जाए तो वह एक अनकही थकान, एक अदृश्य रिक्तता और एक मौन प्रश्न अवश्य दिखाई देता है। मनुष्य ने जीवन को एक दौड़ बना दिया है, एक ऐसी दौड़ जिसमें लक्ष्य बदलते रहते हैं, परंतु तृप्ति कहीं स्थायी नहीं होती। एक लक्ष्य प्राप्त होता है और उसी क्षण दूसरा लक्ष्य सामने खड़ा हो जाता है। यह चक्र अनवरत चलता रहता है और इस दौड़ में मनुष्य यह भूल जाता है कि वह वास्तव में किसकी खोज में निकला था, सफलता की या शांति की। सत्य यह है कि सफलता बाहरी उपलब्धियों का नाम है, जबकि खुशी आंतरिक संतुलन का, और दोनों का मिलन सदैव संभव नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने जीवन के उन सभी स्वप्नों को भी प्राप्त कर लेता है जिन्हें उसने कभी दूर क्षितिज पर देखा था। वह वहां पहुंच जाता है जहां पहुंचने की कल्पना भी कभी साहस का विषय थी। उसके हाथों में उपलब्धियों का संसार होता है, परंतु उसी क्षण उसके भीतर एक सूक्ष्म सी आवाज उठती है, फिर भी कुछ अधूरा है। यह अधूरापन बाहर की दुनिया नहीं देख पाती, परंतु मनुष्य उसे हर क्षण महसूस करता है। यह अधूरापन ही शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इसी संदर्भ में मनुष्य की स्थिति उस दीपक के समान है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाश देता है। वह हर अंधकार को दूर करता है, हर राह को रोशन करता है, हर दिशा को स्पष्ट करता है, परंतु उसका अपना कोई ठिकाना नहीं होता जहां वह स्वयं को स्थिर रख सके। यही जीवन की विडंबना है। जो दूसरों को उजाला देता है वह स्वयं अक्सर अपने भीतर के अंधकार से जूझता है। इसी गहन सत्य को वसीम बरेलवी साहब ने अत्यंत सूक्ष्म और मार्मिक रूप से व्यक्त किया है। जहां रहेगा वहीं रोशनी देगा। किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। यह शेर केवल शायरी नहीं बल्कि मानव जीवन का दर्पण है। चिराग यहाँ मनुष्य का प्रतीक है, एक ऐसा अस्तित्व जो अपने भीतर ऊर्जा, प्रतिभा और प्रकाश के लिए चलता है। वह जहां भी जाता है अपनी उपस्थिति से वातावरण को बदल देता है। किंतु प्रश्न यह है कि स्वयं उस चिराग के लिए विश्राम कहाँ है। वह दूसरों के जीवन में तो प्रकाश भर देता है, पर अपने ही भीतर के कोनों में कभी कभी अंधकार को स्थायी रूप से समाप्त नहीं कर पाता। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी यह कह उठता है कि किस्मत के लेख अच्छे नहीं लिखे गए। यह कथन केवल असंतोष नहीं बल्कि उस अदृश्य रिक्तता की अभिव्यक्ति है जो बाहरी उपलब्धियों से नहीं भरती। शायद सत्य इन दोनों के बीच कहीं स्थित है। मनुष्य जितना अधिक प्राप्त करता है उसकी अपेक्षाएं उतनी अधिक सूक्ष्म और गहरी हो जाती, और यही सूक्ष्मता उसे कभी पूर्ण संतोष की अनुभूति नहीं करने देती, और शायद इसी अनुभव की खोज में मनुष्य जीवन भर चलता रहता है, दीपक की तरह जलते हुए, दूसरों को रोशन करते हुए और अपने लिए एक अदृश्य मकान की तलाश में।
1: ये था आज का चिंतन, उजाला भी बेघर था। आलेख थे अक्षर शर्मा के और वाचन नीलेश जोशी का। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम खेती की बातें में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फेरोमोन ट्रैप से कीट नियंत्रण, इस विषय पर अनुराधा शर्मा की जानकारी।
2: सभी किसान भाई बहनों का डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों ने आज बात करांगा फेरोमोन ट्रैप से कीट नको नियंत्रण इना विषय पर। अपन देखी रहा है कि सबसे बड़ी चुनौती छे खेती में वो छे कीट नको बढ़तो प्रकोप। कई बार हमारा ऐसा किसान कीट न का डर से बार बार रासायनिक कीटनाशक नको छिड़काव करी दे न बार बार करता जाए तो उनकी खेती की लागत बढ़ी जाए न इना बार बार कीटनाशक न का छिड़काव से लाभदायक कीट भी नष्ट हो जाए न जैसे कि पर्यावरण भी प्रभावित हो जाए।

0: ना इना कीटनाशक ना को जी अवशेष छे वो अपनी फसल में भी आई जाए तो अपनी समझा कि हमारा जी भाई बहन छे वो सब इना कीटनाशक ना को सेवन थोड़ी थोड़ी मात्रा में करी राज यदि उका अवशेष उका में छे तो ऐसी स्थिति में समेकित कीट प्रबंधन या IPM का अंतर्गत फेरोमोन ट्रैप जी छे वो एक बहुत प्रभावी उपाय छे, पर्यावरण का अनुकूल छे, कम लागत वालो विकल्प छे। तो फेरोमोन ट्रैप किसान भाई बहन का अपना खेत में उपयोग करना चाहिए। हम फेरोमोन हो जाए सबसे पहले वो बात, फेरोमोन एक प्राकृतिक रासायनिक सुगंध छे जे की कीट आपस में एक दूसरा का संदेश देना का लेना छोड़ज। विशेष रूप से मादा कीट नर कीट का आकर्षित करने का लेना फेरोमोन छोड़ज। वैज्ञानिक ना इन्हीं प्राकृतिक प्रक्रिया को उपयोग कर कृत्रिम फेरोमोन तैयार कर लियो। एक में कही रहे की एक छोटो सो रबर या प्लास्टिक को ल्योर बनाई न रखी जाए न एक अपन समझा कि कप सरी को बनाई न टांगी दीज। ओका में ये सुगंध जी छे वो प्राकृतिक नहीं आई पर कृत्रिम रूप से तैयार ओखा लगाई दीज। जमा इना ल्योर खर ट्रेप में लगावज तो ओकी गंध सी नर कीट आकर्षित हुई जाए न वो ल्योर का पास जाने का लेना कोशिश करज न उन्हें ट्रेप में फंसी जाए। ट्रेप में लगेल फेरोमोन ल्योर नर कीट नख अपना तरफ आकर्षित करज। जब कीट ट्रेप का अंदर पोची ना फंसी जाए तो उका बाद वो बाहर नहीं निकल ही पावता है। जब बहुत बड़ी संख्या में नर कीट उका में फंसी जाएगा तो अमा खेत न बचा मादा कीट, ऐसी स्थिति में मादा कीट न को प्रजनन कम हो जाए, अगली पीढ़ी का लेना कीट न की संख्या कम हो जाए घटी जाए। न एक ऐसी ये भी हो कि किसान भाई बहन का ये भी मालूम पड़ी जाए कि उनका खेत न किना कीट न को प्रकोप हुई रहे न वो उनको प्रकोप खेत में शुरू हुई गोज पर नर कीट तो हुआ उन्हें फेरोमोन में फंसी गज तो मादा कीट न की संख्या कम होना सी नियंत्रण करना में आसान हो जाए। ये फेरोमोन ट्रैप पर्यावरण का लड़ना सुरक्षित रह एक में लाभदायक कीट न को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है क्योंकि मधुमक्खी या दूसरा परभक्षी कीट जी छे वो अपना स्वतंत्र रूप से खेत में उपस्थित रहेगा। कीटनाशक न को अनावश्यक छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ती है किसान भाई बहन का, उत्पादन लागत में कमी आई जाए न कीट न की निगरानी जी छे वो बड़ो महत्वपूर्ण तत्व छे इन्हीं बात को, क्योंकि कीट न की निगरानी हो जाएगा तो उनका नियंत्रण करना भी आसान हो जाए। फल न सब्जी नमा रासायनिक अवशेष जी छे वो कम हो जाएगा क्योंकि जी कृत्रिम जी कीटनाशक नाख ही रहता है हमारा किसान भाई बहन उन्हें नाखना का तो का अवशेष जी छे अपना खाद्यान्न में भी आना वाला ही, तो ऐसी स्थिति में जी मनुष्य छे उनका लेना भी शुद्ध न पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो जाएगा। पर एक बात ये ध्यान रखना की छे कि किसान भाई बहन काई गलती करे कि जब ट्रेप जब लगावत जब खेत न कीट न को प्रकोप खूब हो जाए ओकी बजाय फसल की प्रारंभिक अवस्था में या फूल आवण की स्थिति में यदि वो अपना खेत न ट्रेप न टांगी देगा तो कीट न की जी गतिविधि शुरू हुई उना समय उनकी निगरानी हो जाएगा उनको नियंत्रण हो जाएगा। खेत में कितना ट्रेप लगाणु ई आपका खेत कितो बड़ो छे उना हिसाब से आपका तय करना पड़ेगा। न ये भी बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ट्रेप को उपयोग केवल कीट न की निगरानी करने का लेना लग रहा हो तो 4-5 ट्रेप भी बहुत हो जाएगा, पर यदि कीट न को प्रकोप बढ़ी गोज न उनको नियंत्रण करनोज तो फिर कम से कम 10-15 ट्रेप प्रति हेक्टेयर का है हिसाब से आपका लगाउनु पड़ेगा। न स्थानीय कृषि विशेषज्ञ न की सलाह भी आप उनका में ले सकोज। आज किसान भाई बहन से योज कहनु छे।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आपने सुना डॉक्टर अनुराधा शर्मा से फेरोमोन ट्रैप से कीट नियंत्रण इस विषय पर जानकारी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है। सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगीं। चकित चितवन से सीता जी ने श्री राम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगीं। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से कर दें। वृद्धावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्राण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर धनुष को जो भी तोड़ेगा सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। वक्त है कार्यक्रम विवरण का, तो आइए आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। आज सुबह 7:20 पर कार्यक्रम साहित्यिकी के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा से चर्चा, काव्य की अतुकांत विद्या नवोदित पीढ़ी के लिए कितनी प्रासंगिक। सदाबहार फिल्म मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:35 पर। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे सुबह 8:30 पर। 9:00 लोक संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे विंध्यवासिनी देवी और साथियों के गाए लोकगीत। 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे

वर्षा मिश्रा के गाए गीत। 9:30 पर कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे बाबूलाल बारोट का सारंगी पर बजाया राग नट भैरव। 10:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे जिले की चिट्ठी और 10:05 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे 11:00, फिल्म संगीत 12:00, 2:00 और 2:30 पर। संग्रहालय से सुनिए 12:30 पर। महिला कार्यक्रम 1:00, लोक संगीत 1:30 पर और सुगम संगीत 1:45 पर। रोजाना शाम 5:00 हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम युववाणी। 5:45 का समय है फिल्म संगीत का। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:00। 6:30 पर सुगम संगीत के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे वर्षा मिश्रा के गाए गीत। 6:45 पर लोक संगीत के अंतर्गत आप सुन सकते हैं विंध्यवासिनी देवी और साथियों के गाए लोक गीत। 7:20 पर आप सुनेंगे चर्चा और साथ में सुनेंगे लोक संगीत। 7:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर सुनिए दिल ने फिर याद किया। चित्रगीत का समय है 9:15। 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मन भावन। 10:30 पर कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे ललित मोदी का सरोद पर बजाया राग बागेश्री। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी में समाचार के लिए आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नोपवेशनानन्तरं 13,000 कोटि रूप्यकाधिकाः पञ्चपरियोजनाः अनुमोदिताः। एतासु 4 रेलमार्ग सम्बद्धाः, एका च राजमार्ग सम्बद्धा परियोजना अस्ति। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्येतेषु चतुर्षु राज्येषु रेलमार्गस्य 8 बहुमार्गीय परियोजनाः अनुमोदिताः। असौ उक्तवान् यत् आहत्य 50,4,900,000,000,000 रूप्यकाणां व्ययेन एताः परियोजनाः 31,000,000,000 वर्षात् 31,000,000 वर्षपर्यन्तं पूर्णाः करिष्यन्ते।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव संसूचितवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन बिहार राज्ये मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खण्डस्य राष्ट्रिय राजमार्ग 22 इत्यस्य चतुर्मार्गीय मानकानुसारम् उन्नयनमपि अनुमोदितम्। अस्य व्ययः आहत्य 90,500,000,000 रूप्यकाधिकः अस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां जापानस्य रक्षामन्त्रिणा शिन्ज़िरो कोइजुमी इत्यमुना सह द्विपाक्षिकोपवेशनं करिष्यति। अपेक्ष्यते यत् अस्मिन् उपवेशने हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे रणनीतिक विश्वासः सहयोगश्च अधिकं सुदृढौ भविष्यतः तथा स्थिरतायाः सुरक्षायाश्च प्रवर्धनं भविष्यति। उभौ मन्त्रिणौ सामुद्रिक सुरक्षा क्षेत्रे गहन सहयोगस्य अथ मेक इन इंडिया इत्यस्य च अन्तर्गतं रक्षोपकरणानां प्रौद्योगिक्याश्च क्षेत्रे अधिक निकट सहयोगस्य विषये विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। केन्द्रीय मन्त्री किरेन रिजिजुः एतत् कथनं निराकृतवान् यत् चीन देशः अरुणाचल प्रदेशे 60 किलोमीटर पर्यन्तं अन्तः प्रविष्टः अस्ति। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्री रिजिजुः उक्तवान् यत् बांग्लादेशस्य छायाचित्राणि, दृश्यचित्राणि च चीनदेशस्य अरुणाचल प्रदेशे प्रवेशं मिथ्यारूपेण प्रदर्शयितुं प्रयोज्यन्ते। असौ उक्तवान् यत् एतादृशानि असत्यानि अभिकथनानि सीमां रक्षतां सैनिकानां मनोबलं न्यूनीकर्तुं शक्नुवन्ति तथा अनावश्यकं भ्रमं जनयितुं शक्नुवन्ति। मन्त्री उक्तवान् यत् भारत चीन सीमा सम्बद्धः विषयः गंभीरः अस्ति। सः जनान् आहूतवान् यत् एतादृशे संवेदनशील विषये मिथ्यानि उतवा अप्रमाणितानि कथनानि न कुर्वन्तु। दिल्ल्यां प्रचलितस्य विशेष गहन पुनरीक्षणस्य अन्तर्गतम् आवेदन पत्राणाम् उपस्थापनस्य अन्तिमतिथि अस्य मासस्य 24 दिनांकं यावत् वर्धिता। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः अनुसारम् अधुना प्रारूप मतदात्री सूची अस्य मासस्य 31 दिनांके प्रकाशिता भविष्यति। अभ्यर्थनानां आक्षेपानां च प्रस्तुतेः अन्तिमतिथिः आगामि मासस्य 30 दिनांकं भविष्यति। बांग्लादेशे अद्य राष्ट्रपति पदाय निर्वाचनं भविष्यति। अस्मिन् निर्वाचने सांसदाः शासनाधिरूढस्य बीएनपी दलस्य वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर तथा एकादश दलात्मकस्य विपक्ष संयुतेः प्रत्याशी कर्नल ओली अहमद इत्येतयोः मध्ये चयनं करिष्यन्ति। 35 वर्षाणाम् अनन्तरं प्रथमवारं राष्ट्रपति पदाय निर्वाचने मतदानं भविष्यति। मतदानं अद्य अपराह्णे द्विवादनादारभ्य सायं पञ्चवादनपर्यन्तं संसद्भवने भविष्यति। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का

0: क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन, और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक, ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता विषय पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तीनी दौर में आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल देर रात बारिश हुई। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आज चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल किए, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत को मजबूत बढ़त दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक सूचना। इस गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 यानी आज सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बारिश के दिनों में बच्चों में होने वाली बीमारियां और बचाव। श्रोता, इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अजय दोषी, शिशु और बाल रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 यानी आज सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731।

0: करना ना भूलें। गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 यानी आज सुबह 10:32 से 11:02 तक विविध भारती इंदौर के एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6:00।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज सुबह कार्यक्रम साहित्यिकी के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा द्वारा काव्य की अतुकांत विद्या नवोदित पीढ़ी के लिए कितनी प्रासंगिक, इस विषय पर चर्चा सुनना न भूलें सुबह 7:20 पर।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार के लिए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र बस कुछ ही पलों में।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भव्य, अलौकिक और आपदा मुक्त सिंहस्थ के लिए तैयार हो रहा उज्जैन। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्लोबल स्किल्स पार्क में प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में होंगे शामिल। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हरा कर अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के भव्य, दिव्य, अलौकिक, आकर्षक और आपदा मुक्त आयोजन के लिए सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल उज्जैन को 945.20 करोड़ रुपए की लागत से नए एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात दी। ये 5.30 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं को सहज आवागमन की सुविधाएं प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल कालिदास अकादमी में आयोजित होमगार्ड, आपदा मित्र और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा कि सिंहस्थ धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा मेला होगा।
1: सिंहस्थ सहित पूरे साल जो हमारे बड़े बड़े मंदिरों के बीच महाकाल मंदिर और महाकाल के साथ काल भैरव, मंगलनाथ और अन्य देवस्थानों के लिए पुराने शहर की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक दो एलिवेटेड रोड का हमने भूमि पूजन किया लगभग 1000 करोड़ की लागत से। साथ ही होमगार्ड की ट्रेनिंग का भी शुभारंभ किया। इतने बड़े प्रबंधन में हमको अपने आपदा मित्रों को भी जोड़ना पड़ेगा, पुलिस बल को, होमगार्ड को, सबको सतर्क करते हुए उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है।
0: भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। यह सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल मैहर में 48 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से सांदीपनी विद्यालय, 7 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से ताला में शासकीय महाविद्यालय भवन, 3 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से अमरपाटन में 30 सीटर बालक छात्रावास तथा आवास का लोकार्पण किया। उन्होंने 21 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्यों तथा 19 करोड़ से अधिक की लागत से जनपद पंचायत मैहर, अमरपाटन और रामनगर में जलगंगा संवर्धन अभियान से जुड़े 1069 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने 2 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से पुलिस कंट्रोल रूम तथा 1 करोड़ 47 लाख की लागत से जूरा में नए शासकीय हाईस्कूल भवन और परशुराम धर्मशाला भवन का लोकार्पण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल मैहर स्थित मां शारदा माता मंदिर पहुंचकर विधि विधान पूर्वक मां शारदा का पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री ने मां शारदा के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए कहा कि मां शारदा लोक के निर्माण से मैहर में धार्मिक तीर्थाटन में वृद्धि होगी, जिससे जिले में स्थानीय लोगों के लिए रोजगारों का सृजन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार धार्मिक शहरों में शराबबंदी के लिए कृत संकल्पित है।
2: हमारी सरकार ने पहले नक्सलवादियों को समाप्त किया प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, और अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नशा विरोधी अभियान चला रहे हैं। इसलिए सभी धार्मिक नगरों से हमारी सरकार ने 19 नगरों से दारू की दुकानें बंद की है। हमारे अपने परिवार के माध्यम से हम सब संकल्पित हैं। मैहर में भी दारू की दुकानें शराब की बंद हुई। भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए, हर प्रकार से नशे के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में 550 प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ग्लोबल स्किल पार्क का भ्रमण करेंगे, इसके साथ ही अकादमिक लैब का अवलोकन कर प्रशिक्षुओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं, आधुनिक तकनीकी सुविधाओं और युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की जानकारी लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉ यादव उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से भेंट और चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कौशल प्रशिक्षण और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप युवाओं को तैयार करने से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श भी करेंगे। संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज से 10 सितंबर तक समरसता संकल्प अभियान एवं समरसता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश भर में कलश रथ यात्रा सहित अनेक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा जिले में आज से गांव-गांव और शहरों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वहीं धार और विदिशा जिले में भी 10 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। राजधानी भोपाल के आरसीवीपी नरोहा प्रशासन

तथा प्रबंधकीय अकादमी में आज विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सर्वांगीण उत्थान, आजीविका संवर्धन तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसका शुभारंभ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर करेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के सातवें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा कि तारीख बढ़ने से देश भर के योग्य युवाओं को इस अनोखे युवा एक्सचेंज प्रोग्राम में रजिस्टर करने और हिस्सा लेने का एक और मौका मिलेगा। 18 से 30 साल तक की उम्र के युवा, जिनमें हायर एजुकेशन संस्थानों के छात्र, वॉलेंटियर और युवा प्रोफेशनल शामिल हैं, युवा संगम के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी हिस्सों समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई है। छतरपुर के नौगांव में सबसे ज्यादा 45 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि खजुराहो में 33 मिलीमीटर पानी बरसा। मंडला में 35, मलाजखंड में 16 और जबलपुर में 8 मिलीमीटर बारिश हुई। सीधी और टीकमगढ़ में भी 7-7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज पन्ना में बारिश का रेड और सतना, कटनी, दमोह, मैहर और छतरपुर जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले दो दिनों तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड का सामना करेगी। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। भारत को जीत या ड्रॉ से पूल में शीर्ष स्थान हासिल होगा और वह अगले मैच के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। वहीं मंगलवार को भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर 6-1 से जीत दर्ज की थी। इस जीत ने विश्व कप में भारत की पिछली सबसे बड़ी जीत 1974 के उद्घाटन विश्व कप में स्पेन पर 4-1 की जीत को पीछे छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम ने जनपद के सचिवों और रोजगार सहायकों को VBG राम जी से जुड़े कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत 21 अगस्त को पुनासा विकासखंड के ग्राम अटूट खास में अधिकारियों का दल पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद करेगा। डिंडोरी में लगातार बारिश के चलते कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने जोगी टिकरिया स्थित नर्मदा पुल और नर्मदा डैम घाट का निरीक्षण कर सुरक्षा और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिले में POP और रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। दमोह में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत जिले में जल्द ही दमयंती चना प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। सागर में सागर संभाग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बम्होरी रेगुआ ग्राउंड पर क्रिकेटर क्रांति गौड़ और रणजी खिलाड़ी अक्षत रघुवंशी तथा आर्यन पांडे को सम्मानित किया गया। विदिशा में एग्रीस्टेक अभियान के तहत पात्र किसानों की शत प्रतिशत फार्मर ID बनाने के लिए 20 अगस्त से 15 सितंबर तक प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। क्रिएटिव श्योपुर के तहत NRLM KCTC केंद्र में पोषण एवं परंपरा महोत्सव का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम के HRC के शासकीय कन्या महाविद्यालय और महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में व्यक्तित्व विकास, रोजगार मार्गदर्शन और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और जबलपुर हाईकोर्ट ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के OT टेक्नीशियन के 288 पदों पर 31 मार्च 2026 को जारी मेरिट लिस्ट और उससे हुई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भव्य, दिव्य, अलौकिक और आपदा मुक्त सिंहस्थ के लिए तैयार हो रहा उज्जैन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्लोबल स्किल्स पार्क में प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में शामिल होंगे। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम साहित्यिकी में आइए सुनते हैं, काव्य की अतुकांत विधा नवोदित पीढ़ी के लिए कितनी प्रासंगिक, इस विषय पर चर्चा डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा से।
1: श्रोताओं नमस्कार। काव्य की अतुकांत विधा नवोदित

0: के लिए कितनी प्रासंगिक, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच नागदा के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीना जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि काव्य की जो अतुकांत विधा है, ये है क्या?
1: आदरणीय पाठक साहब नमस्कार। आकाशवाणी
0: जी
1: इंदौर के सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आकाशवाणी ने बहुत लंबे अंतराल के बाद, हालांकि अनुकूलता मेरी ही रही है, कि आज आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। विषय है कि अतुकांत विधा नवोदित पीढ़ी के लिए कितनी प्रासंगिक है, और आपका सवाल भी ये है कि अतुकांत विधा सही मायने में क्या नई पीढ़ी के लिए कितनी प्रासंगिक है, और वो उसके लिए उसका उसका मायने क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है। अतुकांत विधा अगर आप समझना चाहें कि अगर मैं कोई जैसे महादेवी वर्मा की जो लेखनी अगर हम पढ़ें, जयशंकर प्रसाद को हम पढ़ें, तो जयशंकर प्रसाद की और महादेवी वर्मा जी की जो भी कविताएं हुआ करती थी वो सब अतुकांत विधा की हुआ करती थी। और उस अतुकांत विधा में जब वो अपने एक लेखन का पहला शब्द से लेकर अंतिम शब्द तक अपनी कविता लिखते थे, तो जब वो लिखना शुरू करते थे और जब उसको जो पाठक पढ़ता था, तो एक अजीब सा चलचित्र सामने आता था, एक छायाचित्र बन के उभर आता, वो छायावाद की का प्रारूप होता था। और मेरी नजर में अतुकांत विधा अर्थात छायावाद की भावना। तो मैं जब कुछ भी लिखता हूं या अतुकांत विधा में जो भी कोई कवि लिखता है, तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जब भी वो अपने शब्दों को उस ढंग से उकेरे अतुकांत विधा में, तो उसका एक चलचित्र पाठक के मन में चलता चला जाए, उसके आधार पर उसकी एक मनोवृत्ति बने, उसका छायाचित्र बने, एक रेखाचित्र बने, उसके आधार पर उसकी कविता पूर्ण हो। वही एक अतुकांत विधा होती है जो सही मायने में आज नई पीढ़ी उसकी अग्रसर भी है और साहित्य का नया स्वरूप बन के उभर के सामने आया है कि अतुकांत विधा में लोग बहुत ज्यादा चाव से इसको पढ़ने लगे हैं।
0: इसको नई पीढ़ी से कैसे जोड़ते हैं?
1: देखिए पाठक साहब, वो समय चला गया कि अब तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया, बड़े बड़े बड़े बड़े मोटे उपन्यास पढ़ने का चलन मुझे लगता है कि सब खत्म सा होता चला जा रहा है। आजकल सब नेट पे है, सारी चीजें सोशल मीडिया पे है, लेकिन नई पीढ़ी आज के समय में तत्काल सब चीजें चाहती हैं। और तत्काल जब चीजें चाहती हैं, तुरंत सब चीजें चाहती हैं, तो 4 पंक्तियों में 8 पंक्तियों में 12 पंक्तियों में कोई व्यक्ति लिखता है और वो लिख के अपनी बात कहते कहते और समाप्त होने तक उसकी बात उसको सामने वालों को समझ में आ जाए, वही अतुकांत विधा होती है। और बिना तुकबंदी की जो विधा होती है, बिना तुकबंदी वाली, जैसे हम रामायण पढ़ें, हम चौपाई पढ़ें, उसमें वो तुकबंदी समझ में आती है, लेकिन अतुकांत विधा में किसी भी कविता में तुकबंदी नहीं होती, और यही वो अतुकांत विधा होती है जिसकी वजह से पाठक आज इस विधा को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है।
0: आपको लेखन की प्रेरणा कहां से मिली?
1: इसका श्रेय दूंगा मैं पाठक साहब आपकी आकाशवाणी को। इसलिए कहना चाहूंगा कि मुझे आज भी याद है कि 1997 में आपके आकाशवाणी इंदौर ने पहली बार मुझे आपके आकाशवाणी पे पत्र भेजकर मुझे बुलाया गया नागदा से। तो उस समय ये मान लीजिए कि लैंडलाइन ही लोगों के घर हुआ करते थे, मोबाइल तो थे ही नहीं। और उस समय जब पत्र मेरे पास मिला कि आकाशवाणी इंदौर का युवाणी कार्यक्रम हुआ करता, आज भी होता है युवाणी, उसमें उड़ान क्रम होता था, उड़ान क्रम, तो उड़ान क्रम में मुझे इसी विधा के लिए, काव्य लेखन की विधा के लिए, क्योंकि जब मैं थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया था मैंने, तो मैंने कुछ कविताएं लिख के भेजी थी आकाशवाणी में, तो उसके आधार पर मुझे बुलाया। तो और उसके बाद में जब मैंने अपनी बात कहना शुरू की आकाशवाणी में आया, आकाशवाणी में आने के बाद में पहली बार मैंने कविता पाठ किया
0: जी,
1: अब वो अतुकांत थी, तुकांत थी, दोहे थे, मुहावरे थे, मुझे याद नहीं आ रहा पाठक साहब, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब मैंने पहली बार जो कविता लिखी थी और पहली बार आकाशवाणी में जो मुझे मौका मिला कविता पाठ करने का, वो मेरी पहली पायदान थी। और उसी पहली पायदान से मैं धीरे धीरे लिखना शुरू किया। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा सारे पाठकों को कि एक बार आप आकाशवाणी पे आने के बाद आप में एक अलग सी एनर्जी आती है, अलग सी ऊर्जा आती है, यहाँ का माहौल, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के लोगों की सकारात्मक भावना जो प्रेरणा देती है, उसी की वजह से व्यक्ति प्रेरित होता है। और इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूं
0: जी। मीना साहब, आपकी लेखनी बहुत सशक्त है, और अभी तक आपको लेखन के क्षेत्र में कितने पुरस्कार मिले हैं?
1: पुरस्कारों को परिभाषित करना पाठक साहब थोड़ा सा मैं ऐसा सोचता हूं कि मुश्किल सा है, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका हूं। राजधानी नई दिल्ली में तकरीबन 5 से 7 बार मैं पुरस्कारों में प्राप्त किए। आज भी मुझे याद है कि 99 में जब मुझे युवा कबीर अवार्ड मुझे स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के हाथों प्राप्त हुआ था दिल्ली में, और वो भी इसलिए मुझे पुरस्कार मिला था, युवा कबीर अवार्ड पुरस्कार का नाम था। 23 मई 1999 को वो पुरस्कार मुझे शीला दीक्षित जी ने अपने हाथों से दिल्ली में दिया था, और वो मुझे इसलिए दिया था क्योंकि इंडिया टुडे जो पत्रिका आती है, इंडिया टुडे, उसमें मेरा एक पत्र प्रकाशित हुआ था। और उस पत्र के आधार पे मुझे वो पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। तो दिल्ली से होते होते और फिर स्टेट लेवल पे भोपाल में, इंदौर में कई पुरस्कार मिले। लेकिन पुरस्कार, पाठक साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि पुरस्कार अपनी जगह मायने रखते हैं, लेकिन पुरस्कारों से ज्यादा लोगों के दिलों में, लोगों के
0: अपने
1: विचारों,
0: अंदर और आगे कुछ करने की प्रेरणा मिलती है,
1: बिल्कुल
0: एक
1: बिल्कुल
0: नई ऊर्जा का संचार होती है।
1: बिल्कुल पाठक साहब, क्या है कि व्यक्ति जब लिखता है, पढ़ता है, बोलता है, तो व्यक्ति की भावनाओं का अगर सही सम्मान मिलने लग
0: जी
1: जाए तो वही सही मायने में उसका पुरस्कार भी होता है, रियल बैंक बैलेंस आपका वही होता है, ऐसा मैं
0: बिल्कुल
1: सोचता हूं।
0: आपने सही कहा।
1: जी
0: अतुकांत विधा में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयन होने पर आपको कैसा लगता है और क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अतुकांत विधा की, जैसे हमने प्रारंभ में विषय आपकी चर्चा का यही है कि अतुकांत विधा नवोदित पीढ़ी के लिए,
0: जी
1: मैं बहुत बड़े भारत यानी हमारी सनातन भूमि, हमारा संस्कृति, हमारी सभ्यता कवियों और साहित्य से भरी हुई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अतुकांत विधा के लिए अभी हाल ही में मेरे मेरे नाम की घोषणा नई दिल्ली से अतुकांत विधा में युवा साहित्य पुरस्कार के लिए मेरा चयन हुआ,
0: बहुत बहुत बधाइयां
1: और धन्यवाद पाठक साहब। और उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लिखिए,
0: जी।
1: आप अपने कर्म में विश्वास कीजिए, आप अपने सकारात्मक विचार रखिए, आप अपनी लाइन बड़ी कीजिए। जनरली होता क्या है कि करत करत अभ्यास किया जड़मति हो सुजान,
0: जी
1: रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। तो सिल को नहीं पता कि निशान कैसे हुआ, रस्सी को नहीं पता कि मेरी भूमिका क्या थी, लेकिन निशान तो हो ही जाता ना फाटक साहब।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो
0: आपने
1: हम
0: सही
1: अपने
0: कहा।
1: कर्मों में विश्वास करें, हम लेखन में, मैंने
0: कर्म
1: कभी,
0: प्रधान विश्व रचि राखा
1: तो बस वही वही बात है। तो
0: जी
1: फाटक साहब कि हम लोग अपना कर्म करें, अपनी लेखन अगर मेरी रुचि है, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से सारे श्रोताओं को, अपनी रुचि को जिंदा रखिए,
0: बिल्कुल
1: अपनी हॉबी
0: बिल्कुल
1: को जिंदा रखिए। अगर आप अपनी रुचि जिंदा रखते हैं, आप अपनी हॉबी जिंदा रखते हैं, आप अपने विचार जिंदा रखते हैं, और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आप में नई ऊर्जा भरते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा।
1: जी
0: साहित्य समाज का दर्पण होता है। क्या
1: जी
0: नई पीढ़ी साहित्य के लिए अग्रसर हो रही है?
1: बिल्कुल हो रही है पाठक साहब, बिल्कुल हो रही है, बशर्ते हम उस नई पीढ़ी की नब्ज को समझें, पकड़ें। नई पीढ़ी बहुत सेंसिटिव है, बहुत ऊर्जावान है, बहुत सकारात्मक है, लेकिन
0: सोशल
1: हमने,
0: मीडिया पर बहुत कुछ अवेलेबल है।
1: हाँ, लेकिन हमारी धारणा अभी, हमारी धारणा ये बनी है नई पीढ़ी के लिए कि नई पीढ़ी तो आजकल असंस्कारित और अमर्यादित होती चली जा रही है, बिल्कुल गलत है। हम नई पीढ़ी को दोष कैसे दें? मैं ये कहना चाहता हूं कि गमले में लगे हुए पौधे कभी पेड़ नहीं बनते पाठक जी,
0: जी
1: गमले में लगे हुए पौधे कभी पेड़ नहीं बनते, उन पौधों को निकाल
0: चमन
1: कर,
0: में फूल खिलते हैं और वन में हंसते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से वही सहमत हूँ, कहना चाहता हूँ कि गमले में लगे हुए पौधे कभी पेड़ नहीं बन पाते, इसलिए उन पौधों को निकाल के हम जैसे ही जंगल
0: जी
1: में करते हैं या उनका विस्तार करते हैं, तो उन विस्तार में उनकी विधा, साहित्य, लेखन, ये
0: सब कुछ आ
1: सब
0: जाता
1: चीजें
0: है।
1: आ जाती हैं, बशर्ते उनके अभिभावक, उनका समाज, उनका परिवेश, उनके शिक्षक, उनका परिजन उनको पोषित करें, और पोषित करके साथ में उनको ऐसे संस्कार दें कि वो अपने आप में एक नई ऊर्जा के साथ काम करें और बेहतर संस्कृति का निर्माण करें।
0: जी नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, नई पीढ़ी को आपके कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगा कि नई पीढ़ी अच्छा करे, बेहतर करे। जैसे अभी अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो
0: जी
1: हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी विजेताओं से बात की, मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद में यही कहा उनसे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन सारे मिनिस्टर जो भी थे हमारे कॉमनवेल्थ में खेलने वाले, उनसे सबसे यही कहा कि जो खेलेगा वो खेलेगा। मोदी जी ने स्लोगन दिया अभी
0: बिल्कुल
1: दो दिन पहले, जो
0: बिल्कुल
1: कॉमनवेल्थ में जो बच्चे खेल के आए, जो जीत के आए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनके साथ बात की, उनके साथ में उन्होंने यही, उनका स्लोगन ये था,
0: जी जी
1: जो खेलेगा वो खिलेगा।
0: बिल्कुल आपने
1: वैसे
0: सही
1: ही
0: कहा।
1: नई पीढ़ी अगर किसी भी क्षेत्र में काम करती है,
0: जी
1: वो अगर उसमें डीप में जाके, गहराई में जाके अपना काम करेगी, क्योंकि गहराई ना, किसी भी चीज की गहराई नापने के लिए पेड़ डालने पड़ते हैं, पानी की गहराई नापनी हो तो उसमें पेड़ डालने पड़ेंगे,
0: बिल्कुल
1: किसी भी
0: बिल्कुल
1: चीज को समझना होगा, वस्तु स्थिति को समझना होगा, तो तब जाके हम उसकी तह तक जा सकते हैं, पा सकते हैं।
0: आकाशवाणी इंदौर की तरफ से अन्य श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे, खास करके नई जो नवोदित पीढ़ी है
1: जी
0: उसको किस प्रकार से आप मोटिवेट करना चाहेंगे?
1: पुनः पाठक साहब आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आकाशवाणी टीम इंदौर को धन्यवाद देना चाहूंगा, और आकाशवाणी के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को यही कहना चाहूंगा कि लिखिए, जरूर लिखिए, बेहतर लिखिए, अच्छा लिखिए, जैसा भी लिखिए लिखिए जरूर, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को सामने लेके आइए, समाचार पत्रों के माध्यम से लेके आइए, और आपके सामने एक सशक्त माध्यम है आकाशवाणी इंदौर का, आप जो भी कुछ लिखे हैं, जो भी अगर 4 से 5 रचनाएं आप लिख चुके हैं, एक बार आकाशवाणी इंदौर जरूर भेजिए। मुझे उम्मीद है कि आकाशवाणी इंदौर की टीम इतनी अच्छी है, बेहतर है, यहाँ का

0: परिवेश में इतनी सुंदर विवेचना की और खुद ही इसमें आप अवार्ड लेने जा रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम में भाग लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पाठक साहब और पूरी टीम आकाशवाणी इंदौर को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कार्यक्रम साहित्य के में अभी आपने सुना काव्य की अतुकांत विधा नवोदित पीढ़ी के लिए कितनी प्रासंगिक, इस विषय पर राजेश पाठक से डॉ. सुरेंद्र कुमार मीणा की चर्चा। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

श्रोताओ, आइए सुनते हैं एक सूचना। इस गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 यानी आज सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बारिश के दिनों में बच्चों में होने वाली बीमारियां और बचाव। श्रोता, इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अजय दोषी शिशु रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारे ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 यानी आज सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। फोन करना ना भूलें। गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 यानी आज सुबह 10:32 से 11:02 तक विविध भारती इंदौर के FM 101.6 MHz पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

कार्यक्रम सुनहरे पल सुनने वालों को अमृता का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म आदमी से, लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना है शकील बदायूनी की और इस गीत में संगीत दिया नौशाद ने।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत था फिल्म आदमी से। शब्द थे शकील बदायूनी के और संगीत था नौशाद का। श्रोताओ, अगला गीत हम सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: कार्यक्रम सुनहरे पल में आपका स्वागत है। अगला गीत फिल्म संघर्ष से मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।
1: जरा ले

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत था फिल्म संघर्ष से। कार्यक्रम का अगला गीत हम सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: कार्यक्रम सुनहरे पल का अगला गीत चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया हुआ शब्द है साहिर लुधियानवी के, लता मंगेशकर की आवाज़ में, और फिल्म का नाम है वासना।

साहिर लुधियानवी के ये शब्द थे फिल्म वासना से। आवाज लता मंगेशकर की और इस गीत में संगीत दिया चित्रगुप्त ने। अगला गीत फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से, एक युगल गीत लेकर आए हैं हम। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में शब्द हैं शिवान रिजवी के और इस गीत में संगीत दिया ओपी नैयर ने।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से। शब्द थे शिवान रिजवी के और इस गीत में संगीत दिया था ओपी नैयर ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुनहरे पल को अब यहीं विराम देते हैं। इजाज़त दीजिए अमृता को। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। समाचार प्रभात के लिए आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र बस कुछ ही पलों में।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा, ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
4: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd एंड 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
4: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
3: गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी दो दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
5: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
3: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद

0: में कार्य प्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
1: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
0: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
2: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
3: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
5: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है, मौसम सुहावना हो गया है, कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो गौर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिन्दुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्सलवेन में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur, Sitamarhi, Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. 4th round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran, threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstelveen this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
8: Five major decisions have been taken. The first four projects are related to the railways, while the fifth is a highway project. The first four railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradip railway line. The fifth project is the construction of a four-lane highway from Muzaffarpur via Sitamarhi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.
9: Total 13,041 crore rupees ke projects cabinet ne approve kiye.
7: Mr. Vaishnoi informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to a four-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees.
8: The project is becoming a major lifeline for the entire Bihar. It starts from Sonbarsa on the Nepal border and passes through Sitamarhi and Muzaffarpur. It will create a complete transport artery which will benefit Bihar for many years. It is an 83-kilometer brownfield project under which the existing road will be upgraded into a four-lane highway with an investment of
9: 3,591 crore rupees.
7: Union Home Minister Amit Shah will chair 31st meeting of the Southern Zonal Council at Kovalam near Chennai in Tamil Nadu this morning. The meeting is likely to focus on issues requiring coordination between the centre and southern states and union territories. The Southern Zonal Council comprises Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana, along with union territories of Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Chief Ministers of the Southern States and three Union Territories, Puducherry, Andaman, Nicobar Islands and Lakshadweep, are participating in the meeting. More from our correspondent.
10: Six Chief Ministers, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay, Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Kerala Chief Minister Satishan, Telangana Chief Minister Revanth Reddy, Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu and Puducherry Chief Minister Rangasamy are set to participate in the conference. Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep administrators are also likely to participate in the meeting. High-ranking officials including Chief Secretaries and Home Secretaries from the respective states will also participate in the event. Discussions will be held on various key issues including interstate cooperation, economic growth, industrial investments, strengthening partnership, infrastructure development, water resource sharing, education, healthcare, information technology, disaster management, crime prevention and border disputes will be discussed in this meeting. Meanwhile, Home Minister Amit Shah was received by the BJP State President and other senior leaders last night. Later in the night, Mr. Shah also met the Chief Minister of Tamil Nadu, Joseph Vijay, in Kovalam. R. Chidambaranathan from Chennai for Akashwani News.
7: The fourth round of India-Singapore Ministerial Roundtable will be held in Singapore today. The participating ministers from the Indian side are Finance Minister Nirmala Sitharaman, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Minister of State for Commerce, Industry, Electronics and IT Jitin Prasad. A report.
11: The mechanism of ISMR is an important platform to drive cooperation, including in new and emerging areas. Its inaugural meeting was held in New Delhi in September 2022, followed by the second meeting in Singapore in August 2024 and third meeting in New Delhi in August 2025. Deliberations on advanced manufacturing, connectivity, healthcare and medicine, skills development and sustainability from these meetings drive the roadmap for India-Singapore Comprehensive Strategic Partnership CSP roadmap, which was unveiled during the visit of Prime Minister of Singapore, Lawrence Wong, to India in September last year. The MEA said the fourth round of ISMR will enable both sides to review the progress of various ongoing initiatives and identify avenues to further strengthen India-Singapore collaboration. The fourth edition of India-Singapore Business Roundtable that serves as a strategic and advisory forum of key business leaders will also be held along the ISMR. Meanwhile, Dr. Jayashankar met his Singaporean counterpart Vivian Balakrishnan on his arrival in the country yesterday. Payal Sharma, Akashwani News, Delhi.
7: Defence Minister Rajnath Singh will hold a bilateral meeting with the Defence Minister of Japan, Shinjiro Koizumi, in New Delhi today. The meeting is expected to further strengthen bilateral defence relations, enhance strategic trust and cooperation, promote stability and security in the Indo-Pacific region. U.S. Ambassador to India Sergio Gore described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the centre and in the region have taken significant steps to improve the security in the Union Territory. The US envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah at his residence in Srinagar yesterday. Chief Minister Umar Abdullah said the meeting focused on India-US relations and areas where the United States can engage with Jammu and Kashmir. He said the emphasis was on positive engagement and future collaboration. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Bangladesh will hold its presidential election today, with lawmakers set to choose between the ruling BNP stalwart Mirza Fakhrul Islam Alamgir and an 11-party opposition alliance candidate, Colonel Oli Ahmed. The voting will take place for the first time in a presidential election after a gap of 35 years. The voting will be held at the Parliament, Jatiya Sangshad, from 2 p.m. to 5 p.m. today. The president-elect will take the oath as Bangladesh's new president tomorrow evening at the Darbar Hall of Bangabhavan. U.S. President Donald Trump has announced a sweeping new economic warfare against Iran. In a post on Truth Social, Trump said Iran was given several opportunities to reach a deal with the United States but failed to do so. He said Washington will now launch an unprecedented campaign of economic warfare and isolation against Tehran. Trump also threatened economic punishment for any country helping Tehran. He warned that any country allowing its financial institutions, businesses, airports or government agencies to provide support to Tehran will also face tremendous economic consequences. Flood situation remains grim in several districts of North Odisha, with Bhadrak, Kendrapada, Balasore, Mayurbhanj and Kyonjhar districts continuing to face inundation despite a reduction in rainfall. The Subarnarekha is adding to the concern, flowing at 11.8 meters at Rajghat against the danger level of 10.36 meters this morning, affecting around 2,80,000 people. With another spell of rain expected, the India Meteorological Department has issued a yellow warning for Mayurbhanj, Kyonjhar and Sundargarh districts, keeping the flood-hit areas on alert. More from our correspondent.
12: Flood waters continue to pose serious problems in several parts of North Odisha, with many people still marooned as water levels remain high and recede slowly. In Balasore district, Baliapal is among the worst affected, with more than 45,000 people reportedly still marooned. Schools and Anganwadi centers remain closed in Bhadrak district. The Subarnarekha is also rising. At Rajghat, the river was flowing at 11.80 meters at 6 this morning against the danger level of 10.36 meters. Around 2,80,000 people have been affected by the Subarnarekha flood. The IMD has forecast another spell of rain from this Saturday, with yellow warning for Mayurbhanj, Keonzhar and Sundargarh districts, raising concern over further inundation. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
7: On to sports. Indian shuttlers will be in action today in the pre-quarterfinals of the BWF World Championships in New Delhi. Players will look to book their places in the quarterfinals. More from our correspondent.
13: In the women's singles, former world champion PV Sindhu will take on third seed Wang Ziyi of China. In the men's singles, Indian debutant Ayush Shetty will face 11th seed Alvi Farhan of Indonesia. In men's doubles, 5th seed Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will play against Junaidi Arif and Roy King Yap in the round of 16. In women's doubles, the Indian pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will face 7th seeds Rin Iwa Wanaga and Kai Nakanishi of Japan. Meanwhile, in mixed doubles, Dhruv Kapila and Tanisha Krasto will take on China's Guo Xinhua and Chen Fang Hui. With Bhanu, Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
7: In hockey, Indian women's team will face England today in their final Pool D match of the FIH Hockey World Cup at Wagener Stadium in Amstel, Finn. The match will begin at 6:30 p.m. IST. A win or draw will ensure India finish at the top of the pool and qualify for the next round. Indian women's are high on confidence after a record 6-1 win over South Africa on Tuesday. The victory surpassed India's previous biggest World Cup win, a 4-1 triumph over Spain in the inaugural 1974 edition. With this win, India climbed to the top of the Pool D with 4 points from 2 matches. Meanwhile, England must have to win today's match to keep their hopes alive after losing 4-2 to China. On the other hand, the Indian men's hockey team defeated arch rivals Pakistan 5-3 in their final group match yesterday to qualify for the next round. The 4-day-long Inter-Day festival will begin today in Moscow, bringing together the Indian and Russian communities for a celebration of culture, traditions and people-to-people ties. The festival will be held at Gostiny Dvor in Moscow. Being organized under the theme Unity of Cultures, Friendship of Peoples, the festival will feature a diverse program spread across several venues. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
14: Thank you, Anuja. All the dailies have noticed the maiden visit of the present U.S. ambassador to Srinagar. A headline in the Indian Express quoting the U.S. envoy writes, J&K, important part of India, will relook at travel warnings, expressing a strong endorsement of New Delhi's long-standing position on Jammu and Kashmir. Government sharpens Gen Z outreach on social media with One Day, One University, notes the Pioneer along with all other dailies. Modi top social media rankings, adds the Economic Times. A Hindustan Times headline writes about the Supreme Court asking NTA about the progress in exam reforms plan. A headline in the Tribune cites a transformative move launched by India Post to test the feasibility of last mile delivery to the country's most remote and inaccessible corners, which says where the dakya cannot go, a drone can. In its developmental commitment to the state of Palestine, India to build hospital in West Bank seeks to deploy field hospital in Gaza, states the Hindu. On Bangladesh Prime Minister's possible visit to India, Prime Minister Modi assures him of an honorable reception, is another headline in the Tribune. New U.S. immigration rules may mean greater scrutiny for Indians with expanded definition of public charge, reports the Asian Age. And finally, the Times of India refers to a study saying people with no high BP, diabetes or smoking habit lived nearly 13 years longer without dementia than those with all three risk factors. And with that, it's back to you, Anuja.
7: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur, Sitamarhi, Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. 4th round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. U.S. President Donald Trump declares economic warfare against Iran threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstel Finn this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
15: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
16: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि पिंगली वेंकैया का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 2 अगस्त। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के 2 भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से रूपा झा और जबलपुर से मनीषा साखरदांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
17: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
18: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
17: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
18: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
17: शौर्य स्मारक भोपाल समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

विचार अत्यंत ऊंचे थे। उनका परिवार अपनी राष्ट्रभक्ति और नैतिक मूल्यों के लिए जाना जाता था। यही कारण है कि बचपन से ही बंता सिंह ने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना सीख लिया था। माता गुजरी देवी के संस्कारों ने उन्हें गढ़ने का काम किया। बंता सिंह की आरंभिक शिक्षा उनके गांव और पास के प्राथमिक विद्यालय में हुई। वो बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। इसके साथ ही वो बेहद साहसी और न्यायप्रिय थे। उन दिनों भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। गांवों में निर्धनता थी, किसानों पर अत्याचार हो रहे थे और युवाओं के सपने दम तोड़ रहे थे। धीरे धीरे बंता सिंह का बाल मन इन परिस्थितियों को समझने लगा था। जब वो डीएवी स्कूल जालंधर में पढ़ रहे थे, तभी कांगड़ा जिले में भूकंप आया। बंता सिंह घर से जब पढ़ने जाते तो भूकंप पीड़ितों के लिए अनाज की बोरियां ले जाते। धीरे धीरे बंता सिंह युवा हुए और उन्होंने देखा कि उनके अनेक साथी बेहतर जीवन की तलाश में विदेश जा रहे हैं। उन्होंने भी विदेश जाने का निर्णय लिया। आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। लेकिन ये एक सामान्य यात्रा नहीं थी। ये यात्रा एक योद्धा की यात्रा साबित हुई, जो अपने भीतर एक नए युग का सूर्य लेकर चल पड़ा था। अमेरिका में रहते हुए ही उनके भीतर क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ।

विदेशी सरजमीं पर रहते हुए बंता सिंह ने महसूस किया कि भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है, उनके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है। उन्होंने गदरी लहर में कूदने का फैसला कर लिया। गदर पार्टी के प्रधान बाबा सोहन सिंह भकना ने पुस्तक मेरी राम कहानी में लिखा, हमारी सभी विपत्तियों की जड़ हमारी गुलामी है, इसे खत्म करने के लिए हमें शूर वीरों की जरूरत है। उनके इस आह्वान पर सबसे पहले अपना नाम पेश करने वालों में प्रमुख नाम भाई बंता सिंह का था। धीरे धीरे बंता सिंह गदर पार्टी के एक विश्वसनीय कार्यकर्ता बन गए। इसी बीच सन 1914 का साल आया, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। गदर पार्टी के नेताओं ने इसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक अवसर के रूप में देखा। निर्णय हुआ कि सभी क्रांतिकारी भारत लौटेंगे और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष छेड़ेंगे। बंता सिंह भी अपने साथियों के साथ भारत लौट आए। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये युवा क्रांतिकारी कुछ ही समय में भारतीय स्वाधीनता के इतिहास का अमर अध्याय बन जाएगा। अमेरिका से भारत लौटकर बंता सिंह ने आसपास के गांव के लोगों को जगाना शुरू किया। उनके विचारों से प्रभावित होकर कई लोग उनके साथ चल पड़े। उन्होंने संघवाल में पंचायत की स्थापना की और सरकार के विरुद्ध प्रचार आरंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने गांव में एक विद्यालय और पुस्तकालय खोला। गांव में पशुओं का अस्पताल भी खोला गया। गांव की पंचायत में हत्या को छोड़कर सभी मुकदमों का फैसला किया जाता था। गांव में गदर साहित्य छापने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस भी लगाया गया। बंता सिंह ने पूरे जिले का दौरा किया और लोगों के बीच गदर आंदोलन का साहित्य वितरित किया। वो लोगों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने तथा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का संदेश देने लगे। अनेक युवा उनके साथ थे। वो विरोध स्वरूप उन्हें रेलवे लाइन से छेड़छाड़ और टेलीफोन के तार काटने जैसी विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। वो कहा करते थे कि स्वतंत्रता उन्हीं को प्राप्त होती है जो उसके लिए लड़ने का साहस रखते हैं। बंता सिंह को उनके चार अन्य साथियों के साथ गदर पार्टी ने भारत भेजा था। उनका उद्देश्य भारतवर्ष में 1857 की क्रांति की तर्ज पर सशस्त्र क्रांति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना था। इसके लिए जनता को संगठित करना था। सशस्त्र क्रांति हेतु हथियार और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी वो निभा रहे थे। उनके मन में बस एक ही लगन थी, लगन आजादी की।

इस तरह बंता सिंह लगातार क्रांति गतिविधि में सक्रिय थे। संगवाल में उन्होंने एक मजबूत क्रांतिकारी केंद्र स्थापित कर दिया था। ये दुआबा क्षेत्र का मुख्यालय बन गया था। यहाँ महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, करतार सिंह सराभा, हरनाम सिंह टुंडीलाट, बीबी गुलाब कौर, बाबा साहेब सिंह और मान सिंह सियालकोटी जैसे क्रांतिकारी अक्सर आया करते थे। बंता सिंह द्वारा स्थापित ये केंद्र पंजाब में गदर आंदोलन की रीढ़ साबित हुआ। बंता सिंह के जीवन का मात्र एक उद्देश्य था, भारत की आजादी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कपूरथला के शस्त्रागार पर हमला कर दिया और हवलदार भगवान सिंह को अपने साथ मिला लिया। 25 अप्रैल सन 1915 को उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नगल कलां होशियारपुर के जेलदार चंदा सिंह की हत्या कर दी। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार तिलमिला उठी। 82 गदर क्रांतिकारियों पर साजिश का पहला केस दर्ज हुआ, लेकिन बंता सिंह फरार हो चुके थे। गदर क्रांतिकारियों ने गुप्त रूप से बैठक की तथा हथियार जुटाने के लिए अमृतसर जिले के मननवाला रेलवे स्टेशन के पास वल्ला पुल पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने की योजना बनाई। इस दल का नेतृत्व बंता सिंह को करना था। 11-12 जून सन 1915 की रात को बंता सिंह ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और 6 सर्विस राइफल्स और 200 कारतूस अपने अधिकार में ले लिए। इस हमले में उन्होंने 2 सिपाहियों फूल सिंह और चतर सिंह को मार दिया। वहीं जेलदार कपूर सिंह की हत्या की कोशिश में भी उनका नाम आया। इस घटना के बाद ब्रिटिश शासन में हड़कंप मच गया। ब्रिटिश सरकार ने बंता सिंह पर भारी इनाम घोषित किया। बंता सिंह को पकड़ने के लिए चारों ओर जाल सा बिछा दिया गया। गांव-गांव में उनकी तलाश शुरू हुई। बंता सिंह उस समय अपने गांव के आसपास गुप्त रूप से रह रहे थे, लेकिन अब भी वो अपने साथियों से संपर्क बनाए हुए थे। वो लगातार भविष्य की योजनाओं पर विचार कर रहे थे, लेकिन उनके एक निकट संबंधी ने धन के लालच में आकर अंग्रेज अधिकारियों को उनकी सूचना दे दी। इस मुखबिर के विश्वासघात का परिणाम हुआ कि बंता सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें 2 पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे मुकदमे के दौरान बंता सिंह जरा भी घबराए नहीं और पूरी निर्भीकता के साथ अपने क्रांतिकारी विचारों को अदालत के सामने रखा और देश के लिए अपनी निष्ठा जताई। बताया जाता है कि गिरफ्तारी से लेकर फांसी की सजा तक उनका 11 पौंड वजन बढ़ गया था। 12 अगस्त सन 1915 को लाहौर के सेंट्रल जेल में उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, ये आकाशवाणी।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विंध्यवासिनी देवी और साथियों के गाए लोकगीत।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विंध्यवासिनी देवी और साथियों के गाए भोजपुरी लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: इस संदेश से पहले आपने सुना लोक संगीत के कार्यक्रम में विंध्यवासिनी देवी और साथियों के गाए भोजपुरी लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वर्षा मिश्रा के गाए गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना वर्षा मिश्रा के गाए भजन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बाबूलाल बारोट का सारंगी पर बजाया राग नट भैरव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना बाबूलाल बारोट का सारंगी पर बजाया राग नट भैरव। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। जिले की चिट्ठी हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: भोपाल केंद्र है।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख गणेश कुमार बाविस्कर का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बुरहानपुर जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया और जगह जगह पर समारोह आयोजित किए गए। उस उपलक्ष्य में निजी और शासकीय संस्थाओं सहित घर घर तिरंगा लहराया गया। आजादी के इस महापर्व पर पूरा जिला देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। बुरहानपुर शहर की पहली डाक कांवड़ यात्रा ने भक्ति और जोश का अनोखा रंग दिखाया। महाजना पेठ स्थित बागेश्वर महादेव मंदिर समिति के 25 उत्साही सदस्य ओंकारेश्वर से नर्मदा का पवित्र जल लेने रवाना हुए। सुबह 6 बजे नर्मदा का जल लेकर कांवड़िये लगातार दौड़ते हुए महज 9 घंटे में ओंकारेश्वर से बुरहानपुर पहुंचे। बुरहानपुर जिले भर में सावन मास को लेकर हर तरफ भक्ति का उल्लास है। शिवालयों में महादेव के दर्शनों की होड़ लगी हुई है। ऐतिहासिक प्रसिद्ध प्राचीन किला असीरगढ़ पर मौजूद अश्वत्थामा वाले गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए दूर शहरों से भक्त पहुंच रहे हैं। बुरहानपुर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पादों सहित अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण और जांच की जा रही है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1 मार्च से 78 किलो घी जब्त किया। वहीं मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत पिछले दिनों परेठा गांव में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर योजनाओं की जानकारी दी और समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान संचालित किया जा रहा है। बुरहानपुर जिले में 19 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला पंचायत में आयोजित रोजगार मेले में अलग अलग कंपनियों द्वारा सहभागिता की गई। इस मेले में शासकीय विभागों द्वारा युवाओं को जानकारी प्रदान की गई और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए। इसके साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी भी छात्रों को प्रदान की गई। इस अवसर पर जिले के 208 युवाओं ने पंजीयन कराया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की 7 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर अभ्यर्थियों का साक्षात्कार और प्राथमिक चयन किया। इस दौरान 110 युवाओं का प्राथमिक स्तर पर चयन कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसरों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। इस पहल से जिले के युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहायता मिली। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल के निर्देशानुसार बुरहानपुर जिले में 12 अगस्त से एचआईवी एड्स जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है, जो कि 12 अक्टूबर तक चलेगा। जिसके तहत जिले के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को एचआईवी और एड्स सहित सिफिलिस और टीबी से संबंधित जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों जीजामाता शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय और एसटीडी परामर्शदाता राजू पवार ने विद्यार्थियों को एचआईवी एड्स सिफिलिस और टीबी के प्रमुख लक्षणों बचाव और जांच के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। श्री पवार ने विद्यार्थियों से कहा कि जागरूकता अभियान का उद्देश्य केवल स्वयं तक जानकारी सीमित रखना नहीं बल्कि सही जानकारी को परिवार और आसपास के लोगों तक पहुंचाना भी है। प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बुरहानपुर जिले के 18 स्वसहायता समूहों की 22 दीदियां राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमता एवं प्रबंधन संस्थान NIFTEM कुंडली सोनीपत हरियाणा में 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटी हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को केले के रेशे से मूल्य संवर्धित उत्पाद निर्माण, आधुनिक फूड प्रोसेसिंग तकनीकी, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग एवं लेबलिंग, ब्रांडिंग, विपणन, व्यवसाय प्रबंधन और उद्यम स्थापना की व्यावहारिक जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही उत्पादों को बाजार की मांग के अनुरूप तैयार कर बेहतर आय अर्जित करने के उपायों से भी अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के उपरांत दीदियों ने बताया कि इस प्रशिक्षण से उन्हें स्थानीय स्तर पर केले के रेशे से नए उत्पाद विकसित करने, आय में वृद्धि करने इत्यादि के संबंध में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। वे अपने अपने स्वसहायता समूह के माध्यम से इस तकनीक का उपयोग कर अन्य महिलाओं को भी जोड़ेंगी, जिससे समूहों की आय में वृद्धि होगी। बुरहानपुर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
0: सुन रहे थे बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख था गणेश कुमार बाविस्कर का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन भावन।

कहते हैं ना, कुछ गीतों की उम्र नहीं होती, समय बदलता है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन गीत वहीं रहता है और उसके साथ जुड़ी हमारी यादें वो भी वैसी की वैसी वहीं रहती है। तभी तो हम फरमाइश में अपनी पसंदीदा गीत को भेजते हैं और हमारे द्वारा सुनते हैं मन भावन कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आप ही की पसंद का पहला गीत फिल्म दूर का राही से।

0: किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में ये गीत था फिल्म दूर का राही से, और इस गीत को लिखा था ए इरशाद ने और इसकी फरमाइश भेजी थी आप सबने बानियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा का फिर, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति, पूजा छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार, साथ में माही भी है। सुराना ज़िला रतलाम से शेख हैदर खान, शकीला बानो, रुखसार बानो और मोहम्मद आरिश, जसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति, संजय चौहान इसी गीत को सुनना चाहते थे, और साथ में हैं गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले, बोराला मालेगांव से दत्ता घयाल, सुनीता बाई, सोनिका और गजानन घयाल। श्रोताओं, आपकी पसंद का अगला गीत हम ज़रूर सुनेंगे इस एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
4: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
3: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
4: कहाँ से पता चलेगा?
3: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
5: आज ही सर्च करूंगा।
3: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
6: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
8: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
7: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
8: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
7: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: कार्यक्रम मन भवन में स्वागत है और अगला गीत फिल्म झनक झनक पायल बाजी से।

0: दीवान शरार का लिखा यह गीत था फिल्म जनक जनक पायल बाजे से लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इस गीत में संगीत था वसंत देसाई का। और इस गीत की फरमाइश जिन लोगों ने भेजी वो हैं पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और साथ में है सम्मति पंचोलिया, राजपुर से घीसू दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरव और कुणाल दिलवारे भी इसी गीत को सुनना चाहते थे। चंदन नगर सतारा से हमें फरमाइश आई सतीश वाघमारे, आतिश, स्वाति, वर्षा, श्रमण, श्रीमेण की, और धमदीना से अरुण एडी कांबले, और कोल्हापुर से हैं ये, और कोल्हापुर से ही एक और फरमाइश है तुषार कुरने, प्रसिक कांबले, एकता, मेघना, उत्कर्षा, अरुण, ये सब इस गीत को सुनना चाहते थे। एक और फरमाइश है हमें जिला खंडवा ग्राम लोहारी से भेजने वाले हैं राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल, शीला धंजे और गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य और साथ में है नीतू वैद्य, गौरीनगर इंदौर से हमारे श्रोता हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। श्रोता हुआ आपकी पसंद का गीत एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: So, your place or mine?
2: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
1: कॉन्डम? लेकिन हम तो
2: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
3: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: आप तो ऐसे न थे, ये है फिल्म का नाम जिससे आपने ये गीत सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था निदा फाजली ने और संगीतबद्ध किया उषा खन्ना ने। और इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई वारणा कापशी कोल्हापुर से। भेजने वाले हैं भक्ति प्रसाद, शोभा, संजय डी गवली। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन। और शिव मंदिर मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। बीड शहर से भेजने वाले श्रोता हैं हमारे प्रकाश पागरिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल। साथ में है राम निवास अग्रवाल। सुदामा नगर इंदौर से हमारे श्रोता हैं अनिल भंडारे, उषा भंडारे, सबता चित्रा और निशी। गुमाश्ता नगर स्कीम 71 इंदौर से अनिल कवचाले, नेहा फंड से, सीमा सबिहा, फजल, पूजा नेनावा, सुषमा और स्मिता। सोमानी नगर इंदौर से हमें फरमाइश आई बी आर नामदेव की। साथ में हैं राजश्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज और श्रद्धा। लाबरिया भेरू इंदौर से हमें ये खत आया अनिल बमनिया, प्रमिला बमनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और समस्त बमनिया परिवार का। अगला गीत इस संदेश के बाद।
1: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
2: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
1: क्या, कैसे?
2: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
1: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
2: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
0: श्रोताओं, मन भावन का अगला गीत हमने लिया है फिल्म चरस से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द हैं आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और पसंद, इसका जिक्र हम करेंगे इस गीत के बाद।

लता मंगेशकर की आवाज़ में यह गीत था फिल्म चरस से। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत की फरमाइश जिन श्रोताओं ने भेजी वो हैं धर्मपुरी धार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैज़ान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी। इसी गीत की फरमाइश हमें आई कनेरा मोहल्ला पटियाला से भेजने वाले श्रोता हैं बत्ता परिवार से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से हमारे श्रोता हैं नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबैद, रजिया, जुनेद, अलीना, आयत और मुआज मंसूरी। पितरामल ज़िला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पवार। और छाबड़ा राजस्थान से हमारे श्रोता हैं आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत था फिल्म सागर से। शब्द जावेद अख्तर के और इस गीत में संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। और फरमाइश आई प्रमिलागंज आलोट से, ज़िला रतलाम से, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। दुर्गा चौक जूनापानी सनावत से हमारे श्रोता है कालू से बडौले, सीताराम, हीरालाल, तेर सिंह, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा और कंचन। दरियापुर बाभली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, शरी वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर, रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से खुशी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर।

ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म सोहनी महिवाल से, आशा भोसले और अनवर की आवाज़ में। शब्द हैं आनंद बख्शी के और संगीत दिया इस गीत में अनु मलिक ने।

आशा भोसले और अनवर की आवाज़ में ये गीत था फिल्म सोहनी महिवाल से। शब्द थे आनंद बख्शी के और इस गीत में संगीत था अनु मलिक का। और पसंद थी आप सबकी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल, शेरपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति और नवनीत राय, उज्जैन से लोकेंद्र वर्मा, मेड़की धाकड़ से शिव टेलर, इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेस, साक्षी, मनन और तान्या। एक और फरमाइश हमें आई खंडवा से, भेजने वाले हैं प्रणाम सिटी खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू कुमार और जयश्री खंडाले। इसी गीत की फरमाइश हमें आई भड़भूंजी जिला आगर से, भेजने वाले हैं रघुनाथ मालवी, भवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विशाल, मिलन, ओम प्रकाश साथ और सभी इनके साथी। लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश वर्मा और दत्रेगी से भगवत वर्मा।

फारूक कैसर का कलाम था ये फिल्म मदारी से, आवाज़ लता मंगेशकर की और गीत में संगीत था कल्याण जी आनंद जी का, और पसंद थी आप सबकी। कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्तरंजन कमलेश, सरोज आरती रेखा, रितिका रिचा स्वीटी सागर, रिया रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार इस गीत को सुनना चाहते थे। एक और फरमाइश हमें आई रतनपुर से, रतनपुर झिरन्या जिला खरगोन से भेजने वाले हैं भगीरथ नायक, जितेंद्र, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य, गुनगुन और उनका परिवार। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा।

मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। अनजान के शब्द और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

जिनकी पसंद पर हम ये गीत सुन रहे हैं वो हैं भीकन गांव से संतोष सातले, रोहित सातले, सारिका, शुभम, शैलेंद्र, कंचन और चंदन सातले, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जस्मीन और प्रयागराज भट्ट, मालवा मिल कंपाउंड इंदौर से प्रमेन कुशवाह, इसी गीत की फरमाइश आई मोटका माफी जिला खंडवा से, जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कणिका, आदित्य और मन पटेल की, बिजलपुर से मोहनलाल चौहान, ललिता, प्रियंका परवार, पंकज, सोनू, नितिन, राहुल, गुंजन, मुस्कान, अदव्या, अंकित, सलोनी, लड्डू, कान्हा, ऋषि चौहान और हेमंत की।

0: श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम मन भावन को अब यहीं विराम देते हैं। इजाजत दीजिए अमृता को, नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम मन भावन। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: पीयूष गोयल भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

0: दादा के गीत हमारे।
1: नमस्कार, फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी नीरजा। कार्यक्रम में आज का विषय है भोजन की बर्बादी कैसे रोकें। इस विषय पर हम जानेंगे आपके विचार, साथ ही आप सुनेंगे हमारी पसंद के सुमधुर गीत। तो आइए बिना देर किए जल्दी से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: हाँ, मैं समाधान नाम जो आइनर से बोल रहा हूँ, तहसील कुलपहाड़, जिला महोबा।
1: कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है?
2: हाँ दीदी, सब बढ़िया है, हाल चाल ठीक है, सब लोग अच्छे हैं।
1: तो आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
2: उसको जो है सीमित करना चाहिए कि जी, हम लोग कितना आदमी है, कितने हिसाब से हमको काम करना चाहिए। तो उसमें बर्बादी वाला काम नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल। आपके घर में खाना किस तरह से बनाया जाता है, कितनी मात्रा में, क्या सोचकर बनाया जाता है कि इतने लोग खाएंगे खाना?
2: हम लोग इस समय अभी 3 लोग हैं, तो अपने तीनों लोग के हिसाब से अपना आराम से अपना जितना अपने को खाना है उतना उस हिसाब से खाना बना लेते हैं।
1: अच्छा।
2: नहीं होता है क्योंकि अपने पास में जानवर भी नहीं है।
1: अच्छा।
2: भाई बच जा तो उसको खिला दें, जो है सीमित ही खाना बनाते हैं। कम पड़ जाएगा तो फिर अपना दोबारा अपना थोड़ा बहुत बना लेते हैं।
1: पशु होते हैं, जानवर होते हैं, तो वहाँ तो खाना इस्तेमाल हो जाता है उन्हें खिलाने के लिए, लेकिन आपके यहाँ जानवर नहीं है तो आप उसका कुछ दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, है ना?
2: हाँ, तो उसको हम अपने हिसाब से अपना जो है बनाते हैं।
1: और जैसे कभी कभार अगर खाना बच जाता है तो उसका क्या करते हैं आप?
2: तो जैसे जो जानवर निकलते हैं उनको खिला देते हैं।
1: यानी रास्ते से अगर कोई जानवर निकल रहा है, दिखाई देता है, तो आप खिला देते हैं, तो उसका भी भला हो जाता है और आपको भी अच्छा लगता है, खुशी मिलती है।
2: मेरे घर में जो है मेरी लड़की है रोहिणी नामदेव, तो उनका भी नाम लेना चाहता हूँ मैं।
1: बिल्कुल लीजिए।
2: हमारी बेटा भी है पुष्पेंद्र नामदेव और शशि नामदेव बहू है
1: जी।
2: हाँ, ये लोग दिल्ली में काम करते हैं, तो दिल्ली

0: ऋषि आए थे यहाँ पे गांव में
1: जी,
0: तो दीदी मैं उनका भी नाम
1: ठीक है
0: बताना चाहता हूँ आपको
1: जी। और बताइए मौसम के क्या हाल हैं आपके यहाँ?
0: हाँ, सब बड़ी अच्छे हैं। मौसम जो है पानी जगह पानी बरस रहा है अभी इस समय, अच्छा पानी बरस रहा है, कल ही से पानी गिर रहा है।
1: अच्छा,
0: और अभी भी पानी बरसा हो रही है।
1: ठीक है, श्यामाधर जी आप कार्यक्रम से जुड़े, धन्यवाद, नमस्कार।

0: हाँ नमस्कार दीदी
1: नमस्कार
0: जी, मैं ग्रामा पोस्ट गोना कुसमाड़ थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो मित्र दीपक कुमार नामदेव बात कर रहा है। दीदी
1: दीपक कुमार नामदेव
0: जी जी
1: कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है?
0: बस दीदी बढ़िया है, सिलाई मशीन चला रहे थे, साथ में आज बारिश भी तेजी से हो रही है तो बारिश का आनंद ले रहे थे, आपका कॉल भी लगा रहे थे।
1: अच्छा,
0: और इसके बाद 11 बजे से आपके रेडियो का भी आनंद लेंगे।
1: ठीक है, तो दीपक जी आज कार्यक्रम का विषय है भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
0: जी दीदी, बफर सिस्टम कहलाता है। सबसे ज्यादा बर्बादी तो उसमें होती है क्योंकि लोगों को उसमें कम से कम 10-20 प्रकार के आइटम मिल जाते हैं और खाना है थोड़ा थोड़ा और ले लेते हैं ज्यादा। इसके बाद उन्होंने थोड़ा खाया और वो उसमें कचरा दानी में सरका दी थाली अपनी।
1: यानी उतना ही खाना लो जितना आपको खाना है।
0: जी जी, सबसे पहले हमारी विनम्र निवेदन है सभी श्रोताओं से कि जितना खाना है उतना ही थाली में खाना लीजिए क्योंकि बर्बाद ना हो सके, क्योंकि आदमी की इच्छाएं तो अनेक होती हैं लेकिन आप आज पेट में बने या ना बने लेकिन आदमी ले लेते हैं कि हमें ये खाना है वो खाना है, फिर एक दो कौर खा और फेंक दिया, क्योंकि अन्नदाता हमारा एक किसान है। अगर किसान इसका उपयोग गलत करे, जैसे हमारे के देहातों के सिस्टम तो ये है, जो देहात होती है उसमें तो नहीं फेंकता है लेकिन सिटी लेवल में फेंकता है क्योंकि ये बफर सिस्टम शादी वगैरह में हो चुके हैं तो छोटा सा फंक्शन करना है और बड़ा फंक्शन कर लिया। और इस समय लोग देखो बीमारी से जूझ चुके हैं क्योंकि कोई जैसे है तो ब्लड की बीमारी हो जाती है किसी के लिए, किसी कुछ बीमारी, इसलिए लोग तेल वगैरह मिठाई वगैरह तो कम खाते ही हैं और बनवा अधिक देते हैं, इसलिए ये भी बर्बाद हो जाता है।
1: यानी खाना उतना ही बनाओ जितनी जरूरत हो और उतना ही प्लेट में लो जितना खाना है, उससे ज्यादा नहीं, प्लेट नहीं भरनी है।
0: भोजन से एक रोटी कम खाओ, जैसे आपको 4 रोटियों की भूख लगी तो 3 या 3.5 रोटी खाओ जिससे स्वस्थ शरीर भी रहता है और खाना भी नहीं फेंकता है।
1: यानी जितनी भूख लगी हो उसे थोड़ा सा कम ही खाना खाओ, है ना?
0: जी जी, जिससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। जब जैसे हमको खाना 3 रोटी और खाली 4 वो एक एक्स्ट्रा खाली तो बीमार नहीं होंगे तो बीमार हो जाएंगे,
1: ओवर ईटिंग हो जाती है। और दीपक जी, जैसे आपके घर में खाना बनता है तो कभी कभार अगर खाना बच जाता है तो उस खाने का उपयोग आप किस तरह से करते हैं?
0: देखो ऐसा है कि खाना हम लोग बनवाते हैं 3-4 टाइम है तो गर्म ही बनवाते हैं, अगर जैसे बच जाता है तो जो अपनी गौ माता है उसके उपयोग में ले आते हैं।
1: यानी पशु पक्षी जो होते हैं उन्हें हम खाना दे सकते हैं जो खाना बचता है। और कुछ खाने से नई डिश बनाई जा सकती है, जैसे कि मान लो रोटी बच गई रात को तो उससे कुछ नया बनाया जा सकता है?
0: हाँ हाँ, जैसे रोटी बच गई आप लोगों की हम लोगों की तो उसको बढ़िया उसको फ्राई करके और उसको बढ़िया तल के, मतलब जिस प्रकार अपन पोहा बनाते हैं बिजी वगैरह डाल के,
1: हाँ,
0: तो पोहा भी बन जाता है रोटी का। अगर जैसे बच गई तो उसको बिल्कुल बिल्कुल नानी फिलाई कर ली बिल्कुल महीन,
1: हाँ,
0: तो उसको लिया आपने और गैस सिलेंडर पर ले जाके बढ़िया मिर्ची और प्याज वगैरह से तल के बढ़िया उसमें बिजी वगैरह डाल दिए, काजू किशमिश डाल के बढ़िया पोहा भी बन जाता है, उसका भी उपयोग कर लेते हैं।
1: दीपक जी आपने तो एक बहुत अच्छी डिश बता दी, है ना?
0: जी जी,
1: यानी पोहे बनाए जा सकते हैं जो रात को रोटी बचती है तो फेंकने के बजाय उसका एक अच्छा इस्तेमाल हो सकता है और हेल्दी भी होती है इस तरह की चीजें।
0: जी जी जी जी जी। और आज हमारी बात किस दीदी से हो रही है?
1: मैं आपकी रेडियो साथी नीरजा बात कर रही हूँ।
0: जी जी जी, काफी सुंदर बात की आपने, काफी अच्छा लगा खुशनुमा होकर।
1: ठीक है दीपक जी, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, धन्यवाद
0: जी। नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार दीपक जी।
0: एक दो श्रोताओं के नाम ले सकते हैं दीदी?
1: बिल्कुल लीजिए
0: जी। हमारे भोरदा जिला ललितपुर से हैं बालचंद चड़ार जी और चंद्रेश गोहर जी, सागर मध्य प्रदेश से जयपाल यादव जी हैं, लोहेड़ी मध्य प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर हैं और कैलाश नारायण नामदेव जी हैं, गोना कुसमाड़ से लखनलाल नामदेव जी हैं। जी दीदी
1: ठीक है, बिल्कुल
0: जी। नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार।

0: जी नमस्कार।
1: हाँ दीदी, नमस्ते। बिल्कुल
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे,
1: दीदी, बिल्कुल सही जगह लगा है, आकाशवाणी भोपाल।
0: नाम जानना चाहेंगे आपका।
1: हम आपके नियमित श्रोता भागचंद्र साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज वासुदा, जिला दिल्ली का।
0: तो भागचंद्र जी, आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम में कि भोजन की बर्बादी कैसे रोकें। जो अन्न होता है, खाना खाते
1: हाँ
0: हैं, वो क्या
1: बिल्कुल
0: होता है,
1: बिल्कुल,
0: जरूरत से ज्यादा बना लेते हैं और वो फेंकना पड़ जाता है।
1: जैसे जितना अपन खाना है उतना खाना अपन ले, हैं? क्योंकि बर्बाद ऐसा है कि अपन बेफजूल में ज्यादा खाना ले लेते हैं, फालतू फेंक जाता है। ऐसा ना करे हमारा श्रोता बंधु, बिल्कुल कोई ना करे, जितना खाने की योग्य हो उतना ही खाना ले। आजकल शादियों में देखने आ रहा है कि बफर का सिस्टम रख दिया है, खा रहे हैं कुछ फेंक रहे हैं, ऐसा ना करें।
0: शादी पार्टी में जाते हैं तो जरूरत से ज्यादा प्लेट में ले लेते हैं, तो क्या तरीका, क्या उपाय होना चाहिए?
1: उसका ऐसा है, देखो जैसे ये खाना बच रहा है, जैसे पर्याप्त खाना आपने ले लिया है, तो वो खाना इधर उधर ना फेंके, एक डस्टबिन में डालें। उसको क्या है, जैसे अपन कहीं, वैसे अपन गौ माता है उसको खिला सकते हैं।
0: और अलग से भी खाना बचा सकते हैं, अगर बच जाता है तो जो जरूरतमंद लोग हैं, जैसे रोटी बैंक वगैरह होते हैं जहाँ पर
1: हाँ हाँ
0: ऐसे लोग जिन्हें जरूरत होती है खाने की लेकिन नहीं मिल पाता, उनके लिए रख सकते हैं खाना, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी, सही बात है जी, सही बात है।
0: और भागचंद्र जी, जैसे परिवार में जब खाना बनता है तो उसकी मात्रा किस तरह से तय करते हैं आप?
1: नहीं वो तो ऐसा है, जैसे खाना अपन खा रहे हैं तो भाई उतना पर्याप्त में उतना खाना ले जितना बने खाना है। और खाना अगर शाम के बचा है, अगर थोड़ा बहुत बचा है तो उसको उपयोग में ले लें।
0: और अगर कभी घर में कुछ रोटियां वगैरह बच जाती हैं तो आप उनसे कुछ नया बनाते हैं, कुछ नई डिश बनाते हैं, या कोई भी दाल
1: बहुत
0: वगैरह
1: से
0: बच जाए,
1: पोहा बना ले बढ़िया, उसको सेक के बढ़िया, एक नंबर बन
0: यानी एक
1: जाता
0: नई
1: है।
0: डिश बन सकती है ना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बन क्यों नहीं बन सकता, उससे बन सकता है।
0: बिल्कुल। बताइए भागचंद्र जी, आपके यहाँ मौसम के क्या हाल हैं?
1: मौसम तो दीदी गंज वासुदा में फिलहाल अभी बदल हो रहे हैं, संभावना है पानी की,
0: अच्छा
1: अब गिर सकता है, कल शाम तक गिर सकता है।
0: अच्छा चलिए भागचंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप
1: दीदी
0: कार्यक्रम से
1: आपका नाम
0: जुड़े।
1: जानना चाहते थे हम।
0: मैं आपकी रेडियो साथी नीरजा हूँ।
1: दीदी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमें बहुत अच्छा लगा।
0: मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा
1: हाँ दीदी, हम तो आपके नींव सोता है, पत्र भी डालते रहते हैं आपकी
0: जी।
1: फरमाइश वगैरह में।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम से जुड़ते हैं।
1: ठीक है दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो, नमस्कार।
1: जी नमस्कार। कहाँ? आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं
0: बिल्कुल, आकाशवाणी भोपाल।
1: जी। जी गोपाल बोल रहे थे, दमोह से, गोपाल ठाकुर, दमोह बजरिया वार्ड 6।
0: कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है?
1: जी हम ठीक हैं और ईश्वर से कृपा करते हैं कि आप लोग, आपका पूरा स्टाफ अच्छा रहे और खुश रहे। उनकी
0: जी, धन्यवाद।
1: आज का क्या कैसा है रिकॉर्डिंग का?
0: आज बात कर रहे हैं कार्यक्रम में कि भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
1: भोजन की बर्बादी कैसे रोकें? जी
0: कैसे रोकें?
1: भोजन की बर्बादी तो बहुत ज्यादा है, बफर के सिस्टम में बहुत ज्यादा होती है। तो अपन को इतना ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमको जितना खाना है उतना हम अपनी प्लेट में निकालें, जितनी फिर जरूरत पड़े तो दोबारा फिर से ले लें।
0: तो घर में भी जो अन्न बर्बाद होता है, जरूरत से ज्यादा बन जाता है, तब क्या करना चाहिए?
1: 4 व्यक्ति है या 10 व्यक्ति है या 2 व्यक्ति है, तो बनाने वाले को इतना नॉलेज रहना चाहिए कि हमको कितना हमेशा लगता है उतना उनको बनाना चाहिए।
0: यानी अगर 4 लोग हैं घर में तो 4 लोग जितना खाते हैं उतना ही बनाओ खाना, एक सही मात्रा में। और अगर खाना बच जाता है तो फिर क्या करना चाहिए?
1: जैसे खाना बच जाता है तो यदि कोई अपना वाला आ गया तो खाना है तो उसको खिला दूं, यदि कोई खाने वाला नहीं है तो अपनी गाय है या कुत्ते वगैरह हैं उनको खिला दो।
0: बिल्कुल, खाना फेंको मत, किसी को दे दो,
1: हाँ
0: जरूरतमंद को दे दो खाना।
1: क्योंकि दीदी देखो अपन खाना ही के लिए अपन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, तो दीदी खाने के लिए तो अपन करते हैं और खाने को अपन उसकी इज्जत नहीं करेंगे, वैल्यू
0: बिल्कुल,
1: सम्मान नहीं करेंगे तो
0: खाने का सम्मान
1: कभी
0: करना
1: ना कभी
0: चाहिए।
1: फिर अपन को भूखा मरना पड़ेगा।
0: हाँ, और जो बच्चे होते हैं घर में उनको शुरू से ही भोजन का महत्व कैसे बताएं कि ये खाना जो है इसे बर्बाद नहीं करना है?
1: समझाना चाहिए और उनको भैया जितना तुमको चाहिए बेटा उतना लो, अपने
0: हाँ
1: हाथ से निकाल के दो उनको। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अपन अपने हाथ से निकाल के थाली में या प्लेट में जो मैम भी अपन खिला रहे हैं उतना दो जितना उनको खाना है, और उनको जरूरत पड़ जाए तो उनको फिर से दे दे, दोबारा दे दे। लेकिन दीदी मैं आपका आकाशवाणी भोपाल सुनता हूँ, सुबह 6 बजे से भक्ति गीत आते हैं, फिर रामायण आती है, उसके बाद
0: हाँ
1: फिर गाने आते हैं, समाचार आते हैं।
0: जी,
1: दीदी रात के 10 बजे तक सुनता हूँ मैं मोबाइल से। जी
0: यानी आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है रेडियो सुनना।
1: दीदी मैं बहुत छोटा था, जब 10-12 साल का था तो ट्रांजिस्टर चलते थे बाजे, तो मैं जैसे पहले तो पेटी खवास नहीं टांग लेते थे कांकरी में,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ऐसे कांकरी में दबा के कहीं हार जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं या गांव में घूम रहे हैं, मतलब लेके घूमते थे और अच्छे गाना बजाना सुन रहे हैं और
0: यानी
1: चीजें। जी
0: बहुत पुराना याराना है आपका आकाशवाणी के साथ, और आज भी वो दोस्ती बनी हुई है।
1: हाँ दीदी, और जब तक जीवन रहे तब तक रहे,
0: वो
1: क्योंकि दीदी
0: हाँ
1: एक से एक अच्छी चीजें आपके यहाँ से सुनने को समझने को, अच्छी ज्ञान की बातें भी मिलती है, समझदारी की भी बातें भी मिलती है, प्रकार का और अपना मनोरंजन भी होता है दीदी। जी
0: और हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है।
1: जी जी
0: ठीक है गोपाल जी, आप कार्यक्रम से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार।
1: जी मैडम, मंजिला जिला स्वागत तहसील बंडा से मैं दशरथ अहरवाल बात कर रहा हूँ मैडम।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैडम,
0: क्या हाल चाल है मौसम के वहाँ?
1: रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है मैडम अभी यहाँ पे।
0: आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
1: जो अपन खाना बनाते हैं तो उसको बराबर बनाना चाहिए, फिक्स ज्यादा नहीं बनाना चाहिए, तब वो वेस्ट हो जाएगा। बच जाता है मैडम तो फिर वो जो खराब हो जाए तो उसको गाय को खिला देते।

0: हेलो, नमस्कार
1: हाँ नमस्कार दीदी। दीदी
0: जी।
1: मैं ग्राम चताहारी तहसील नरवर जिला शिवपुरी से आपका भाई नियमित श्रोता प्रमोद शर्मा बात कर रहा था। दीदी
0: नमस्कार प्रमोद जी, कैसे हैं आप?
1: दीदी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं दीदी?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या हाल है मौसम के आपके यहाँ?
1: दीदी यहाँ पर तो अभी धूप निकली हुई है, बारिश नहीं हो रही है, अभी
0: बारिश नहीं हो रही?
1: बिल्कुल भी बारिश नहीं है दीदी।
0: बाकी हर जगह तो काफी ज्यादा बारिश हो रही है।
1: हाँ
0: उम्मीद करते हैं प्रमोद जी कि आपके यहाँ जल्दी से बारिश हो।
1: थैंक यू दीदी।
0: और
1: दीदी आज फोन करें गीत सुने कार्यक्रम है क्या?
0: नहीं, आज है बात आपके गीत हमारे।
1: हाँ दीदी तो क्या प्रश्न है आज का?
0: बिल्कुल, हमारे कार्यक्रम में जो विषय है आज का वो है भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
1: हाँ दीदी ये बहुत अच्छी बात है कि कैसे रोकें, क्योंकि भोजन पहली बात तो उतना ही बनाना चाहिए जितना अपन प्रयोग कर सकें, और दूसरी

0: बात, अगर खाना बच जाता है ये गरीबों में बांट दे, या मतलब ऐसी जगह गौ माता को दे दें कि वेस्ट ना जाए दीदी।
1: यानी खाना किसी को दे दो लेकिन फेंको नहीं।
0: फेंको नहीं दीदी, क्योंकि फेंकेंगे तो वो खाना वेस्ट होगा। और खाना वेस्ट होगा तो वो ना हमारे काम का है ना किसी और के काम का है, इसलिए बच जाता है। तो उसे दीदी दान कर दो, किसी को दे दो, तो उसके खाएगा तो वो धन्यवाद तो करेगा दीदी।
1: हाँ, कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो बचे हुए खाने को हम अगर उन्हें देते हैं तो वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती हैं, रोटी बैंक वगैरह होते हैं।
0: हाँ दीदी सही बात है।
1: और शादी पार्टी में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर खाने की बर्बादी, अन्न की बर्बादी कैसे रोकी जा सकती है?
0: वहाँ उतना ही लो ना जितना अपन खा सकें, दूसरों को सलाह भी देना चाहिए तो ये खाना वेस्ट मत करो, उतना लो जितना आप खा सको, जरूरत हो।
1: प्रमोद जी, आपके घर में खाने की क्या व्यवस्था है, भोजन की किस तरह से, किस मात्रा में आप बनाते हैं, क्या सोच कर कि इतना खाना हमें उपयोग में आएगा?
0: उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ मैं कि जैसे आप चार रोटी खाते हैं तो चार रोटी का ही आटा लगाएं, और अगर तुम 12 रोटी खाते हैं तो 12 ही का आटा लगाएं, क्योंकि ज्यादा बना लेंगे तो वो खाना वेस्ट होगा, वेस्ट होगा तो वो फेंकेगा।
1: बिल्कुल,
0: किसी का ना तुम्हारे मतलब का है, ना हमारे का है, ना और किसी का है। जितना खाना आप बनाओगे उतना वेस्ट होगा तो वो फेंकेगा, फेंकेगा तो ना अन्न का निराकरण होगा दीदी।
1: अन्न का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं।
0: हाँ सम्मान करना चाहिए, उतना ही खाना बनाते हैं दीदी जितना।
1: प्रमोद जी, घर में
0: शाम का खाना बनाते हैं उस बच जाता है।
1: हाँ,
0: तो हम वेस्ट नहीं करते हैं।
1: प्रमोद जी, जो घर में छोटे बच्चे होते हैं उन्हें खाने का महत्व कैसे समझाएं?
0: उनको ऐसे ही समझाना चाहिए कि बेटा इतना लो, ऐसे करो, इतना खाओ, उतना ही खवाना चाहिए दीदी उनको।
1: यानी उन्हें बताओ कि ये मेहनत की कमाई है, इसे फेंकना
0: हाँ
1: नहीं है।
0: हाँ
1: फेंको मत खाने को, उसका आदर करो, सम्मान करो।
0: हाँ सम्मान करो दीदी।
1: बिल्कुल प्रमोद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप कार्यक्रम से जुड़े, धन्यवाद।
0: धन्यवाद दीदी। आपका नाम क्या है दीदी?
1: मैं आपकी रेडियो साथी नीरजा बात कर रही हूँ।
0: थैंक यू दीदी, आज पहली बार बात हो रही है दीदी।
1: अच्छा
0: हाँ दीदी, आपसे
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्रमोद जी।
0: दीदी आपको और सभी आकाशवाणी परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी श्रोता भाई बहनों को।
1: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रमोद जी।
0: थैंक यू दीदी।
1: चलिए नमस्कार।
0: नमस्कार दीदी।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नाम जानना चाहेंगे आपका?
1: हाँ, नाम मेरा है गोविंद सह चंदेल
0: गोविंद सह चंदेल,
1: जी, दमोह
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: एमपी
0: जी गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी।
0: कैसे हैं आप? क्या हाल चाल हैं आपके?
1: बहुत बढ़िया है बस। और आप लोगों के क्या हाल चाल हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज कार्यक्रम में हम आपको विषय दे रहे हैं कि भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
1: जी,
0: बताइए, आप क्या जानते हैं इस बारे में?
1: इस बारे में ये है मैडम कि खाना उतना लिमिट से लेना चाहिए, कि मतलब थाली में खाना ज्यादा बचना ही नहीं चाहिए और लिमिट से खाना लेना चाहिए कि जितना खा सकें तो खाना बर्बाद होगा नहीं।
0: और जैसे शादी में जाते हैं तो वहां भी खाने की काफी ज्यादा बर्बादी होती है।
1: हाँ, वो तो बहुत ज्यादा होती है मैडम, ये बर्बादी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपन लोग तो ऐसा है कि चलो ठीक है चल जाता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो खाने के लिए बेचारे तरसते हैं या कितनी कितना वो करके इसके बाद खाना उनको मिल पाता और शादी में कितना बर्बादी करते हैं, तो उसमें भी खाना बफर सिस्टम से रहता है, तो उसमें खाना लिमिट से उतना ही लेना चाहिए जितना कि आप खा सकें। चाहे भलाई एक बार ले लो, दो दो बार ले लो, तीन बार ले लो, ज्यादा लोग तो फिर बचेगा तो वो तो फेंकेगा ही, इसलिए खाना खाने की लिमिट से लेना चाहिए और बर्बादी नहीं करना चाहिए।
0: और बताइए गोविंद जी, आपके घर में जब खाना कभी बच जाता है, कभी कभी बच ही जाता है, ऐसा होता है, तब आप क्या करते हैं उस खाने का?
1: खाने का भाई ये है कि जैसे भाई सुबह टाइम का भी बच गया तो बार चलो भाई, बच के लोग तो चलो 4 बजे मान लो खाना खाते हैं डबल से।

0: तो वो खा भी लेते हैं, और यदि नहीं खा पाते बच्चे तो फिर दूसरे दिन गाय को खिला देते हैं या जानवरों को खिला देते हैं।
1: बिल्कुल। और आपके घर में जैसे आपने बताया बच्चे हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि बच्चों को अन्न का महत्व समझ आए और वो खाने की बर्बादी ना करें?
0: बस मैडम, मैं तो यही कहना चाहता हूँ बच्चों को कि हमेशा लिमिट, बस लिमिट में खाना लें कि बर्बाद ना हो, बचे ना। और बाकी ये है कि यदि मान लो खाना बच भी जाता है तो उसको भाई ये 2-4 घंटे बाद यदि बच्चे फिर रिपीट मांगते हैं घर पे, तो वो खाना खा लेना चाहिए, कोई उससे वो नहीं है कि खाना नहीं खा सकते।
1: बिल्कुल गोविंद जी,
0: मैं तो मैडम रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
1: अच्छा,
0: बचपन से ही।
1: अच्छा,
0: और हमको तो टेलीविजन से अच्छा मोबाइल लगता है, भैया टेलीविजन से अच्छा रेडियो लगता है।
1: अब बचपन से सुनते हैं।
0: अपना ये अपना रेडियो चालू कर दो, अपना कोई भी काम करना, लिखापढ़ी करना, कुछ करना, पेपर भी पढ़ना या कुछ भी करना, तो अपना करते रहते हैं और अपना मनोरंजन होता रहता है। ज्ञानवर्धक चीजें भी आप लोग देते रहते, बीच बीच में समाचार भी आते हैं, न्यूज आती है, हर चीज रेडियो पे मिलती है। मेरे को रेडियो तो बहुत ही पसंद है मैडम
1: जी। बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर कि आप बहुत पसंद करते हैं आकाशवाणी को गोविंद जी।
0: जी तो हम तो आकाशवाणी को बहुत पसंद करते और शुरू से बचपन से ही रेडियो बहुत बहुत सुना है मैडम हम लोग ने।
1: अच्छा।
0: बहुत, और आज भी मैं पसंद करता हूँ रेडियो को, क्योंकि अभी अभी भी हमारा देखिए रेडियो चल ही रहा है।
1: अच्छा
0: जी। हाँ, लेकिन मैडम लगता नहीं, पहली बार मेरा फोन लगा, मेरे को बहुत खुशी हो रही है बात करके।
1: मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
0: ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू,
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: हम सीनियर डीलर से नितिश यादव बात कर रहे हैं। ठीक
0: कैसे हैं? आपके हाल चाल हैं?
1: है मैडम,
0: आज कार्यक्रम का विषय है भोजन की बर्बादी कैसे रोकें।
1: उसे रोकने के लिए मैडम जैसे कि जरूरत से ज्यादा लेना नहीं चाहिए, जिससे कि वो फिट सके। इतना ही लेना चाहिए जितना अपने को आवश्यकता हो।
0: आप जब शादी में जाते हैं
1: शादी में
0: वहाँ,
1: जाते हैं तो जैसे अपन बफर में जाते हैं तो वहाँ पे लोग 50% खाना फेंक देते हैं और बाकी आधा खाते हैं, इसलिए उसे बचने के लिए इतना ही लेना चाहिए जितना उसको आवश्यकता हो।
0: यानी प्लेट भर के खाना नहीं लेना है, जितना चाहिए उतना ही खाना लो, एक एक चीज ट्राई करो, पूरा खाना मत लो एक साथ, है ना? और बताइए ऋतिक जी, घर में क्या होता है, खाने का सिलसिला किस तरह से मैनेज करते हैं आप लोग?
1: मैम घर में तो सही भी तरह से ठीक रहता है, बाकी वहाँ तो नहीं फिकता। घर में जैसे शादियां हैं, फंक्शन है, इसमें फिकता है। घर में प्रॉब्लम नहीं आती है, हमेशा गांव में उतना ही बनता है।
0: अच्छा,
1: और बाकी यहाँ जानवर अपने गाय रहती है, अपन उनको दे देते हैं, वेस्ट नहीं जाने देते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो ऋतिक जी।
1: जी
0: बताइए मौसम के क्या हाल हैं आपके यहाँ?
1: मौसम आज तो खुला हुआ है।
0: खुला है, धूप है।
1: हाँ आज तो अच्छी हवा चल रही है, मौसम साफ है, बाकी पानी आने रहा है आज।
0: ठीक है ऋतिक जी, आप कार्यक्रम से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके मैडम,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर आज पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। वे उत्तर बंगाल में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिसमें प्रशासनिक बैठकें भी शामिल हैं। वे सीमा सुरक्षा से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन प्रसाद भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने राजीव गांधी की राष्ट्र के प्रति सेवा और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में 550 प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही अकादमिक लैब का अवलोकन कर प्रशिक्षुओं से संवाद करेंगे। संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज से 10 सितंबर तक समरसता संकल्प अभियान एवं समरसता यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और अदालत के आदेश का पालन न करने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। और एंटीगा सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर के बाद मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आपके लिए चुन लिया है। आपके पत्र भी हमारे हाथों में है। ये गीत है फिल्म कन्यादान से। मोहम्मद रफी की आवाज, नीरज के शब्द और संगीत है शंकर जयकिशन का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। गौतम नगर नांदेड़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले। इसी गीत को पसंद किया है चंडीगढ़ मोहाली के श्रोताओं ने। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवीन राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। साथ ही इस गीत को पसंद किया है कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर कन्यादान फिल्म का ये गीत।

और अब आपको सुनवा रहे हैं मेरा साया फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। राजा मेहंदी अली खां की शब्द रचना है, संगीत मदन मोहन का है। पसंद आप सब श्रोताओं की। पटियाला से बत्ता परिवार के सदस्य इस गीत को पसंद कर रहे हैं। ये हैं मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इनका साथ दिया है हार्दिक ने भी। इसी गीत को पसंद किया है यवतमाल के श्रोताओं ने। राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और स्वीटी के साथ बेबी प्रियांशी इस गीत को सुनना चाहती हैं। घंटा घर चौक खंडवा के श्रोताओं की भी यही पसंद है। पत्र लिखने वाले श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। फरमाइशी पत्रों की फहरिस्त में एक और गीत इसी एक और श्रोताओं का समूह है जो इस गीत को सुनना चाहते हैं। ये हैं सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान और जीतेंद्र के साथ धर्मेंद्र मालाकार। तो आइए हम सब सुनते हैं मेरा साया फिल्म का ये मधुर गीत।

राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाज़ लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। ग्राम खकल कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और समस्त गुर्जर परिवार इस गीत को पसंद कर रहे हैं। इसी गीत को सुनना चाहते हैं अमरावती महाराष्ट्र से। आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब, साइमा, इसी गीत को पसंद किया है। पोत्रा के श्रोताओं ने ये हैं मुस्तबा खान, आफिया खान, राउफ और शहीद। अकोला के श्रोताओं की भी यही पसंद है। अकोला से पत्र लिखने वाले श्रोता हैं रमेश कनटकर, वैशाली कनटकर। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुना रहे हैं खेल खेल में फिल्म का वो गीत जिसे गाया है शैलेंद्र ने, गुलशन बामरा के बोल हैं, संगीत आर डी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि और शीतल राजेश इस गीत को सुनना चाहती हैं। डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, इनका पत्र हमें मिला है पटेल नगर मलोट पंजाब से। बागपत उत्तर प्रदेश के श्रोताओं की भी पसंद यही गीत है। पत्र लिखने वाले श्रोता हैं संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। धामड़ी मानोरा के श्रोताओं का पत्र हमें मिला है, ये हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे। तो आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं खेल खेल में फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत, जिसे पसंद किया है हमारे श्रोताओं ने। पसंद करने वाले श्रोता हैं जय किसान रेडियो श्रोता संघ कोटड़ा बहादुर से, ये पत्र हमें मिला है मंदसौर ज़िले से, तूफान डांगी, नेपाल डांगी, राहुल डांगी, पप्पूलाल डांगी और विक्रम डांगी इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके साथी। गोला बाजार बक्सर से पत्र हमें मिला है श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और कान्हा आर्य का। ये सुनना चाहते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का वो गीत जिसे गाया है उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी ने। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: राजा हिंदुस्तानी फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम इस छोटे से अंतराल के बाद होगा।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करिए, लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
7: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
8: आकाशवाणी इंदौर।
7: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
9: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
10: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
9: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
11: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
12: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
11: और झूलते झूलते सुनते हैं
7: मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
11: अरे दीदी, धीरे धीरे।
9: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
10: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
9: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
13: बड़े अच्छे लगते हैं
14: क्या
13: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
14: और
6: आकाशवाणी इंदौर। सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
9: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
10: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
9: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
15: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
7: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
15: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?

0: अरे काहे का मजा?
1: क्यों, क्या हुआ?
0: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
1: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
0: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
1: ये हुई ना बात।
2: बड़े आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक जमुनिया। आज सुनिए इसकी दूसरी कड़ी।

पिछले अंक में आपने सुना कि जमुनिया और उसका पति रतन सरकार द्वारा दिए जाने वाले जमीन के पट्टे को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उधर रतन का छोटा भाई करण शराबी और आवारा किस्म का निठल्ला व्यक्ति है, जिसे गांव का जमींदार दीवान अपने फायदे के लिए पटाता है। अगली सुबह रतन और जमुनिया सरकारी दफ्तर जाते हैं। अब आगे

0: अरे सुनो भाई, सुनो सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो भाई, सुनिए सुनिए, आप लोग सुनिए, थोड़ा सुनिए, आगे आइए, आगे आइए रतन राम
1: जी।
0: ये भैया यहाँ अंगूठा लगाइए आप, यहाँ पे
1: दस्तखत कर दूं।
0: पढ़े लिखे हो?
1: हाँ।
0: पढ़े लिखे हो तो दस्तखत कर दो इसमें
1: जी।
0: और ये लो अपने कागजात
1: जी जी,
0: जमीन के हैं, जमीन के
1: जी,
0: संभाल के रखना, बहुत जरूरी कागजात हैं ये
1: जी जी,
0: ठीक है
1: जी।
0: अरे रतन कौन है भाई? रतन
2: जी मालिक, हम हैं।
0: अरे रतन यहाँ आगे आओ, आगे आगे।
2: हाँ मालिक,
0: ये यहाँ करो दस्तखत।
2: साहब हम दस्तखत नहीं कर पाएंगे, हम अंगूठा लगा दे।
0: अंगूठा लगाओ भाई, अंगूठा लगाओ
2: जी, अंगूठा लगा देते हैं साहब।
0: इस वाले हाथ का, इस हाथ का।
2: अच्छा ये
0: शाही में दबो और यहाँ लगाओ, यहाँ।
2: जी साहब,
0: अब ये देखो अंगूठा लग गया और ये लो अपने कागजात, ठीक है?
2: हाँ साहब,
0: संभाल के रखना इसे।
2: अरे साहब संभाल के रखेंगे, बक्सा में रख देंगे, बक्सा में तारा लगा देंगे,
0: ठीक है भैया? राम राम, राम राम, राम राम भैया, राम राम।

0: अरे ये क्या कर रहे हो? कपार से पाथर तोड़ रहे हो?
1: ठीक कह रही हो जमुनिया। अरे हमारा सर ही किसी काम का नहीं, ना इतना कड़ा है कि पत्थर तोड़ सके और ना इतना समझदार कि कुछ कम मेहनत का काम मिल जाए।
0: अरे हम तो मजाक में बोले, आओ थोड़ा आराम कर लो, छाहा लो, पसीना सूख जाएगा तो दोनों मिलकर थकाएंगे, ठीक है? शायद बिना तोड़े काम बन

0: जल्दी फूटता भी नहीं।
1: ला भाई पानी पिला दे।
0: ये लो पानी।
1: सरकार ने जमीन तो दे दी पर इसमें फसल काटना इतना आसान भी नहीं।
0: देखो जी, अभी से हार मानोगे तो फसल कैसे काटेंगे? हाँ, हिम्मत रखो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो फिर हरियाली जरूर आएगी, अनाज पैदा होगा, हम भूख भगा पाएंगे।
1: तू तो नेताओं जैसी बात करती है री।
0: मौका मिलेगा तो वो भी करके दिखा दूंगी, आप साथ देना।
1: अरे साथ तो देने के लिए ही हमें ऊपर वाले ने एक किया है पर और भी खरपतवार वाली जमीन तो थी। ये ऊसर पाथर ही हमारे हिस्से आया। क्या करें ये नसीब की बात है। नसीब ही कुछ ऐसा है हमारा।
0: अब नसीब को तो मत कोसो, जो मिला है उसे ही सोना बना देंगे, हिम्मत रखो।
1: चल भाई करते हैं कोशिश। पर ये क्या देख रहा हूं?
0: कहाँ देख रहे हो जी?
1: अरे वो देखो वो उधर। अरे मेरे सामने वहां ये करण कैसे दिख गया आज खेत पर?
0: अरे हाँ, ये तो देवर जी हैं। अच्छी बात है, ये खेत पर मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है।
1: अरे कैसी गड़बड़? कुछ पहले ही गड़बड़ नहीं करके आ गई?
0: तुम तो भाई की पैर भी करोगे ही। हाँ, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करके आई। आ गए हैं तो खुद ही पूछ लेना, पूछो पूछो।
1: ठीक है अभी चुप रहो। अरे आओ करण आओ बैठो बैठो। खेत पर कैसे?
2: कुछ खास नहीं भैया, आज ऐसे ही मन किया कि चलो देखें भैया क्या कर रहे हैं खेत में, तो आ गया।
1: चलो अच्छा है। मैं भी किसी की ताक में था। वो जो वो पत्थर देख रहे हो ना
2: हाँ
1: वो पत्थर जरा भारी है।
2: हाँ
1: तीनों मिलकर उठाएंगे तो खेत के बाहर फेंक देंगे। क्या ख्याल है?
2: भैया, बात तो ठीक है पर मेरी कमर में थोड़ा दर्द है, उठाने लायक नहीं हूं, पर कोशिश जरूर करूंगा।
1: अरे तो फिर रहने दे।
2: हाँ
1: दर्द और बढ़ गया तो मुसीबत होगी। हम ही कोशिश करते हैं। लगता है बात बन जाएगी। तू बैठ आराम कर।
2: ठीक है भैया, जैसा तुम कहो।
1: चल उठ जमुनिया। हम दोनों ही कोशिश करते हैं।
0: हाँ चलिए।
1: वाह वाह जमुनिया वाह। तुमने तो दिखा दिया आज के औरत मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर चले तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को मात दे दे। आखिर पत्थर हट ही
0: अरे
1: गया।
0: आप चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ, पत्थर को धकेल तो आपने ही दिया था, मैंने तो बस आपका साथ दिया है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: भाई ठीक है ठीक है।

0: अब मैं चलती हूँ, घर पर भी बहुत सारा काम है। भाई अपने देवर जी को तो काम देखते ही कमर टूटने लगती है। अब आप दोनों करो गुटर गू, मैं चलती हूँ।
1: वाह भैया वाह, आपने तो कमाल कर दिया, पत्थर हटाकर ही छोड़ा।
2: अपनी मुसीबत अपनों को ही हल करना पड़ती है।
1: हाँ सही बात कही भैया, वो भाभी कुछ कह रही थी शायद मेरे बारे में।
2: अरे छोड़ ये औरतों की बातें। हाँ तू बता, कुछ खास बात है क्या जो आज यहाँ आया है तू?
1: कुछ खास तो नहीं, पर कहो तो बात करूं।
2: अरे बोल भी, इतनी देर से उलझा रखा है।
1: मैं कहता हूं एक पत्थर हटाने में इतनी मेहनत लगी, इतना टाइम लगा, और सब कुछ मेहनत से ही तो नहीं होगा ना। पानी कहाँ से आएगा, बीज खाद कहाँ से लाओगे?
2: मतलब
1: साफ है, इन सब के लिए पैसा चाहिए। चाहिए कि नहीं बताओ।
2: हाँ चाहिए तो सही, सरकार ने तो बैंकों को भी लगा रखा है कर्ज देने के लिए, कुछ इंतजाम हो ही जाएगा।
1: अरे हो तो जाएगा ही, पर इन सब में वक्त कितना लगेगा?
2: तू फिक्र ना कर, चिंता छोड़, मैं कुछ कर लूंगा।
1: ऐसे कैसे चिंता छोड़ूं? आप तो मुझे कुछ करने ही नहीं देते हो।
2: चल अच्छा बता, क्या करना चाहते हो?
1: तो सुनो, ये दीवान जी किस दिन काम आएंगे?
2: क्या कहा, दीवान जी से पैसा लेगा?
1: हाँ बिल्कुल, अरे उन्होंने तो खुद ही कहा था जरूरत समझो तो पैसे ले लेना। उनका ट्रैक्टर भी ट्यूबवेल भी है, अरे अपना काम फटाफट हो जाएगा, कम मेहनत कम दौड़ भाग।
2: वो तो ठीक है, पर इस दीवान से डर लगता है, मेरा तो जी घबराता है, कब ना जाने क्या कर दे गलत सही।
1: अब तुम तो फालतू में डरते हो भैया, ऐसी बात नहीं है। अब कोई पैसे ले ले और डकार जाए तो भाई देने वाला वसूल करेगा ही ना, और अगर पैसा लिया और लौटा दिया तो फिर काहे का डर?
2: तो ठीक है भाई, बात करके देख ले।
1: ठीक है भैया। जयराम जी की मालिक।
3: आओ आओ करण, कैसा है तू?
1: ठीक हूँ मालिक, बस आपसे मिलना था सो आ गया।
3: अच्छा किया, बोल क्या खास बात है?
1: वही मालिक, हमें खेत तो मिल गया है पर जोतना बोना पानी खाद बीज के लिए पैसा चाहिए था।
3: हाँ तो ले जाना पैसा। अरे पहले ही तुझे बता चुका हूँ, जब चाहे ले जा पैसा।
1: तो अभी दे दे मालिक, भैया भी खुश हो जाएंगे कि छोटा भाई कुछ तो काम आया, खाली आवारा नहीं है।
3: अब इतनी हड़बड़ी भी मत मचा, थोड़ा अच्छे से सोच समझ ले। अरे भाई रुपए पैसे का मामला है, फिर आना, अपने भाई से भी बात कर लेना।
1: मालिक वो बात कर ली है, सोच समझ कर ही आया हूँ, उनकी भी हाँ है।
3: उसकी भी हाँ है तो फिर वो आया क्यों नहीं?
1: अब एक ही बात है मालिक, वो आए या मैं आया।
3: एक ही बात कैसे है करण, तुम निरे भोले निकले। अरे भाई रुपए पैसे का मामला है, थोड़ा जिम्मेदार आदमी चाहिए। अच्छा अगर तुम पैसे ले गए और उसे कहीं और खर्च कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगा?
1: जी
3: है ना सोचने वाली बात। सुन
1: जी,
3: कल मेरा ट्रैक्टर खाली है, रतन से कहना कल आके ले जाए ट्रैक्टर, और हाँ उससे ये भी कहना कि मैं इस जुताई के पैसे भी नहीं लूंगा।
1: कह दूंगा मालिक, पर मैं उधार के पैसे कहीं और नहीं उठाऊंगा, भरोसा रखो मालिक।
3: चल किया भरोसा तुझ पर, अब बता कैसे लौटाएगा पैसे?
1: अरे खेती से कमा कर लौटा देंगे मालिक।
3: दिमाग मत खराब कर मेरा। ये करेंगे काम और खेती। जाओ जाओ दारू के अड्डे पर जाकर दारू पियो। अब ऐसे क्या देख रहा है? पैसे के लिए कुछ साख रखनी होती है और वो रतन के पास है। उसके पास जमीन है, जमीन। उस पर भरोसा कर सकता हूं।
1: ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी।
3: ठीक है जा। और हाँ
1: जी,
3: रतन को जरूरत हो तो भेज देना।
1: जी अच्छा मालिक।
3: और हाँ
1: जी,
3: ट्रैक्टर का बोल देना उसे।
1: जी मालिक।

0: भाई वाह, इसे कहते हैं मशीन। क्या जरा देर में देखते ही देखते खेत खोद कर रख दिया। फावड़ा चलाते तो महीना लग जाता, महीना। और इतनी अच्छी जुताई भी नहीं होती। वाह मालिक वाह।
1: अरे वाह मालिक वाह, किसको कह रहा हो रतन? अपने दीवान जी को?
0: अरे नहीं भैया, हमारे लिए आप भी मालिक हैं और ट्रैक्टर भी।
1: देखो अब ज्यादा बनो मत रतन भाई, और ना बनाओ। तुम्हारा खेत फ्री में जोतने को मुझको मालिक ने कहा, वो मैंने कर दिया। अब कम से कम एक गिलास पानी तो पिलवा दो।
0: अभी लो भैया।
1: लो, हो गए ना हम मालिक से भैया।

0: राम जी की मालिक।
1: अरे रतन आओ आओ आओ भाई, तुमने तो वाकई जंगल ऊसर को चमन बना दिया भाई, शाबाश, तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम है।
2: बस आप ही के सहार सब हो रहा है मालिक।
1: अब तुम तो थोड़ी देर चुप ही बैठो करण, रतन को बोलने दो, बोलो।
0: बस साहब, हार तोड़ रहे हैं, आपकी मदद से खेत जुत गया।
1: अरे भैया, हमारी मदद तो हमेशा तुम जैसे लोगों के लिए हाजिर है। अरे भाई, हम तो खुद चाहते हैं कि गांव के सब गरीब गुरबा अच्छे से रहें, कमाएं खाएं।
0: सच बात है मालिक। मालिक, आज ट्रैक्टर देने के लिए आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद? अच्छा तो पूरा धन्यवाद देकर बरी हो लिए रतन है? अरे जरा इधर देखो भाई, ये रतन हमको धन्यवाद दे रहे हैं। ये ससुर धन्यवाद की बीमारी यहां भी आ गई है।
0: कौनों गुस्ताखी हो गई दीवान जी?
1: अब जाओ यहां से, तुम हमारी खोपड़ी मत घुमाओ, अभी हम अच्छे मूड में रहना चाहते हैं। और हाँ, पैसों की जरूरत हो तभी इधर आना, समझे?
0: जी जी मालिक।
1: जाओ।

0: एजी, सुना है दीवान को तुमने नाराज कर दिया? क्या हुआ था?
1: क्या बतावे जमुनिया, हमको बात करने की तमीज नहीं है। कहाँ, कब, कैसे बोलना है आता ही नहीं। ना जाने क्या मुंह से निकल गया कि वो एकदम से बौखला गया। हमने तो खाली धन्यवाद कहा था, इसमें ऐसा क्या हो गया अभी तक समझ में नहीं आया हमारी।
0: चलो उठो, खाना खाओ। अब जो हुआ सो हुआ। वैसे धन्यवाद देने की भी औकात हम में है या नहीं, सोचना पड़ेगा।
2: हम सब सुन रहे हैं। अरे दीवान जी को सब लोग जी मालिक कहते हैं, आपसे इतना भी तो नहीं हो पाया। उनके पास जाकर धन्यवाद दे रहे हैं, अब तो वो देने से रहा पैसे। उसे बड़ी मुश्किल से मना के आया था।
1: कोई जरूरत नहीं मनाने जुनाने की, ना पैसे देता हो तो नहीं सही, मर नहीं जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा।
2: अब कोई और रास्ता निकाल कर नई मुसीबत मत मोल लीजिए। अरे हमें गांव में रहना मुश्किल कर देगा। आखिर भैया ऐसी लड़ाई से क्या फायदा जिसमें हारना ही हारना है।
1: अब लड़ने से पहले ही हथियार डालना है तो फिर हारना तो तय है।
2: देखो भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, दीवान से माफी मैं मांग लूंगा। आप तो चलो पैसे उठाओ और चले आओ।
1: तुम तो गए थे ना लेने, क्या हुआ?
2: वो तो तुम्हें याद कर रहे थे। अरे पैसे तो दे रहे थे, पर मैंने सोचा ये शुभ काम तुम्हारे ही हाथों से हो तो ज्यादा अच्छा है।
1: मैं दीवान को जानता हूं करण, पर ठीक है, तेरी जिद है तो चलता हूं।
2: ठीक भैया। अब मालिक, वो रतन भैया आ गए हैं।
3: अच्छा। अरे कोई है, देखो रतन जी आए हैं।
4: जी मालिक।
3: अरे भैया इनकी आरती उतारो। हमारा ट्रैक्टर लेकर अपना खेत जुतवाए हैं, हम पर एहसान किया और उल्टा धन्यवाद भी दे गए। और क्या करें आपके लिए रतन साहब।
2: अब बस भी करिए मालिक।
3: तू बीच में मत बोल करण।
1: गुस्ताखी के लिए माफी दे दे मालिक, हमें आप जैसन से बात करने नहीं आता मालिक।
3: जेल, तुम तो एकदम ही सीरियस हो गए भैया। अरे भैया थोड़ा मजाक कर रहे थे तुमसे। अरे हंसो हंसो, काहे घबरा रहे भैया। बोलो पैसा वैसा तो नहीं चाहिए ना? हाँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ
1: कुछ दे दीजिए मालिक।
3: कुछ माने कितना? रुपया ठन्नी की बात तो नहीं है ना?
1: नहीं मालिक, 5,000 काफी होगा अगर आप ठीक समझे तो।
3: बिल्कुल ठीक नहीं समझेंगे हम 5,000 रुपया। अगर हमारी बात मानो तो कम से कम 25,000 तो होना ही चाहिए।
1: अरे नहीं मालिक, इतना पैसा हम कहां से लाएंगे, और इतने की जरूरत भी नहीं है। आप तो बस 5,000 दिलवा दीजिए।
3: जैसी तुम्हारी मर्जी भैया, हम तो तुम्हारे भले की कह रहे हते। भैया क्या है कि पैसे बार बार मांगना ठीक नहीं होता है ना, इसलिए एक बार और सोच लो।
1: तो फिर 10 कर दीजिए बस, इससे आगे बढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं है।
3: ठीक है 10,000 सही। सुना भाई कोई है?
4: जी मालिक।
3: हाँ इन रतन जी को 10,000 रुपया देकर इनका अंगूठा लगवा लेना।
4: आओ मालिक।
3: हाँ, अरे भैया पूरा मत मानना रतन, पैसों के लेन देन में लिखत पढ़त जरूरी है, समझ गए ना?
1: जी मालिक।
4: आ भैया इधर आ जाओ, आ भैया, लो ये लो, पूरे 10 हैं, गिन लो।
1: आओ आओ।
4: अरे और सुनो, आओ इधर आओ, ये यहाँ, हाँ अंगूठा लाओ, यहाँ लगा दो अंगूठा। हाँ बस मालिक लगवा लो अंगूठा।
3: बहुत अच्छा किया।
1: कर्ज के ही सही पर एक साथ 10,000 रुपए अपने पास आ गए, सोच कर ही बहुत अच्छा लगता है।
2: अच्छा तो तब लगेगा जब छोटे भाई को 100 रुपया दे दो खर्च करने के लिए, वो भी अपने मन से।
1: कैसी बात करता है, ये पैसे लौटाने हैं मुझे। चल अच्छा जलेबी ले चलते हैं, सब लोग खा लेंगे, सबका मुंह मीठा हो जाएगा।
2: छोड़ो भैया, जलेबी से मुझसे क्या मतलब है? आपको तो पता है मुझे क्या चाहिए।
1: अच्छा चल नाराज मत हो, ये ले 50।
2: अरे अरे मेरे अच्छे भैया।
0: ए अच्छा किया जलेबी ले आए, घर भर मगन है।
1: कर्ज की ही सही पर खुशी बनी रहे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत जमुनिया का दूसरा भाग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:58 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर आज पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। वे उत्तर बंगाल में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें प्रशासनिक बैठकें भी शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। भारत सिंगापुर त्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में हो रहा है। इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहा है। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में 550 प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में अकादमिक लैब का अवलोकन कर प्रशिक्षुओं से संवाद करेंगे। संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज से 10 सितंबर तक समरसता संकल्प अभियान और समरसता यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजधानी भोपाल के RCVP नरोना प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी में आज विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सर्वांगीण उत्थान, आजीविका संवर्धन, सामाजिक सुरक्षा के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

महिला सभा सुनने वाली सभी सखियों को आपकी अपनी दोस्त मनीषा नागदेवे का नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगी। सखियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक बन चुकी है, और वो है डिजिटल युग में बढ़ता अकेलापन। आजकल तकनीकी ने दुनिया को हमारी मुट्ठी में ला दिया। एक क्लिक पर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में हमारे बीच दूरियां कम हुई हैं या हम पहले से कहीं अधिक अकेले हो गए हैं। कहा जाता है, रिश्ते दिल से बनते हैं, मोबाइल से नहीं। बातें शब्दों से नहीं, एहसासों से पूरी होती है। आज हर हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन कई घरों में आपसी संवाद कम हो गया है। सब अपनी मोबाइल की दुनिया में सीमित होते जा रहे हैं। विशेष रूप से हम महिलाओं की बात करें तो पहले घर, परिवार, पड़ोस और रिश्तों में संवाद का एक मजबूत ताना बाना होता था। सुख दुख साझा किए जाते थे, लेकिन आज सुविधाएं बड़ी हैं परंतु आत्मीय बातचीत का समय घटता जा रहा है। इसलिए आवश्यक है हम तकनीक का लाभ लेते हुए तकनीकी और जीवन के बीच संतुलन बनाएं, और इसके लिए ज़रूरी है सखियों कि परिवार के साथ प्रतिदिन कुछ समय बिना मोबाइल के बिताएं। भोजन करते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। बच्चों से आमने सामने बात करें और उनकी बातें ध्यान से सुनें। अपने माता पिता, मित्रों, पड़ोसियों से समय समय पर मिलें। सप्ताह में कुछ समय प्रकृति, पुस्तक, संगीत या किसी रचनात्मक गतिविधि को दें। याद रखें सखियों, ऑनलाइन जुड़े रहना आसान है, लेकिन दिलों से जुड़े रहना सबसे बड़ी कला है, क्योंकि मोबाइल की रोशनी से चेहरे तो चमक जाते हैं, पर अपनों के साथ बिताए पल ही जीवन को जगमगाते हैं। तकनीक को अपनाइए, पर रिश्तों को मत भूलिए, क्योंकि सच्ची खुशी स्क्रीन पर नहीं, अपने लोगों के बीच मिलती है।

0: दिल से। सखियों, अभी हमने इस फिल्म का गीत सुना। आवाजें थी उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की। और अब बात करते हैं सरकार की मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के बारे में, जिसे अब संबल योजना भी कहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गरीब परिवारों को आर्थिक मदद, बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन और दुर्घटना या मृत्यु पर सहायता प्रदान करती है। ये योजना श्रमिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा तथा गरीब परिवारों को बिजली रियायत दरों पर प्रदान करती है। इसका लाभ लेने के लिए आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, व्यक्ति असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना चाहिए और आयकर दाता नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक सीएम हेल्पलाइन वेबसाइट पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है। किसी योजना से संबंधित समस्या या शिकायत के लिए सीएम हेल्पलाइन 181 का माध्यम भी उपलब्ध है। सखियों, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ध्यान रखें, सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता और निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। योजना से संबंधित जानकारी के लिए अपने स्थानीय निकाय, संबंधित श्रम विभाग कार्यालय अथवा अधिकृत सेवा से संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है कविता पाठ की। सखियों, हमारे अगले क्रम कविता पाठ हम सुनते हैं। कविता, जब संवेदनाओं का स्पर्श पाते हैं शब्द, तो वे कविता बन जाते हैं। कविता मनुष्य के जीवन की, मन की सुंदर अभिव्यक्ति होती है। ये कभी उम्मीद जगाती है तो कभी जीवन को नए अर्थ देती है। आइए सुने पलक जैन से काव्य पाठ।
1: मेरी पहली कविता का शीर्षक है मेरा आईना। मैं जो भी कहूँ ये मेरी हर बात सुनता है। समझ नहीं आता ये घर का आईना हर दिन इतनी कहानियां कैसे बुनता है। जैसे कहना कुछ वो भी चाहता है, जैसे कुछ बातें वो अपने अंदर ही छुपाता है। जैसे हजारों ख्वाब बस उसके ख्वाब ही हैं, जैसे वक्त के कांटों में उलझे हम दोनों बेताब ही हैं। खुद से ही ये लड़ता है, खुद ही से ये झगड़ता है। नासाज से अल्फाजों में वो फिर मुझसे कहता है। आवाज में एक कश होती है, आंखों में नमी, लब उसके कुछ कहते जरूर हैं, पर अगर दिल झांक के देखूं तो कुछ टूटा हुआ लगता है। जैसे उसने भी आज महसूस की हो कोई कमी। मैं हर रोज उससे मिलता हूँ, वो हर दफा एक कहानी कहता है। मैं हर रोज उससे मिलता हूँ, वो हर दफा एक कहानी कहता है। ये आईना मेरा, मेरा हर जख्म सहता है। अब जो मैं पढ़ने जा रही हूँ उस कविता का शीर्षक है तू चाह तो सही। तू चाहे तो तोड़ सकता है, तेरी ही तो बनाई हुई दीवारें हैं। तू चाहे तो छोड़ सकता है, तुझे खींचती ये तेरी ही तो बनाई हुई जंजीरें हैं। तेरे हौसलों की ऊंचाई अपार है, तेरी खुशियों की गहराई विस्तार है। तुझमें आग है सोना निखारने की, तुझमें प्यास है आखिरी बूंद तक लड़कर जी जाने की। तू बस चाह, अनजान है अभी तू खुद से। तू बस चाह, तू जीतेगा ये जहां। तू चाह तो सही, तू जीत सकता है खुद को। तू चाह तो सही, तू जीत सकता है खुदा को। अगली जो मैं कविता पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है यथार्थ जीवन। ईश्वर नहीं जो इस सृष्टि को अपने वश में कर पाए हम। संभव नहीं कि हर रंग की माटी में ढल पाए हम। आसान नहीं होता जीवन के हर क्षण में खुद को संभालना, पर हर स्थिति में जरूरतमंदों के लिए अपना कुछ खोना केवल दुआओं और प्यार के नाम पर एहसास कराता है जिंदगी में असली जीत की खुशी होना। एक जानवर भी अपने लिए जीता है, पर जिसने औरों के नाम अपना जीवन किया वही तो इस खेल में जीता है। बहारें तो आती जाती रह जाती हैं, बहारें तो आती जाती रह जाती हैं, पर वो बिन मौसम की बरसात ही तो याद रह जाती है। सम्मान के लिए झुकना और सम्मान से झुकना इंसान को कभी छोटा नहीं बनाता, पर वह भी सिखाता है जीवन में कभी नहीं है रुकना। इंसान की महानता तो उसके कर्मों से होती है। राजगद्दी पर बैठने मात्र से राम की प्रशंसा थोड़ी ना होती है। अपनी काबिलियत को समझना विश्व भर में एक महान कला मानी जाती है, और उसका सदुपयोग होने पर वह सम्मान की नजरों से पलकों पर बिठाई जाती है। भरोसा नहीं होता मेरी बातों पर तो इन्हें आजमा कर देखिए। अपने लिए ही ना सही पर औरों के लिए भी तो जिंदगी बिता कर देखिए। इस अनुभव का हर एहसास अनूठा है। बाहरी लग लगाव वो तो सब झूठा है, भला आप ही बताइए, ईमानदार और मेहनती महात्माओं से ईश्वर कभी रूठा है? मेरी इस कविता का नाम है तू मेरे साथ चल। चल कभी तो मेरी दुनिया में आ, कहीं और ना सही तो वहीं आकर तो खुद से मिल। एक तेरे ही तो नगमे हैं वहाँ, एक तेरी ही तो बातें हैं वहाँ, तेरे होने से वो हैं और तुझसे मैं। कभी खुद से डर जाए तो मुझ में बस जाना, कहीं खुद को खो दे तो मुझसे मिल जाना। जब रोने का मन करे तो तुझे कंधा होगा मेरा, जो तू टूट जाए तो तुझे जोड़ता एक धागा सा होगा मेरा। तेरे ना चाहने पर भी खुद को पाना है, मैं हूं ना जिंदगी भर के लिए, मुझे तुझ में और तुझे मुझ में खो जाना है। मेरी इस कविता का शीर्षक है एक वरक की कहानी। पत्ते हिलते हुए कुछ रुक से गए, जैसे हवाएं रूठ कर दूसरी ओर रुक कर गई हूँ। पतझड़ में टूटे एक पत्ते ने जैसे जमीन पर लेटे हुए सोचा, हवाएं आज बतिया नहीं रही, उसे बुला नहीं रही, उसे उड़ा नहीं रही, झुला नहीं रही। अपनों के हिज्र का गम तो उसे भी था, पर अकेला ही वो चल पड़ा एक मसाफत पर, जिससे था वो बिल्कुल अनजाना। आखिर एक वरक होने के नाते उसे भी तो था हवाओं को मनाना। लेकर अपनी हयात चला था वो, पर जानता कहाँ था नादान कि एक बशर उसे यूं दबोच देगा, मरोड़ देगा, कुचल देगा, यूं पाश पाश कर देगा उसके अरमानों को, मिलने भी नहीं देगा उससे हवाओं को। भला अपनी जिंदगी भी कोई ऐसे पामाल करता है। अब मैं एक और छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे तकिए सिरहाने तूने छोड़ दिए थे जो, तेरी खुशबू बनकर उड़े हैं आज वो। तू है तो बहारों ने बतियाना छोड़ दिया, तेरी सूरत क्या देखी इस दिल ने थम जाना छोड़ दिया। तूने कदम क्या रख दिए जमी पर, ये आसमां बन उड़ चले हैं, देख तो इन बादलों को, क्या ये बेवजह ही पागल बन फिरे हैं। उड़ चले मेरे सपने जहां मुड़ी तेरी परछाई, तिल तिल जोड़कर बनाया फिर भी लगती हर सांस में तन्हाई। शब भर इंतजार करूं तेरा, तेरे झूठे दिलासे में भी लगती सच्ची गहराई। अब तुझसे कैसे कुछ पूछूं मैं, अब अपने ही दिल से क्या खाक करूं मैं लड़ाई। आंसू की हर एक बूंद में तू है, खलवत के हर एक पल में तू है, खोजता हूं हर ओर तुझे, भूल जाता हूं ढूंढना अपने ही दिल में मैं। अब मैं आपके सामने एक और छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हैं ये पल खुशी के पल, जिंदगी बितानी इनमें, लहरों की तरह उछलकर सांसें आई हो जिनमें। नैनों ने जैसे दूर से एक बहता कगार चुना हो, सहमे से दिल ने जैसे फिर कोई सपना बुना हो। ए दिल साथ इनको जीते हैं चल, ये तेरे मेरे पल खुशी के ये पल। अब मैं एक छोटी सी कविता जो कि दो लोगों के एक सफर को डिस्क्राइब करती है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तू भी साथ चल, राह ना खो जाए कहीं, हम चले और रुके भी, थके हुए हम सो जाएं यहीं। एक तेरा सूरज होगा और होगा एक मेरा चांद, हम उन्हें कहीं भूल ना जाए रास्ते में, पहले ही तू देना दोनों को बादल की एक डोरी से बांध। मंजिल तक तेरे मेरे सपनों की कतार होगी, हर मुश्किल से लड़ती हमारी हौसलों की एक दीवार होगी। साथ एक फ्लमिंगो भी होगी और होगा एक घोड़ा, इंद्र से कहेंगे हम पानी लाने को, और खाना साथ हम ले आएंगे थोड़ा।
0: अभी हमने काव्य पाठ सुना पलक जी से, और अब सुनते हैं एक गीत। फिल्म का नाम है सड़क, आवाज है अनुराधा पौडवाल और मनोहर उदास की। मैं नजर न आऊं और वो बेचैन हो जाए, मैं नजर न आऊं और वो बेचैन हो जाए, काश ऐसा इश्क किसी को मुझसे हो जाए।

और सखियों, अब बारी है रूप लावण्य की और आज हम बात कर रहे हैं चटकीले कलर आपके बढ़ाते सौंदर्य की। सखियों, हर रंग की अपनी भाषा होती है। पसंदीदा रंग आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ कहता है। आज हम बात करेंगे चटकीले खूबसूरत रंगों की जो हम भारतीय स्किन पर बेहद अच्छे लगते हैं। वैसे भी अभी बारिश का मौसम है, साथ ही त्योहारों की भी शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे मौसम में आप चटकीले डार्क कलर पहनकर बेहद खूबसूरत दिख सकती हैं। लाल, पीला, हरा, नीला, नारंगी, बैंगनी, वाइन, डार्क ब्राउन, नेवी ब्लू, ये ट्राई करें। अगर आपको डार्क कलर पहनना कम पसंद है तो आप लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन कर सकती हैं। जैसे लाइट पिंक के साथ आप डार्क पिंक, स्काई ब्लू के साथ आप डार्क रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू, हल्के पीले कलर के साथ आप रेड मरून ट्राई कर सकती हैं। हर रंग में आपको बहुत सारे शेड लाइट और डार्क मिल सकते हैं। लाल में डार्क अगर आपको पसंद नहीं है लाल कलर, तो आप मैरून पहन सकती हैं, जो हर स्किन पर बेहद खूबसूरत लगता है। बहुत डार्क नहीं पहनना चाहती तो आप डार्क कलर की ड्रेस के साथ ब्लैक, ब्राउन या न्यूट कलर की सैंडल और पर्स लेकर अपना लुक कंप्लीट कर सकती हैं। इसी तरह आप अगर पिंक लाइट कलर की ड्रेस पहन रही हैं तो चटकीली डार्क पिंक कलर का दुपट्टा लेकर आकर्षक लग सकती हैं। साथ ही पूरे सिंगल कलर की आप लाइट कलर की ड्रेस पहन रही हो, सूट पहन रही हो, उस पर आप डार्क कलर का दुपट्टा लेकर आकर्षक लग सकती हैं। इसी तरह चेहरे पर सिंपल और न्यूड मेकअप करके आप कोई भी चटकीले डार्क कलर की लिपस्टिक जैसे रेड, वाइन, डीप मरून, डार्क पिंक लगाकर लुक आकर्षक और कंप्लीट कर सकती हैं। ध्यान रहे, शेड और कलर का चयन आप सावधानी से करें। और अब बारी है एक गीत की। फिल्म का नाम है आशिकी। हमें भी आते हैं तमाम इजहार करने के तरीके, हमें भी आते हैं तमाम तरीके इजहार के, मगर जिद है कि मोहब्बत है तो महसूस उसे भी हो।

इस खूबसूरत गीत के बाद सखियों अब बारी है फैमिली फिटनेस की। आज विषय है ब्रेड खाएं पर सोच समझकर। सखियों, ब्रेड को सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही नहीं बल्कि स्नैक्स, लंच और डिनर में भी खाया जाता है। इसे बच्चे हों या बड़े, सभी बड़े चाव से खाते हैं। ब्रेड में कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत होते हैं। इसमें फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है जिससे भरे हुए पेट का एहसास होता है। इसमें विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन भी कुछ मात्रा में होता है। आप होल ग्रेन या मल्टीग्रेन ब्रेड खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो भी आप ब्रेड खाएं सीमित मात्रा में, क्योंकि ब्रेड को बनाने या फुलाने में, मुलायम बनाने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। ब्रेड में ग्लूटेन के विकल्प के रूप में शुगर और दूसरे कई हानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ब्राउन ब्रेड में भी कई प्रकार के डार्क कलर देने के लिए कुछ मात्रा में केमिकल मिलाया जा सकता है। ब्रेड में कैलोरी काफ़ी मात्रा में होती है सखियों, तो अगर आप अपना वजन कम करना चाहती हैं तो सीमित मात्रा में खाएं और इस पर मक्खन जैम का उपयोग न करें। तो ये बात थी सेहत की, और अब घड़ी हमें धीरे धीरे इशारा कर रही है कि हम आपसे इजाज़त लें। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा है ये हमें अवश्य बताएं, और चलते चलते हम आपको बता दें कि हमारे इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार, और अब अनुमति दें अपनी दोस्त मनीषा नागदेवी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 होने को हैं और ये समय होता है लोक संगीत के कार्यक्रम का। आज के लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। कलाकार हैं दिव्या तिवारी और साथी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दिव्या तिवारी और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी और अगला कार्यक्रम यानी सुगम संगीत का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। कलाकार हैं दीप्ति मिश्रा और उनके साथी।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। कलाकार थी मिश्रा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
4: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
4: और झूलते झूलते सुनते हैं
2: मालवा की शान, आकाशवाणी
3: इंदौर।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गीत जिसको हमने लिया है आपके दीवाने से। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, राजेश रोशन का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म कसमें वादे से एक बार आवाजें, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की हैं। गुलशन बावरा ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है। सुनिए ये गीत।

0: कस्मे वादे फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:10 होने गए। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रदेश में किसानों को रबी सीजन के लिए खाद उपलब्ध कराने और कृषि योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एग्रीस्टिक पंजीयन, पैक सदस्यता और अग्रिम खाद उठाव अभियान आज से शुरू हो गया है। यह अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान किसानों की फार्मर आईडी बनाई गई और सुधारी जाएगी, पैक्स की सदस्यता बढ़ाई जाएगी, किसानों को पहले से खाद लेने की सुविधा दी जाएगी, साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड बनाने और 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी की जाएगी। कृषि विभाग के अनुसार खाद बीज लेने, फसल बीमा, कृषि यंत्रों पर अनुदान और ई मंडी में फसल बेचने के लिए फार्मर आईडी जरूरी है। किसानों से अभियान का लाभ उठाने की अपील की गई है। सीहोर में प्रतिबंध के बावजूद एनालॉग पनीर बनाए जाने का मामला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार देर रात पचामा गांव स्थित एक डेयरी पर कार्रवाई कर करीब 25 क्विंटल एनालॉग पनीर जब्त कर सील किया। जांच में पनीर के पैकेट पर कंपनी और उत्पाद का नाम नहीं होने सहित लेबलिंग में कई अनियमितताएं मिली हैं। मौके से बड़ी मात्रा में नमक और शक्कर भी बरामद हुई। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 12 अगस्त से एनालॉग पनीर के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध है। टीम ने पनीर के नमूने लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत सती गेट से गोपाल मंदिर तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंठाल चौराहा और सती माता मंदिर द्वार के प्रस्तावित विकास कार्यों की डिजाइन भी देखी। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री चिंताहरण गणेश के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
1: और उज्जैन में हमारे अपने धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से जो बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, उनके प्रबंधन की दृष्टि से मार्ग चौड़ीकरण भी देखने जा रहा हूं। साथ ही साथ सिंहस्थ 2028 में जब कुंभ मेले का सिंहस्थ का आयोजन होगा, ऐसे में 30 से 40 करोड़ लोग जो आने वाले हैं, उनके प्रबंधन के लिए जो जिस प्रकार से यहाँ तैयारियाँ की जा रही है, मैं अपनी तरफ से जनता से भी इस बात के लिए जनता का आभार मानना चाहूंगा, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने बड़े बड़े चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित मार्गों पर अपने स्वयं के निवास, व्यवसाय के संस्थान इत्यादि स्थान से अतिक्रमण हटाते हुए सभी धर्मों के लोगों ने जो सहयोग किया, मैं उनका आभार भी मानता हूँ।
0: कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने उन्हें निर्माण कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव पद पर पुनः निर्वाचित होने पर मध्य प्रदेश के अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रज्ञा बघेल 18 अगस्त को नई दिल्ली में हुए चुनाव में सचिव पद पर निर्वाचित हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पद पर दोबारा निर्वाचित होने वाली मध्यप्रदेश की पहली महिला अधिवक्ता के रूप में उन्होंने प्रदेश का मान बढ़ाया है। उन्होंने प्रज्ञा बघेल के सफल कार्यकाल की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज धार जिले के पीथमपुर के सागौर में प्रताप समूह के एडवांस ऑप्टिकल फाइबर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन और निरीक्षण किया। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय है। अगले 24 घंटों में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। दतिया, भिंड, निवाड़ी, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, कटनी, मैहर और सतना में भी भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 24 अगस्त के बीच बारिश का असर मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर पड़ सकता है। भारी बारिश के कारण सतना के चित्रकूट में गुप्त गोदावरी की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक शहडोल में आयोजित की गई। बैठक में जिले की भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या, क्षेत्रफल सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। शहडोल में बीते 3 दिन से लगातार पानी गिर रहा है। कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का असर आम जनजीवन पर पड़ा है। नदी नाले उफान पर हैं। आगरमालवा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कल हुई जिला पोषण समिति की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले को कुपोषण मुक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जबलपुर में 3 दिवसीय पारंपरिक दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन 2 शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु

0: के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
1: हमारी मैरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।
3: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने ये बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
4: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70,00,000 पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे

0: से बड़ा अभियान बताया।
1: एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है, हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
0: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और 1 सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिन वा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
0: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577, जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश में मैं हूँ आपके साथ जावेद खान, और पहला गाना हमने लिया है

नाम है ललकार और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं कालका से शुभचंद्र बजाज, चंद्रमोहन, इंद्रमोहन, बिट्टा बजाज और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, सेक्टर 67 मोहाली पंजाब से टीएस मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं अभिजीत गायकवाड़ राही, सरिता गायकवाड़, प्रिंस एकांश गायकवाड़, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गायकवाड़, प्रतीक प्रणीता गायकवाड़, अर्जुन गायकवाड़ टुक टुक, आकार हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गायकवाड़, सुमित गायकवाड़, कुमारी ध्वनि और उनके परिवार के सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकम खत्री, अलतमश खत्री, राकेश गौड़ और शादाब खत्री ने। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लच्छनपुर से लिखने वाले हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार, सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म मधुमती से, आवाज़ें हैं मुकेश और साथियों की, शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा है, सलील चौधरी का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषि का रॉबिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजबिये और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और इसी गाने को पसंद किया है जयराज प्लॉट राजेश कोर्ट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट ने।

अगला गाना लिया है हमने किशोर कुमार की आवाज़ में, और दूसरी आवाज़ है इसमें लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है खुद्दार। इस गाने को पसंद किया है आसिफ अली सिद्दीकी, छबड़ा राजस्थान से, वाहिद अली सिद्दीकी और शमी बानो ने, और गौतम नगर ज़िला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म खुद्दार से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। गुलशन बावरा ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है शाहू नगर यवतमाल से, राहुल मनवर, सल्ला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, स्वीट बेबी प्रियांशी। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है बक्सर बिहार से, शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून। डोंगराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम सोनम अदीबा, दानिश अंसारी। और सरीमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। जेल रोड दिल्ली से बाबूलाल दीवाना और दिव्या भारती। सुनते हैं ये गीत।

आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म धर्मवीर का एक गाना, आवाज़ें हैं मुकेश और मोहम्मद रफ़ी। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, और इस गाने को पसंद किया है दतरंगी। छत्तीसगढ़ से लिखने वाले हैं भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू और उनके सदस्य, ग्राम राजोनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श चंसोलिया सार्थक और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। कबाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, हेमलता श्रीवास्तव हेमानी, हर्षिता अभिषेक श्रीवास्तव और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।

0: इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज धार जिले के पीथमपुर के सागौर में प्रताप समूह के एडवांस ऑप्टिकल फाइबर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन और निरीक्षण किया। प्रदेश में किसानों को रबी सीजन के लिए खाद उपलब्ध कराने और कृषि योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एग्रीस्टेक पंजीयन, पैक सदस्यता और अग्रिम खाद उठाव अभियान आज से शुरू हो गया है। यह अभियान 15 सितम्बर तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंह 2028 की तैयारियों के तहत सती गेट से गोपाल मंदिर तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंठाल चौराहा और सती माता मंदिर द्वार के प्रस्तावित विकास कार्यों के डिजाइन भी देखी। सीहोर में प्रतिबंध के बावजूद एनालॉग पनीर पाए जाने का मामला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार देर रात पचामा गाँव स्थित एक डेयरी पर कार्रवाई कर करीब 25 क्विंटल एनालॉग पनीर जब्त किया है। और प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय है। अगले 24 घंटों में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। आइए हम आपको बता दें शाम की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी। आज की युवाणी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं 5:33 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 6:00 और 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 7:30 पर आप सुन सकते हैं किसान वाणी और 7:25 पर आप सुनेंगे बुंदेली समाचार। 8:00 के समय है कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत 9:30 पर भी आप सुन सकते हैं और आपकी फरमाइश कार्यक्रम रात 10:00 होगा। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर प्रभा आत्रे का गाया ख्याल गायन, राग होगा मधुमती। समय है 10:30। ये थे आज की शाम की सभा में प्रसारित होने वाले आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रम।

हम आपको याद दिला दें, इस वक्त हमारी घड़ी में 3:01 हो चुका है। अब हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5 बजे से आप मीडियम वेव पर प्रसारण पुनः सुन सकते हैं। इस बीच डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

टीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है और लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत के कार्यक्रम में दिव्या तिवारी और साथियों के गाए लोकगीत।

नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त मार्गेशा
1: और मैं अनुषा, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में।
0: तो दोस्तों, आज है गुरुवार का दिन और गुरुवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं खास सेगमेंट सफलता की कहानी।
1: और इसी के साथ दोस्तों, आज कई सारे अलग अलग विषय पर भी हम चर्चा करने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि आज का दिन क्या खास होता है और क्यों मनाया जाता है।
0: दोस्तों, किसी के साथ जैसा आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, और इस सब के बीच मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और इसी के तहत आपको जितना हो सके उतना बाहर का पानी पीने से आपको बचना है, और साथ ही बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, और अगर आप खा भी रहे हैं मजबूरी में तो ऐसी जगह पर खाइए जहां आपको स्वच्छता यानी हाइजीन की पूरी गारंटी हो।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने मार्गिशा, और पता है इसी के साथ साथ इस मौसम में मच्छर से फैलने वाली भी बीमारियां बहुत जल्दी और तेजी से फैलती है, और इसके लिए हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि घर में मॉस्किटो रिपेलेंस रखें, साथ ही घर के आसपास पानी जमा नहीं होने दें, और बाहर निकलते समय अपने हाथ पैर को अच्छे से ढकें और पूरी तरीके से हम इस बात का ध्यान रखें।
0: बहुत अच्छी बातें कहीं तुमने अनुषा, और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर बुजुर्ग और बच्चे हैं आपके घर में तो उनको कुछ ना कुछ ऐसे क्रीम्स आते हैं जो मॉस्किटो बाइट से बचाते हैं, उसको अप्लाई करके रखें, और जितना हो सके उतना घर के अंदर ही रहें, खासकर शाम के समय में। और दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं कि हर कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न पूछते हैं, और इन दोनों प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको कार्यक्रम के अंत में बताते हैं। तो इसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न है कि स्यूज कैनाल किन दो जल भागों को आपस में जोड़ती है,
1: और आज का दूसरा प्रश्न है कि नागरिकों के लिए ईट राइट मिशन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है।
0: तो दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर आप ढूंढ के रखिए, जिसके उत्तर हम कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे। इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की इस गीत के साथ।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: तो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं और वो है अक्षय ऊर्जा।
3: जी हाँ, हर साल 20 अगस्त को पूरे भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसका उद्देश्य है लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, बायो ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा के महत्व के बारे में जागरूक करना।
2: बिल्कुल सही। अब आप जरा सोचिए कि अगर हम सिर्फ कोयला और पेट्रोलियम जैसे स्रोतों पर ही निर्भर रहे तो वो एक तो ये है कि वो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे और साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ेगा।
3: सही कहा अनुषा। इसी वजह से अक्षय ऊर्जा यानी जो कभी खत्म ना हो उसका प्रयोग बेहद जरूरी है। सूरज की रोशनी से सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, हवा से पवन एनर्जी यानी विंड एनर्जी और बहते पानी से जल ऊर्जा यानी कि वाटर एनर्जी, ये सब हमारे लिए अत्यंत खजाना है दोस्तों।
2: बिल्कुल सही। और इतना ही नहीं मार्गिशा, भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं भी शुरू की है।
3: हाँ, सही कहा तुमने। जैसे जिनके नाम मुझे अभी याद है वो है राष्ट्रीय सौर मिशन यानी नेशनल सोलर मिशन, प्रधानमंत्री कुसुम योजना PM कुसुम, जिसके तहत किसान अपने खेतों में सोलर पंप लगाकर सिंचाई कर सकते हैं,
2: और साथ ही सोलर रूफटॉप योजना जिससे हम घर घर में बिजली बना भी सकते हैं और उसकी बचत भी कर सकते हैं।
3: इसके साथ मुझे एक और याद आ रही है जिसका नाम है ऊर्जा मंत्रालय और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय लगातार लोगों को हरित ऊर्जा की ओर प्रोत्साहित कर रहे हैं दोस्तों।
2: बिल्कुल सही। श्रोताओं, अक्षय ऊर्जा सिर्फ सरकार की योजनाओं तक सीमित नहीं है। अगर हम सभी छोटी छोटी आदतें अपनाएं तो हम भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
3: सही कहा। जैसे कि अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाना, ऊर्जा कुशल LED बल्ब का प्रयोग करना, पानी और बिजली की जो बर्बादी है उसको कम से कम करना।
2: अगर हम अक्षय ऊर्जा अपनाएंगे तो न केवल बिजली के बिल कम होंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण भी मिल सकेगा।
3: तो दोस्तों, आइए इस अक्षय ऊर्जा दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि ऊर्जा का प्रयोग समझदारी से करेंगे और अक्षय ऊर्जा को अपने जीवन में अपनाएंगे,
2: क्योंकि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का सृजन है और अक्षय ऊर्जा अपनाना ही सतत विकास की दिशा में कदम बढ़ाना है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तो दोस्तों, जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि आज है हमारा खास सेगमेंट सफलता की कहानी, और इसी के तहत हम आज आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर सोनाली नरगुंदे से हुई हमारी ये बातचीत। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि युवाओं के लिए मार्गदर्शन में भी बहुत मददगार साबित होगी। तो आइए सुनते हैं हमारी ये सफलता की कहानी।
3: दोस्तों, हर एक व्यक्ति का जीने का अपना तरीका होता है, और इन सभी तरीकों में हर रोज नए नए जिंदगी के उतार चढ़ाव आते हैं, कई सारे किस्से बनते जाते हैं, और यही किस्से आगे चलकर बनती है कहानियाँ। लेकिन सबकी नजर जहाँ होती है वो होती है सफलता पर, लेकिन उसमें कई बार ऐसा होता है कि कहीं भी बिना कुछ सोचे समझे चले जाना, यानी कि हम कहीं भी नहीं पहुंच पाते, और ऐसे वक्त हमें जरूरत होती है एक अच्छे मार्गदर्शन की। और खासकर आज की युवा पीढ़ी जो पूरे तरीके से मीडिया से जुड़ी है और घिरी हुई है, ऐसे में एक बहुत ही रोचक यानी कि मीडिया ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है जो बहुत महत्व रखता है। और इस विषय पर आज हमें मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है, मैं कहूंगी एक पत्रकार, एक बेबाक वक्ता, एक लेखिका, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर सोनाली नरगुंदे। सबसे पहले तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने समय निकाला और आप हमारे युवा श्रोताओं से जुड़ने यहाँ आई।
4: सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वे यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैं कुछ मार्गदर्शन दे पाऊं ऐसी मैं अपने आप से भी उम्मीद करती हूं, क्योंकि मैं जनसंचार मीडिया की एक विद्यार्थी भी हूं और शिक्षक भी हूं, तो मेरी भूमिका थोड़ी सी अलग लगती है मुझे अपने आप।
3: सबसे पहले तो मुझे लगता है हम सभी ये जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे बढ़ी और कैसे आपने इसमें कदम रखे।
4: पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अमूमन कोई भी परिवार से जाना नहीं चाहता है, और मेरे परिवार में तो किसी भी पीढ़ी में कोई भी पत्रकारिता में नहीं था। प्रारंभिक तौर पर मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन उस समय पीएमटी हुआ करती थी, जो प्राइमरी है, जो नीट होती एग्जाम, वो बहुत टफ थी, और कुछ लोगों के फेलियर का जो एक दोषारोपण मेरे सिर पर आया और मुझे वो परीक्षा में आगे नहीं जाने दिया गया। तो मैंने सोचा कि अब मैं मुझे क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो पहले दिशा कॉमर्स की तरफ मुड़ी। लेकिन सपने देखने की दुनिया और आंखों में हमेशा सपने बनते रहे हैं। बचपन से ही मुझे लिखने की और कविता कहानियां और ये सब साहित्य से अलग तरह का लगाव रहा। मतलब मैंने हर छुट्टी में और रोज जितना समय मिलता है उसको पढ़ने में ही बिताया। मतलब जिस लाइब्रेरी से कोई किताब मिल जाए, किसी के घर से, वो सारी किताबें हमें पढ़नी ही है, और कोई किताब मिली है उसको छोड़ना नहीं है, ये एक मन में पहले से ही रहा। और साहित्य मिला भी मुझे वैसा पढ़ने के लिए। मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन तक हिंदी साहित्य पूरा पढ़ लिया था, जितना भी पढ़ सकती थी मैं, जो मेरे को अवेलेबल हुआ। तो मुझे लगता है कि साहित्य पढ़ने से एक अलग तरह के लेखन का एक अलग लगाव रहा, और लिखने की आदत बचपन से रही थी, कुछ न कुछ लिखते रहती थी। बाद में सोचा कि जब इस लेखन की आदत को और लगातार किसी काम में डाला जाए तो पत्रकारिता एक क्षेत्र नजर आया। हालांकि मेरी दूसरी रुचि सोशल वर्क भी थी, लेकिन सोशल वर्क, चूंकि मेरी माँ भी सोशल वर्क कर रही है, उन्होंने भी सोशल वर्क के MSW की पढ़ाई की थी, तो उनका कहना था कि जब हमने देख लिया है वो, अब तुम नया कुछ करो, फिर ये मत करो। तो मुझे MSW से खींच करके उन्होंने फिर कहा कि नहीं, कुछ और लाओ। कुछ और में मुझे ये जर्नलिज्म समझ में आया, और फिर जर्नलिज्म की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने जर्नलिज्म काम भी किया, एक अखबार में पत्रकारिता में काम भी किया कुछ समय, उसमें संपादन का काम भी किया, रिपोर्टिंग का काम भी किया। तो ऐसे पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गई, और अभी भी जारी है वो लिखना पढ़ना।
3: तो देखा जाए तो एक समाज सेवा की भावना जो अंदर से थी ही पहले से ही, और एक आपने जो बताया कि एक अच्छा पढ़ने की जो एक आदत है वो अक्सर लोगों को कहीं और अच्छी दिशा दिखा जाती है। लेकिन जैसे आपने बताया कि आपने कई सारी संस्थाओं के साथ काम किया और जर्नलिज्म में काम किया, वो दौर एक ऐसा था जब शायद ही बहुत कम लोग उसमें कदम रखते होंगे, तो आप क्या समझती हैं कि क्या कुछ चुनौतियां तब की अलग थी या आज अलग है, या नहीं अभी भी एक स्तर वैसा ही चला आ रहा है जो लोग इसमें कदम रखना चाहते हैं पहली बार उनके लिए?
4: मीडिया, क्या कहूँ मैं, हर क्षेत्र में चुनौती है, कभी भी चुनौती कम नहीं होती, चुनौती हर समय में बनी रहती है। ये बात अलग है कि उसका स्तर ऊपर नीचे हो सकता है। तब संसाधनों के स्तर पर हम लोग थोड़े कमजोर थे, तब टेक्नोलॉजी आई ही थी, कंप्यूटर हमको मिला, तो ये टेक्नोलॉजी का दौर जो अब है ये संसाधन संपन्न पीढ़ी है। लेकिन संसाधन संपन्न पीढ़ी के चुनौतियां कम हो गई ऐसा नहीं है, बल्कि और अवसर बढ़ गए हैं ये कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय एक सीमित दायरा था। आपको अखबार में काम करना है, आपको रेडियो में काम करना है, या आप टीवी में काम कर सकते हो, आपके पास ये तीन ही क्षेत्र थे काम करने के, बहुत कम विज्ञापन एजेंसीज थी। अभी तो इंदौर में इतनी सारी विज्ञापन एजेंसीज हैं कि बच्चे बहुत सारे अलग अलग जगहों पर काम कर सकते हैं। तो चुनौतियां तो हैं लेकिन अवसर ज्यादा बढ़ गए हैं, ऐसा मेरा मानना है।
3: इसी के साथ यदि हम देखें कि पहले एक कोर्स नहीं हुआ करता था और रुचि रखता था जो व्यक्ति वो इसमें आ जाता था, या मन में खोजी कोई व्यक्ति है जो कुछ तलाश कर रहा है, तो अब जैसे ये नया कोर्स आया है तो आप हमारे श्रोताओं को थोड़े, कैसा कोई व्यक्ति इस फील्ड में अपना करियर अगर बनाना चाहता है तो कैसे वो क्या कुछ कर सकता है, कोई एग्जाम है वो देनी होती है, क्या कोर्स एक होता है जो उसको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना पड़ेगा?
4: जिस डिपार्टमेंट से मैं हूँ, जिससे मेरा संबंध है, पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययन शाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का एक विभाग है जो 1984 में बना था और इतना पुराना हमारा विभाग है। प्रारंभिक तौर पर हमारे यहाँ एक ही पाठ्यक्रम हुआ करता था और देश में क्या पूरी दुनिया में मीडिया स्टडीज की अगर हम बात करते हैं तो ये 60 के दशक से आई है। उस समय लोगों ने सोचा कि मीडिया स्टडीज करना चाहिए या जनसंचार की पढ़ाई करवाई जानी चाहिए। उसके बाद अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में कालांतर में इसकी पढ़ाई होने लगी और एक पाठ्यक्रम के रूप में इसको बना लिया गया। हमारे डिपार्टमेंट की स्थापना 1984 से हुई, वहां से एक डिपार्टमेंट एक पाठ्यक्रम के साथ आया। मैं ये कह सकती हूँ दावे के साथ कि जितना पूरा मध्य क्षेत्र है भारत का, उस मध्य क्षेत्र में सबसे अच्छा विश्वविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है और उसका अच्छा विभाग है मीडिया का विभाग, जो हमारा विभाग है पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला। वहां पर हम लोग पहले प्रारंभिक तौर पर एक पाठ्यक्रम चलाते थे, फिर 2000 में हमने मास्टर डिग्री वहां पे शुरू की, जब लगा कि हमें इसे शोध के क्षेत्र में आगे ले जाना चाहिए। मतलब पत्रकारिता तो कर ही रहे थे लोग और उस पाठ्यक्रम को करके भी कर रहे थे। पहले लोग संपादक जो थे वो साहित्यकार संपादक थे, बाद में संपादक पढ़ करके साहित्यकार साहित्य के क्षेत्र में आए या संपादन के क्षेत्र में आए। तो ये इंडस्ट्री और एकेडमी का जो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है, ये सिर्फ मीडिया के क्षेत्र में नहीं है, हर संबंध में बना रहता है। मतलब तो वो हमारे जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी हमको देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप जर्नलिज्म की पढ़ाई करा रहे हो तो फिर हमारा इंडस्ट्री एक्सपर्ट कहेगा कि नहीं, ऐसा हमको चाहिए पत्रकार। पत्रकार बनाए नहीं जाते, पत्रकार बनते हैं। वही बात, साहित्यकार बनाए नहीं जाते, साहित्यकार होते हैं। पत्रकार वो हो सकता है जिसको लिखना पढ़ने का बेसिक इंस्टिंक्ट उसके अंदर है, वो जानता है कि क्या लिखना है क्या पढ़ना है, समाज की नब्ज पे उसकी नजर है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर एक देश प्रेम और समाज प्रेम का जज्बा होना चाहिए। क्योंकि जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं तो वो चौथे पिलर के रूप में जाना जाता है, जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं तो उसको पैशन के रूप में देखा जाता है। प्रोफेशन बाद में बना है ये, जब हम इसको 80s के बाद देखते हैं तो हम प्रोफेशन के रूप में इसको देख पाते हैं कि लोग व्यावसायिक तौर पर इसे अपनाने लगे। लेकिन उस अपनाने लगे तो उसमें डिग्री की प्राथमिकता हो गई कि आपको डिग्री आवश्यक है, पाठ्यक्रम करके आए होंगे तो उसको नौकरी मिलेगी। तो रोजगार के क्षेत्र में डिग्री की उपयोगिता हमेशा से रही है कि जब किसी व्यक्ति का चयन करते हैं तो उसने क्या पढ़ाई लिखाई की है ये लोग देखते हैं इंडस्ट्री वाले। तो यहाँ पर फिर इंडस्ट्री

0: इसकी उपयोगिता को स्थापित किया कि अगर आप बीजे करके आए हैं तो आपको ये जर्नलिज्म का जॉब मिलेगा। फिर बैचलर प्रोग्राम मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी आया इसमें बाद में, जिसमें सोचा गया कि एक ग्रेजुएशन की प्रोग्राम क्यों न लाया जाए, तो ये ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी आके अब तो 21 साल हो गए हैं और इसमें बहुत सक्सेसफुल है। पूरे देश में ये प्रोग्राम चलते हैं, हर यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की डिग्रीज को चलाया जाता है, उनके अलग अलग नाम है सबके। कई जगह पर स्पेशलाइजेशन के तौर पर भी कोर्स चलते हैं, जैसे ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का एक अलग पाठ्यक्रम चलता है, फिल्म स्टडीज का अलग पाठ्यक्रम चलता है, टेलीविजन जर्नलिज्म को अलग से पढ़ाया जाता है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को अलग से पढ़ाया जाता है। तो जितने जनसंचार के जितने आयाम हैं, उन सभी आयामों पर पाठ्यक्रम अभी उपस्थित।
1: तो मेरा अगला प्रश्न यही होने वाला था कि इसमें क्या क्या अलग अलग क्षेत्र हैं, क्योंकि कई बार खास करके जब हम आज के दौर में जब मोबाइल से जुड़ा हुआ मीडिया जब देखते हैं तो इसके आगे एक अंधेरा हो जाता है और कोई भी और जो फील्ड होती है वो दिखाई नहीं देती, या यूं कहें कि पता ही नहीं होती है, जिसके बारे में जो खास करके आज के हमारे युवा हैं वो जान नहीं पाते। ऐसे इसमें क्या कुछ क्षेत्र अलग अलग हैं, या यूं कहें कि जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन एक तरीके से होता क्या है, ये असल मायने में मुझे लगता है कि ये जानकारी शायद ठीक तरीके से हमारे पास नहीं है, तो ये क्या होता है?
0: अगर हम इसे देखें कम्युनिकेशन से, संचार से शुरू करते हैं, तो कम्युनिकेशन एक बड़ा क्षेत्र है, बड़ा एरिया है, उसी के अलग अलग हम भाग देख सकते हैं। जैसे पत्रकारिता उसका एक भाग है, जनसंचार उसका एक भाग है, विज्ञापन उसका एक हिस्सा है, जनसंपर्क उसका एक अलग भाग है, अभी वर्तमान में कॉरपोरेट कम्युनिकेशन और मीडिया लीगल जो विंग है वो भी एक अलग तरह से काम कर रहा है, जिसमें इंडस्ट्री में जो कम्युनिकेशन और मीडिया की पढ़ाई करके आते हैं उन लोगों को वो लोग रोजगार मिलता है वहां पर, जिसमें वो कंपनी के लिए एडवाइजरी का काम करते हैं, कम्युनिकेशन एडवाइजरी का भी काम होता है। फिर विकास संचार एक अलग क्षेत्र है, जहां पर देश में होने वाले विकास को किस प्रकार से संचारित किया जाता है, तो उस डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में एनजीओज में काम है, बड़े इंटरनेशनल नेशनल सभी मतलब दोनों स्तर पर यहां पर रोजगार उपलब्ध है। अगर हम बड़े वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो भी यहां पर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में हमारे पास रोजगार की संभावना बहुत सारी हैं, स्थानीय स्तर पर भी हैं, हमारे एनजीओ के स्तर पर भी हैं। फिर जब हम जनसंपर्क की बात करते हैं तो सरकारी जनसंपर्क और गैर सरकारी जनसंपर्क, इन दोनों क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं बराबरी से बनी हुई हैं और लोग इसको काम कर रहे हैं। मतलब इसमें जैसे मीडिया अधिकारी हो गया, जनसंपर्क अधिकारी हो गया, तो ये जनसंपर्क के काम करेंगे। इंदौर एक मीडिया हब है, तो इंदौर में ही बहुत सारी विज्ञापन एजेंसीज हैं जहां पर की बच्चों को रोजगार मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मतलब उसमें उनको जॉब्स मिलती हैं। तो वो क्या क्या जॉब्स हैं उसमें, अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो वहां पर न सिर्फ मार्केटिंग वाला सेगमेंट बच्चे देखते हैं क्योंकि वो अच्छे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होते हैं, बल्कि वो लेखन में भी जा सकते हैं। विज्ञापन को लिखने से लेकर के विज्ञापन के निर्माण तक की एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं, जैसे प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, सिनेमा बनाना, सिनेमा के अंदर, सिनेमा पे जो सामने दिखता है उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है और वो लंबी कहानी पूरे रोजगार के नए अवसर मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए खोलती है।
1: अगर इतने सारे हमारे पास इतने क्षेत्र हैं एक तरीके से देखें और उतनी ही रोजगार की संभावनाएं भी हैं, लेकिन जब हम इसको अपने असल मीडिया से जोड़कर देखते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर हमें एक कोर्स जो पढ़ाया जा रहा है या जो आपने अभी बताया कि डिग्री का क्या महत्व है, वो यहाँ समझ में आता है कि इसके जितने भी आयाम है वो शायद से इसको पढ़ने के बाद ही एक व्यक्ति समझ सकता है। जैसा आपने अभी बताया कि आप इतने सालों से एकेडमिक से भी जुड़ी रही है, तो आपके नजरों के सामने से कई सारी ऐसी जनरेशन है जो गुजर चुकी है। इन दिनों कई बार आपने ये सुना होगा और कि हर एक जनरेशन अपने आप में एक अलग खूबी लेकर आती है और उन्हें रिसर्चर्स द्वारा एक नाम भी दिया जाता है कि ये जनरेशन है, ये जनरेशन है। एक जनरेशन आई है जो जेन जी के नाम से बड़ी पॉपुलर है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जेन जी जो है वो आइडेंटिटी उनकी बन चुका है। और ऐसे में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पत्रकारिता और जनसंचार में यानी मास कम्युनिकेशन में इस जनरेशन का क्या भूमिका हो सकती है, क्या अच्छाइयां इनकी काम आ सकती
0: है? जेन जी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हर पीढ़ी अपने आप में एक अच्छी पीढ़ी होती है, हर पीढ़ी अपने समय में अपने समय के लिए काम करती है, ये पीढ़ी भी अपने समय के लिए काम करेगी, ऐसी उम्मीद है इनसे। ये बात अलग है कि इनके पास संसाधन बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत अच्छी है, तो सबसे मुख्य मुद्दा किसी भी पीढ़ी के काम करने का आता है उसके दिशा निर्देशन में। अगर आप उनको सही दिशा निर्देशन देते हैं तो वो सही काम कर पाती है, चाहे वो जेन जी हो, चाहे जेन अल्फा हो, चाहे मिलेनियल हो, चाहे बेबी बूमर्स हो, इन सब, तो ये पीढ़ी भी अपने लिए काम करेगी, जेन जी, ऐसा उम्मीद है इनसे, बशर्ते कि इन्हें कोई बहकाए ना। और जो इनकी योग्यता है, योग्यता से तो कोई इनकार नहीं करता है क्योंकि हर पीढ़ी अपने आप पिछली पीढ़ी से आगे आती है, ये तो सभी जानते हैं कि जनरेशन नेक्स्ट हमेशा जनरेशन नेक्स्ट रहती है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन को क्या डायरेक्शन देनी है ये उनके परिजनों का काम होता है, उनके शिक्षकों का काम होता है। तो मुझे लगता है कि शिक्षकों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं क्योंकि जेनजी में जो खेमे दिखाई देते हैं उनको पूरा एकत्रीकरण करके फिर से उनको एक अपने बच्चों की तरफ आगे बढ़ाना, ये एक थोड़ी सी चुनौती है शिक्षकों के लिए। मुझे लगता है कि निकल जाएंगे इस चुनौती से भी और ये बच्चे अच्छा कुछ करेंगे देश के लिए।
1: जब भी कोई नया व्यक्ति इस क्षेत्र में अपने कदम उठाता है या चाहता भी है, तो जैसे इस दुनिया को दूर से बड़ा अलग समझा जाता है, लेकिन असल में एक ऐसा व्यक्ति जो आपने बताया, एक जुझारू जो सत्य की खोज में है, अंदर से उसमें होना चाहिए। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जो युवा बच्चा है वो जरूर चाहता है ऐसे किसी सब्जेक्ट को परस्यू करना, लेकिन कई बार घर परिवार की तरफ से इस तरीके की चीजें होती है जो शायद उन्हें इस चीजों को करने से रोक देती है। तो मैं चाहूंगी कि आप ऐसी कुछ चीजें बता दें, ये जो हमारे युवा श्रोता सुन रहे हैं, उनके माता पिता सुन रहे हैं, उन्हें ये समझ आए और ये पता चल सके कि क्या कुछ है इस विषय में, कितना सेफ है, कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज भी है, और साथ ही साथ रोजगार के साथ साथ उनकी भरपूर सेफ्टी भी यहाँ पर है।
0: जब करियर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अभी तो ये परिवर्तन मैं देख पा रही हूँ कि अब जो पेरेंट्स हैं, अब जितने भी अभिभावक हैं, वो सारे अपने बच्चों को ही चुनने का अवसर दे रहे हैं, वो स्वयं चुन रहे हैं बच्चे उन्हें क्या करना है। बहुत कम है दबाव बनाने वाले परिजन, ऐसे बहुत कम देखे, मतलब मैंने तो ये देखे कि जिसको जो करना है करने दे रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर कहीं अवरोध है तो उस अवरोधों का जवाब यह है कि देखिए, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं रोजगार के अवसर वहां रहते हैं, और जब हम जनसंचार या मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया अपने आप में एक अलग क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा कल्पनाशीलता, बहुत ज्यादा व्यवहारिकता, बहुत ज्यादा सृजनशीलता के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर जो बच्चा जितना अधिक इमेजिनरी रखता है, जितना अच्छा आइडियाज रखता है, जितने नवाचार करने वाला बच्चा होता है या स्टूडेंट होता है, उसको इसमें आने देना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि पेरेंट्स आइडेंटिफाई करने लगे हैं, पर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि पूरे देश का जो एक रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें मीडिया का रेवेन्यू जनरेशन अपने आप में बहुत बड़ा है। तो मीडिया के जो सेक्टर्स मैंने बताए, जैसे एडवर्टाइजिंग में बच्चे को आप भेज सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस में भेज सकते हैं, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में भेज सकते हैं, डेवलपमेंट जर्नलिज्म में भेज सकते हैं, हेल्थ कम्युनिकेशन में भेज सकते हैं, प्रिंट मीडिया में भेज सकते हैं। प्रिंट मीडिया में भी मैगजीन है, न्यूज पेपर्स हैं, पीरियडिकल हैं, बहुत सारी चीजें पब्लिश होती हैं, तो उसमें भी जा सकते हैं। बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउस आजकल खुले हैं जो मीडिया के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। टेलीविजन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जहां पर लोग बच्चे टीवी में न सिर्फ ऑन स्क्रीन बल्कि बिहाइंड द सीन पूरे प्रोडक्शन में काम करते हैं। रेडियो में भी यही सिनेरियो है, एफएम चैनल्स को देख सकते हैं आप। अब हमारे पास एक नया क्षेत्र है जो है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। डिजिटल मीडिया के साथ हम सोशल मीडिया देख सकते हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म बनाना और प्लेटफॉर्म को रन करना नहीं, बल्कि उस प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले भी अपने लिए रोजगार के साधन यहाँ पर सर्च कर पा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास ओटीटी एक ऐसा बड़ा सेगमेंट है सिनेमा के बाद, जहाँ पर अभी अगर हम न सिर्फ एक्टिंग या प्रोडक्शन बल्कि उसके पूरे संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया में बहुत अनगिनत क्षेत्र हैं जिसमें रोजगार उपलब्ध है। और आप देखिए कि ओटीटी में आपको जो जनरेशन काम करती हुई दिख रही है वो सारी यंग जनरेशन है, तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा बढ़े हैं। बस आपको अपने अंदर विश्वास रखना पड़ेगा, और अपने परिजनों को आप विश्वास में लेकर कोई काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभिभावक मना करते होंगे।
1: और जैसा आपने बताया कि आप बचपन से ही कई सारी किताबें पढ़ती आई हैं, ऐसा कोई जिसने आपको कभी इंस्पायर किया हो?
0: उम्र का एक अलग अलग दौर रहता है, तो हर दौर में अलग लेखक पसंद आता रहा है। प्रारंभिक रूप में जब मैं 8वीं 9वीं में, तो शिवानी बहुत पसंद आई। एक दुनिया अलग कल्पना लोक में थी, उसमें पहाड़ थे, जो पहाड़ की जो एक सौंदर्य है, पहाड़ की लड़की है, परिवेश पूरे दिमाग पे छाया हुआ था। उसके बाद में फिर भगवती चरण वर्मा आए, फिर वृंदावन लाल वर्मा, उसके बाद फिर निर्मल वर्मा को पढ़ा, गुलजार साहब को पढ़ा, सबको देख के पढ़ के कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें अंदर। बाद में फिर सिनेमा के साथ, जब सिनेमा, मैंने फिल्म एस्थेटिक्स का भी कोर्स किया, फिल्म एप्रिसिएशन का पुणे से, उसके पहले भी मैं सिनेमा देख रही थी, लिख रही थी, पढ़ रही थी, लेकिन जब वो पूरा एक पाठ्यक्रम कर लिया तो मुझे लगा कि बिहाइंड द सीन बड़ी लंबी कहानी है, तो फिर उनसे भी एक अलग तरह का संबंध बन गया।
1: यूं कहा जाए कि ये एक पूरा एक ऐसा सफर है जहां पर सिर्फ पढ़ लेना या डिग्री ले लेना ना होते हुए हर तरफ से घूम कर कहीं कुछ पढ़ा, साहित्य देखा, फिल्में देखी, और उससे निकलकर जो आता है
0: उसमें जीवंत बने रहना, बस वो एक जीना है। वो
1: काफी कुछ आज हमें पता चला कि कैसे इस कोर्स में हम एंट्री ले सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या इसमें अलग अलग क्षेत्र हैं, और उन सभी में काफी सारे रोजगार के अवसर भी हैं। जो आज हमारा युवा श्रोता सुन रहा है, आप अपनी तरफ से उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं, चाहे वो इस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा रहे हो या कोई और अपने जीवन में तलाश रहे हो, उनके लिए क्या संदेश है?
0: बस एक बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जब आपको कोई बात कहता है तो वो अपने अनुभव के आधार पर कहता है। हम जब अनुभव आधारित कोई बात किसी को कहते हैं तो उसका अपना महत्व होता है, और ये महत्व ये पीढ़ी खो रही है। जेन जी की सबसे बड़ी परेशानी नजर आ रही है कि अनुभव आधारित शिक्षा उन्हें नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको सुनने की प्रवृत्ति बढ़ानी चाहिए, और सुनने की और सहन करने की। सिर्फ इतना ही है कि आप वो बात सुने, उस बात को सुनने के लिए जितना समय आपको लगता है ना, उतना सहन शक्ति आपसे समाज और समय मांगता है।
1: अंत में सही लेकिन ये बात निकल कर आ गई कि कम्युनिकेशन मतलब सब समझते हैं कि हम अपनी बात रख दें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बात पर प्रकाश डाला। साथ ही एक ऐसा कोई गीत जो आप चाहती हैं कि आपकी ओर से आकाशवाणी पर बजाया जाए या आप हमारी श्रोताओं को सुनवाना चाहें?
0: वैसे तो मुझे जो सबसे पसंदीदा गीत है वो मेरी मम्मी गाती रही हैं, वो है लेकिन वो किसी सिनेमा में नहीं है शायद,
1: बिल्कुल

0: की सुना देती हूँ। गीत जिंदगी के हम गाएंगे सुनाएंगे, गीत जिंदगी के हम गाएंगे सुनाएंगे, हम दीवाने जीत के जीत कर दिखाएंगे। और वैसे मुझे पसंद है बहुत सारे गाने, सुनील दत्त की किसी भी फिल्म का कोई भी गाना मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सुना देंगे।
1: बिल्कुल सुनाएंगे हम आपकी पसंद का गीत। आप यहाँ आई, आपने हमारे श्रोताओं को इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सफलता की कहानी का ये जो सेगमेंट है इसमें एक मार्गदर्शन के रूप में आज का जो ये सेगमेंट है वो इनके लिए साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
0: धन्यवाद।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
4: तो दोस्तों, हम सभी के जीवन में ना एक ऐसा क्षण आता है जब हम सभी ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने लगते हैं, और ये वक्त ज़्यादातर हम युवावस्था में होते हैं तब आता है।
1: बिल्कुल सही कहा मार्गिशा तुमने।
4: और इसी समय हमारी जिंदगी में ना बहुत सारे वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल गलतियां भी हम कर बैठते हैं। मुझे इस बात पे इसलिए हंसी आ रही क्योंकि मैंने भी अभी ये गलती की थी। और क्योंकि हम ना बहुत नए होते हैं, हमारे जिंदगी में पैसा आने लगता है और हमें कहीं ना कहीं मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, और उसी कारण हम कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमें इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है।
1: तो दोस्तों, अभी हम आपको कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करें और कैसे उसका सही इस्तेमाल करें ये जरूर बताएंगे। और फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

0: छोड़ना होता है। छोटी उम्र में दोस्तों अगर हम बचत और निवेश की आदत डाल लेना तो कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ आपको बहुत अच्छे से मिल सकता है, जिससे आप भविष्य में एक बड़ा कोच जिसे हम वेल्थ कहते हैं, आप अपनी बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हैं दोस्तों।
1: बिल्कुल सही। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण काम है और वो है अपनी मासिक आय और अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखें। सबसे पहले अपनी जरूरतों जैसे कि किराया, हमारा खाना, छोटे मोटे बिल, इन सभी का खर्च निकालें और अनावश्यक खर्च करने से बचें।
0: सही कहा दोस्तों, हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में तब हम फंस जाते हैं या हमें प्रॉब्लम्स आ जाती है जब बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो, जैसे कि हॉस्पिटल के बिल्स हो सकते हैं या कोई भी ऐसा काम हो सकता है जिसके लिए आपको बहुत अर्जेंट मनी लगे, और इस समय में आपकी बचत ही आपको सबसे ज़्यादा काम आएगी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो अपनी छोटी छोटी बचत है उसका एक बहुत अच्छा एस्टिमेट रखें, टारगेट सेट कर लें कि मुझे इतने दिनों में इतनी बचत करके रखनी है, हर महीने आप अपनी सैलरी में से आप कितना बचा सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको आपने पहले से ही डिफाइन करके रख दिया तो बचत करने में काफी आसानी हो सकती है।
1: बिल्कुल सही। और कई बार मार्गशीर्ष ऐसा होता है कि जो युवा होते हैं वो कई बार कर्ज लेने की आदत उनकी डल जाती है, है ना, और ये मुझे लगता है कि एक बड़ा जाल बनते जाता है जिसमें हर कोई कभी ना कभी तो फंस ही जाता है और उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी अनजान एजेंसी, अनजान व्यक्ति, यहाँ तक कि अपने खुद के दोस्त और रिश्तेदारों से भी एक बड़ा अमाउंट का लोन लेने से बचें।
0: तुमने बहुत अच्छी बात कही अनुषा। अगर हम एक और चीज का ध्यान रखें कि समय पर अपने बिलों का भुगतान कर दें ताकि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा बना रहेगा। ऐसा करने से आपको आपके ऊपर जो लेट बिल के पेनल्टीज हैं वो भी नहीं लगेंगी, साथ ही आपका ट्रैक अच्छा रहेगा कि आपने पहले से ही बिल का पेमेंट कर दिया है, और आपके जो भुगतान की जो ड्यू डेट्स होती हैं अगर वो भी आपके ध्यान में रहेंगी तो आप कभी भी इस जाल में नहीं फंसेंगे कि आप अपने पेमेंट को डिले करते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल सही। और तो और अब तो इंटरनेट के कारण हम सभी के पास एक अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और हम उन्हें काफी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अलग अलग एप्स, मार्केट स्टडीज हमें सही जगह निवेश करने के लिए सहायता कर सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और मुझे लगता है कि निवेश करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या कहीं और इन्वेस्ट करना है। निवेश करना यानी कि इंश्योरेंस और हेल्थ पॉलिसीज लेना भी हो सकता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये फाइनेंशियल एडवाइसेस जो है ये आपको काम आएंगी और आप अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखेंगे और अपने मनी की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज का युववाणी कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब जाते जाते याद आया कि हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में दो प्रश्न पूछे थे और अब समय आ गया है उन दोनों प्रश्नों के आपको उत्तर देने का। तो जो पहला प्रश्न था वो ये था कि स्यूज कैनाल किन दो जल भागों को आपस में जोड़ती है। तो इसका सही उत्तर है भूमध्य सागर और लाल सागर को ये कैनाल जोड़ती है।
1: और दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न था कि नागरिकों के लिए ईट राइट मिशन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटका।
0: तो हमें उम्मीद है कि आप सभी ने इन दोनों प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढ लिए होंगे और अगर नहीं भी ढूंढे तो कोई बात नहीं, आज आपको एक नया फन फैक्ट पता चल गया। तो अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए और सुनते रहिए युववाणी। इसी के साथ दीजिए मार्गशीर्ष
1: और अनुषा को इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे यो वाणी मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में हिना फिल्म के इस खूबसूरत नगमे के साथ। लक्ष्य लयालपुरी ने इसे लिखा है और संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420-2233 पर कॉल करें।
4: आइए श्रोताओं, सुनते हैं प्रेम रोग। इस फिल्म का गीत सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज में।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं नगीना फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
1: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
1: उन्होंने लिखा है, धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान विज्ञान साहित्य भूगोल इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
1: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
2: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियां तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
1: जी हाँ, ये तो है।
2: तो क्यों न आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
1: नेकी और पूछ विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
2: अजीत जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
1: वाह, क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
2: श्रोताओ, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है।
2: जी
1: श्रोताओ, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
2: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
1: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा।
2: जी,
1: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती, कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
2: जी अजीत जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
1: श्रोताओ, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
2: जी,
1: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
2: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
1: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी
2: जी।
1: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
2: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
1: श्रोताओ, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
2: जी।
1: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है, तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं।
2: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
1: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
2: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था, वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
1: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
2: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
1: श्रोताओ, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया, लेकिन हार नहीं मानी।
2: जी।
1: हेलन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया, लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
2: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
1: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
2: जी।
1: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
2: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
1: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओ, हमारा आज का

0: प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT Books PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी जल चक्र की कहानी।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और तालवाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
0: पानी रे पानी जल चक्र पर कविता।

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का, अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना।
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
2: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
0: अरे तू कहाँ से आ गई?
3: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
0: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
4: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सबका रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चहेते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
0: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी। इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है। अरे आ गए आ गए आ गए, देखो।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
2: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे किस पर?
2: किस पर?
0: पानी पर।
2: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
2: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
3: हाँ, ये बात तो है,
4: पानी की समस्या तो है,
5: हम तो परेशान हो गए हैं।
2: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
6: जल चक्र?
2: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
0: तो चलो शुरू करें।
2: चलो झुमकी।
0: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया। आगे जोड़ो झुमरू जी, और वो भी ताल में।
2: हाँ हाँ, जोड़ता हूँ मैं, ये लो, बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, पाप बन जल ऊपर आया।
0: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए। जब लग गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल।
2: रिम झिम रिम झिम वर्षा आई, चहुं ओर हरियाली छाई। झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
0: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
2: बताते हैं, सुनिए। पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
0: क्या बात है। सूरज भाप बादल वर्षा का, जल चक्र यू चलता जाता। सभी बोलेंगे जल चक्र यू चलता जाता।
2: तो बच्चों, कैसा लगा भाषा का ये खेल?
5: बहुत अच्छा।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
8: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
9: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
10: ये तुम्हारा हरा दिया, हरा दिया।
11: वैसे तनु, हाँ, बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
12: जी,
11: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
6: नाना जी मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
11: ये कैसी अजीब बात है।
6: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते, हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
11: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
6: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
11: अच्छा बेटा तरु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
6: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
11: अच्छा
6: हाँ, और क्या, तो सुनाइए ना। हाँ, जल्दी सुनाइए।
11: हाँ, बेटा
6: जल्दी सुनाइए।
11: अरे सोचने तो दो,
6: जल्दी
11: सोचिए किसकी कहानी सुनाऊं। देखो
6: अरे जीवन काका।
11: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई।
12: बाबूजी आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
11: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
12: जी
11: यहाँ लेट जाओ।
12: जी
11: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु
6: जी,
11: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
6: जी अभी लाई।
11: हाँ हाँ खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
12: जी
11: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है।
12: जी
11: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
12: जी जी जी जी।
11: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
6: जी जी नाना जी।
11: हाँ ला बेटा ला। जीवन
12: जी
11: जरा मुंह खोलो, लो इसे जीभ के नीचे रख लो।

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
2: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया, वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
2: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
1: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहां एक चिकित्सक थे डॉक्टर

0: एक्टोरियस
1: जी,
0: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
1: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
0: बेटे, एकदम अलग आकार था।
1: अच्छा।
0: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
1: जी,
0: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
1: अच्छा।
0: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
1: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
0: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था, जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
1: अच्छा।
0: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
1: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
0: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
1: जी,
0: जिसे बुखार होता
1: जी,
0: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
1: जी।
0: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
1: फिर
0: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
1: जी।
0: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
1: अच्छा।
0: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
1: लेकिन बुखार?
0: ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
1: जी।
0: तो बेटा, तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
1: जी,
0: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
1: जी।
0: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
1: अच्छा।
0: और बुखार का अनुमान लगा लेते। लेकिन एक बात।
1: क्या?
0: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
1: जी,
0: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
1: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती, रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
0: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
1: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
0: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
1: हाँ जी।
0: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
1: जी
0: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना
1: जी।
0: समझ गई ना
1: जी।
0: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था
1: जी,
0: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
1: अच्छा।
0: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
1: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
0: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
1: अच्छा।
0: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं
1: जी,
0: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
1: अच्छा।
0: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा
1: जी,
0: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
1: अरे वाह।
0: हाँ। पर बेटा, डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
1: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
0: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे, अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
1: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं
1: जी,
0: बोल कर बतला देता है।
1: नाना जी,
0: हा?
1: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
0: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
1: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
0: है ना
1: जी।
0: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना
2: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, सुगम संगीत में अब सुनते हैं वर्षा मिश्रा के गाए भजन। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस भक्ति रचना के साथ।

सुगम संगीत में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे वर्षा मिश्रा के गाए भजन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं विंध्यवासिनी देवी के गाए भोजपुरी लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस श्रावण के गीत के साथ। आवाज विंध्यवासिनी देवी की है।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोसी। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति गठित की है। ये समिति दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच करेगी। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेन्द्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। अगली सुनवाई 15 सितम्बर को होगी। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवक प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीपीएन के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद, जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया, जो दक्षिण पंथी बांग्लादेश जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट प्राप्त हुए। एम्स्टरवीन में महिला हॉकी विश्व कप में इस समय भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों ही टीमें गोल रहित बराबरी पर हैं। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दें हमारे आज की सभा में प्रसारित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की, और साथ ही साथ कार्यक्रम संबंधी एक महत्वपूर्ण सूचना भी आप सुने। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारत इंदौर FM 101.6 मेगाहर्ट्ज आपके लिए लेकर आ रहा है इस शुक्रवार यानी दिनांक 21 अगस्त 2026 सुबह 11:32 से 12 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। ये कार्यक्रम शुक्रवार दिनांक 21 अगस्त यानी कल सुबह 11:32 से 12 बजे तक FM 101.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती चैनल पर प्रसारित हो रहा है। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से सीधे प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731 यानी 0731। नंबर आपको पता ही है 2710223 और 2710224। शुक्रवार यानी कल 21 अगस्त 2026 को सुबह 11:32 से 12 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम विविध भारती चैनल पर आपके लिए प्रसारित होगा। साइबर क्राइम रोकने हेतु विशेष सावधानियां कैसे आप बरत सकते हैं इस पर जानकारी देंगे सुनील मेहता DCP इंदौर कमिश्नरेट और श्री नरेंद्र सिंह रघुवंशी स्टेट साइबर सेल इंदौर। आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, हमें आपकी फ़ोन कॉल का इंतजार रहेगा। समय एक बार फिर याद रखिएगा 11:32 से 12 बजे तक, और चैनल है विविध भारती FM 101.6 मेगाहर्ट्ज, और साथ ही साथ ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें हमारी आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। शाम 7:20 से आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 7:30 से प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। पुराने सदाबहार नगमों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आपकी सेवा में हम लेकर हाजिर होंगे रात्रि 8:15 से, और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे पुराने सदाबहार गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। श्रोताओं की फरमाइशों का ध्यान रखा जाएगा कार्यक्रम मनभावन में, आपके फरमाइशी पत्रों पर आधारित गीत हम आप तक लेकर पहुंचेंगे। समय रहेगा रात्रि 9:30 से। और शास्त्रीय संगीत में रात्रि 10:30 से आज हम आपको सुनवाएंगे ललित मोदी का सरोद वादन, राग होगा बागेश्री। श्रोताओं हमारी कल यानी 21 अगस्त 2026 शुक्रवार की सभा की शुरुआत होगी भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना के साथ। समय रहेगा प्रातः 6:05 और चिंतन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 से, और खेती की बातें प्रसारित होगा 6:35 पर। प्रतिदिन की तरह श्रीरामचरितमानस गान का प्रसारण होगा 6:40 पर, और इंदौर परिक्रमा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 7:20 से। प्रातः 8:30 पर सुनिएगा रूपक मालवा की गंगा क्षिप्रा, लेखक डॉक्टर भगवतीलाल राजपुरोहित, प्रस्तुतकर्ता बीना पी शर्मा और संजीव मालवीय। लोक संगीत में चंद्र प्रकाश सोनवे और साथियों की गाय लोकगीत आपको सुनवाएंगे 9:00 से, और 9:15 पर सुगम संगीत में आप सुनेंगे उमेश भट्ट का गायन। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज शाम और कल की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ब्रिक्स के जरिए पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में युवाओं से कौशल सीखकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने पीथमपुर में 850 करोड़ रुपए की 2 औद्योगिक इकाइयों का किया शुभारंभ और प्रदेश के कॉलेजों में खाली सीटों पर 21 से 31 अगस्त तक विद्यार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता में भारत जन केंद्रित जलवायु कार्रवाई के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्सर्जन तीव्रता को कम करने और गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने में भारत की प्रगति एक सतत और हरित दृष्टिकोण को मजबूत करती है। अपने लेख में पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत ने मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही वनरोपण, वन अग्नि प्रबंधन और आपदा प्रतिरोध क्षमता के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित अनुकूलन को प्राथमिकता दी है। श्री यादव ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स एक ऐसे भविष्य के लिए काम कर रहा है जो सामूहिक विकास में पृथ्वी को सर्वोपरि रखता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में आयोजित आरंभ परिचय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षुओं से संवाद करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश को कृषि के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में भी आगे ले जाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं से कौशल हासिल कर रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। समारोह में कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री डॉ. गौतम टिटवाल और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 11,18,937 आवासों की स्वीकृति सौंपी गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत देने का संकल्प पूरा किया जा रहा है। श्री चौहान ने बताया कि वर्ष 2016 से अब तक बिहार में 50 लाख से अधिक पक्के आवास दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लागू होगी जिससे किसानों को फसल नुकसान की भरपाई मिल सकेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज धार जिले के पीथमपुर में 850 करोड़ रुपए के निवेश से प्रस्तावित स्थापित दो अत्याधुनिक औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। प्रताप ग्रुप की इन इकाइयों में ऑप्टिकल फाइबर और लिथियम बैटरी का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक इकाइयों से क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य निवेश के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इन इकाइयों में युवाओं को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण भी मिलेगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दोनों इकाइयां आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसके तहत झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। न्यायालय ने उन उम्मीदवारों को राहत दी है जिन्होंने परीक्षाएं पास कर ली थी और अपनी नियुक्ति को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। जस्टिस दीपक रोशन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सफल उम्मीदवारों की याचिकाओं के बाद ये अंतरिम रोक लगाई। उम्मीदवारों का तर्क था कि परीक्षाओं को पूरी तरह रद्द करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की गई है। राज्य वित्त आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का आज भोपाल में लोकार्पण किया गया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की उपस्थिति में आयोग के अध्यक्ष शैभान सिंह पवैया ने वल्लभ भवन में वेबसाइट का लोकार्पण किया। प्रदेश की उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया है। प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की खाली सीटों पर 21 से 31 अगस्त तक अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी। इसमें विद्यार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। वहीं एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए द्वितीय अतिरिक्त चरण में 20 से 24 अगस्त तक पंजीयन और आवेदन किए जा सकेंगे। मेरिट सूची 27 अगस्त को जारी होगी और 29 अगस्त को सीट आवंटन किया जाएगा। आवंटित विद्यार्थियों को 29 अगस्त से 3 सितंबर तक निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम फेज 7 के लिए राज्यों की जोड़ी तय की है। इसके तहत मध्यप्रदेश को कर्नाटक के साथ जोड़ा गया है जिसमें मध्यप्रदेश के लिए एसपीए भोपाल और कर्नाटक के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटक को जिम्मेदारी दी गई है। युवा संगम का उद्देश्य युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपरा, विकास, तकनीक और लोगों से जुड़ने का प्रत्यक्ष अनुभव देना है। इसके तहत 5 से 7 दिन के शैक्षणिक और सांस्कृतिक भ्रमण आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। 20 से 24 अगस्त के बीच बारिश का असर मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। भारी बारिश के कारण सतना के चित्रकूट में गुप्त गोदावरी की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों हनुमंतिया टापू, सैलानी टापू और ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर संचालित नावों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने विशेष समिति का गठन किया है। कटनी में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर जिले में समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का आज शुभारंभ किया गया। वहीं छिंदवाड़ा में संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर आज समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का जिला स्तरीय आयोजन किया गया। नीमच कलेक्टर और जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में सीपीआर और फर्स्ट एड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। झाबुआ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं को पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कराने के लिए सशक्त वाहिनी निःशुल्क कोचिंग शुरू की जा रही है। बैतूल में आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण और पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जिले के चयनित क्लस्टरों और नगरीय निकायों में प्रत्येक शुक्रवार विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो पिछले 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम भी अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: मीडियम वेव 462.9 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

0: नमस्कार सभी दादा भैया भाभी काका काकी गांव का हमारा भुआ भुपा जी और सभी खेती गृहस्थी सुनने वाला हमारा सभी श्रोता उनके राहुल तिवारी की प्रेम भरी राम राम। श्रोताओं आज हम हाजिर हैं लेके आपको पसंदीदा कार्यक्रम खेती गृहस्थी और आज का कार्यक्रम में बहुत सारी बात आपसे कराऊंगा क्योंकि आज बहुत दिन बाद आप सभी से जुड़ने को जो मौको है यो हमारे मिली है यहाँ पर कार्यक्रम का माध्यम से। लेकिन चूंकि कार्यक्रम में हम बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी संदेश का रूप में भी सुनता रहा है तो सबसे पहला आपके यो संदेश हम सुनवेदा ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे भी मिस ना हो आपसे भी दूर नहीं रहे और उसके बाद हम कार्यक्रम में आगे की बातचीत जारी रखांगा। तो आप सभी अपना महत्वपूर्ण काम छोड़ी छोड़ी के ज़रा रेडियो का पास में आई जाओ और ध्यान से सुना आज को यो कार्यक्रम जिसको नाम है खेती गृहस्थी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
4: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
3: क्या कैसे?
4: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
3: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
4: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
0: तो श्रोता हूँ जहाँ तक हमारी उम्मीद है संदेश से तो आपके महत्वपूर्ण जानकारी मिली ही गई होगा, लेकिन चूंकि बात चली रही है खेती गृहस्थी की गाँव की चौपाल की और मौसम की और आप सबके मालूम है कि सावन को महीनों चली रही है और चाहे उन्नति कितनी भी हम कर लें तकनीक कितनी भी आगे बढ़ी जाए बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वह भले ही शहर से लेकर गाँव तक हर जगह उपलब्ध हो लेकिन ग्रामीण जीवन शैली और ख़ासकर बारिश का मौसम में जो गाँव की दिनचर्या है उसको जो आनंद है उसकी बात ही अलग है। अगर हम अपना बचपन की उन याद की एक बार फिर से ताज़ा करा और एक बार फिर से अपना बचपन में चला तो आप देखो कि पूरा गांव में बारिश का मौसम में जो माहौल होता था वो किस तरह से होता था। बारिश आने से पहले हमारा जो बड़ा बुजुर्ग था हमारा दादा चाचा था अभी सब लोग अपना घर की खपरेल पे जो है कहीं ना कहीं कवेलू बदलने को काम करता था, बरसाती लगाने को काम करता था। हम सब लोग हमारी जो माताएं थी वी कंडा वगैरह जो है वे सब घर का अंदर रखने को काम करती थी और कहीं ना कहीं बारिश का स्वागत की तैयारी जो है एक तरह से एक आम गाँव को जो नागरिक है वो उना समय पे करतो थो। खेत की तैयारी करनो, खेत जोतने के लिए जो संसाधन लगने वाला है चाहे वी हल हो चाहे वी डोरा हो या फिर और भी जो व्यवस्था करनी है बीज जो है उनके छाटने को काम हो ये सब हम बारिश आने का पहले ही कर लेता था और फिर सावन का महीना में जब बारिश गिरती थी तो हम बस फसल बोने के बाद में यो इंतज़ार करता था कि हाँ अब जो है आगे बारिश होगी और हमारी फसल धीरे धीरे जो है वह उन्नति की राह पे आगे बढ़ेगी। अच्छा सावन का महीना में व्रत तीज त्यौहार तो जो है गाँव में बहुत धूमधाम से मनाया जाए, झूला को अपनों एक अलग महत्व है और साथ ही साथ जब सावन को महीनों है तो वो सिर्फ एक उम्मीद को एक आस को महीनों नहीं है बल्कि वो हर बूंद का साथ किसान का जीवन में खुशी भरने को जो है महीनों है। तो सावन की बात हम आगे भी कर लांगा लेकिन फिलहाल चूंकि कार्यक्रम खेती गृहस्थी को है और आप सब लोकगीत सुनने के लिए भी बड़ा आतुर होगा तो आइए मैं आपके बद्रीलाल मालवीय को गायो यो मालवी लोकगीत सुनाऊं जो सावन पर आधारित है और निश्चित रूप से आपके सावन की उन्हीं याद में ले जाने को काम यो गीत करेगा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: तो श्रोता भाई, आज हम सभी ने खेती गृहस्थी कार्यक्रम में सावन की बात करी और बद्रीलाल मालवी जी की आवाज़ में बहुत खूबसूरत सो गीत जो है वो भी सुन लियो। और ये तो कार्यक्रम में समय की थोड़ी सी कमी है, नहीं तो बातचीत तो इतनी है करने के लिए आप सबका साथ है कि बातचीत ख़त्म नहीं होगी लेकिन कार्यक्रम को टाइम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज को दिन बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आज हम सब आपके लिए प्रस्तुत करांगा एक कार्यक्रम जिसको नाम है किसान वाणी, और यो कार्यक्रम भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम आपके लिए चला सकते हैं आकाशवाणी पर, जहाँ से आप सुनोगे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम में हमारे सभी कृषक भाई बहनों और श्रोताओं को पुष्पा बहन की राम राम। घड़ी में बज रहे 7:30 और आप सभी सुन रहे हो किसान वाणी। सो भैया बहन हरो, दिन भर की मेहनत के बाद तनक आराम कर लियो। बताओ भैया बहन हरो, खेतों में काम काज कैसे चल रहे हैं? सभी काम ठीक ठाक आज निपट गए हुई है? सो आज संजय विजिया बैठे बैठे जरूर सुन लियो किसान वाणी में बहुत ही जरूरी जरूरी बातें। भैया हरो, आज है 20 अगस्त और हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाऊत है। सो घबरइयो ने, आज हम मच्छर को भगावे के आसान तरीका सोई बताए। देखो भैया बहन हरो, बसकारे में और बसकारे के बाद बहुत ही मच्छर बढ़ जाते हैं। बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारी मच्छर के काट भी सही फैलत है कि नहीं? यही से तो हम सब विश्व मच्छर दिवस मनाऊत है और हम सबई खो याद दिलाऊत है कि जी छोटे छोटे मच्छर बड़े बड़े रोग पैदा कर दिए थे। सो आज को देना हम सबई के लाने बहुत ही महत्वपूर्ण रहते है ताकि हम सब जागरूक रहें, सजग रहें और सतर्कता बरतें और मच्छरों को पनपने दे में। और विश्व मच्छर दिवस को संदेश भी जोई है हम सबई के लाने कि रोकथाम सबसे बड़ो इलाज है। सुनो भैया बहन, भौजी काकी हरो, मच्छर भगावे के देसी जुगाड़ हम बताए देते हैं, खर्चा भी न लगे। पहलो उपाय है पानी जमाने होन दियो अपने आसपास। भैया बहन हरो, गर्मी के दिना ने कर गए सो कूलरों की साफ सफाई करके धर लियो और इतने उतने टायर फेंक दे तो उनमें पानी भर जाते है। इस समय गमलों में खूब पानी भर रहा है बसकारो जो लगो है। सो ध्यान रखियो कूलरों में, गमलों में और टायरों में पानी जमाने हो पावे, कैसे मच्छर अंडा इतना ही देते है। और दूसरा उपाय है भैया हरो, घर के आसपास की सफाई नोनी रखियो। चारों तरफ पेड़ पौधों की झाड़ियाँ जो हो जाते हैं सो कटाई छटाई बिल्कुल रोज करते ही रहियो और कचरा इतने उतने फेंकियो और घर आंगन नालियों की साफ सफाई रखियो। काहे की कीचड़ में गंदगी में मच्छर सबसे ज्यादा होते हैं और रात में सो समय मच्छरदानी लगा के सो जाइयो। खिड़की दरवाजे पे जाली जरूर लगवा लियो और संजा विरिया सूखी नीम की पत्तियों को धुआं जला ले हो सोई मच्छर भाग जे है। और हमारे सभी भैया बहने बेटा बिटिया हरे संजा विरिया से ही फुलवाए की कमीज और पैजामा पेंट पहन ली में, इसे फिर मच्छर काटे न पे है। और भैया बहन हरो, सबसे महत्वपूर्ण उपाय है यदि बुखार आवे, सिर दर्द होवे, उल्टी बुखार आवे तो तुरंत ही नजदीकी अस्पताल जाके खून की जाँच करवाइयो और समय पे इलाज करवा लियो ताकि स्वस्थ रहो। और हम तो विश्व मच्छर दिवस पे जय के वो चाहते हैं कि स्वस्थ निरोगी तन रहे, उत्तम रहे विचार, उत्तम स्वस्थ चरित्र है मानव तन को सार। भैया बहन हरो, दिन भर खेत खलियानों में मेहनत करत हो और खेती किसानी के संगे संगे पशुपालन भी करत हो और संजय विरी आके पशुओं की देखभाल, आहार व्यवस्था को सोई ध्यान रखत हो। सो हम सब भी जो ही चाहते हैं कि हमारे किसान भैया बहने अपने पशुओं को खूब ध्यान रखें ताकि स्वस्थ रहें। मनो ई के लाने जरूरी है विशेषज्ञ द्वारा जानकारी मिलवो। सो बात तो 100% साची है भैया हरो, आज विशेषज्ञ बताएं कि पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य के लाने चारे को प्रबंधन कैसे करने हैं। सो सुनत हैं विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग से ज्ञानवर्धक जानकारी और नौने नौने प्रश्न पूछ रहे हैं महेश भैया।
3: आज हम ग्राम सभा में बातचीत करेंगे पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य हेतु चारा प्रबंधन पर। हमारे साथ में है आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग जो कि अधिष्ठाता है कृषि महाविद्यालय गंज वासुदा विदिशा मध्य प्रदेश में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताएं कि पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य हेतु कौन कौन सी चारा फसलों का प्रबंधन हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए?
4: पशुओं के स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए हमारे किसान भाइयों को चारे की फसलों में, जैसे चारे की फसलें तीन मौसम में लगाई जाती हैं, खरीफ में, रबी में और जायद में, मतलब गर्मी में। तो खरीफ में हमारे किसान भाइयों को लोबिया है, नेपियर ग्रास है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है और ग्वार है। इसके साथ साथ रबी में हमारे किसान भाइयों को हरा चारा लेना है पशुओं के लिए तो बरसी में रिजका है, जई है, इन फसलों को लेना चाहिए। इसके साथ साथ ही क्या होता है, गर्मियों में सबसे अधिक पशुओं को हरे चारे की आवश्यकता होती है उनका स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए, उनसे अच्छा दुग्ध उत्पादन लेने के लिए। इसलिए हमारे किसान भाइयों को गर्मियों के दिनों में भी हरे चारे की व्यवस्था करना चाहिए। किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छा है कि वो ज्वार की जो हमारी चरी वाली किस्में हैं उनको लगाए, मक्का लगाए, इनसे हरा चारा प्राप्त करें और किसान भाई उनको खिलाए जिससे कि अच्छा दुग्ध उत्पादन मिले और उनका उत्तम स्वास्थ्य बना रहे।
3: डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन बात आती है ऐसी कौन सी चारा फसल हमारे किसान भाई उगाएं जो वर्ष भर जो है उन्हें पशुओं के लिए न्यूनतम चारा उससे प्राप्त होता रहे।
4: ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमको किसान भाइयों को एक ऐसी फसल लगाना चाहिए कि जिससे उनको वर्ष भर चारा मिलता रहे, क्योंकि पशुओं को तो उन्हें वर्ष दर वर्ष रखना ही है अपने पास। तो इसमें मेरा किसान भाइयों से कहना यह है कि एक घास है जिसे हम नेपियर घास या हाथी घास, ये बाजरा जैसी दिखने में लगती है, इस घास का किसान भाइयों को उत्पादन लेना चाहिए, इसकी खेती करना चाहिए। और इस घास में कुछ बाजरे जैसे आदर्श गुण होते हैं, जैसे कि चारा कैसा होता है इसका, रसीला रहता है, घनी पत्तियां रहती हैं, इसकी बढ़वार बहुत शीघ्र होती है और इसमें प्रोटीन अच्छा रहता है और शर्करा की मात्रा रहती है। इतने सारे गुण होने के कारण ये चारा फसल उत्तम गुण है, इसलिए अच्छी होती है और इससे हम किसान भाई वर्ष भर हरा चारा ले सकते हैं। वर्ष भर के अलावा वो एक वर्ष नहीं, उससे अगर उसका अच्छा प्रबंधन करेंगे, उसमें अच्छी कृषिगत क्रियाएं करेंगे तो 3 से 4 वर्ष तक वो लगातार निरंतर उससे हरा घास लेते रहेंगे।
3: ये तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई है, लेकिन जो नेपियर घास होती है इसका स्वभाव कैसा होता है डॉक्टर साहब, किस तरह की जलवायु में इसको हम लगा सकते हैं या इसके लिए किस तरह की खेती की आवश्यकता होगी,
4: कैसी भूमि हमको चाहिए? किसी भी फसल के लगाने के लिए जहाँ पर लगाई जा रही है वो जलवायु का उत्तम होना, उसके अनुकूल होना बहुत जरूरी है। तापमान जहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस रहता हो, वर्षा अच्छी हो, वायुमंडल में आर्द्रता अधिक हो, इसकी खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। इसकी बढ़वार के लिए मार्च से सितंबर की अवधि बहुत अनुकूल मानी गई है। इसकी खेती के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर, यदि इसको 500 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्र में भी आसानी से किया जा सकता है, यदि वहाँ पर उनके लिए पर्याप्त सिंचाई का साधन उपलब्ध है। लेकिन सर्दी जब अधिक पड़ती है, जैसे मान लीजिए दिसंबर जनवरी में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है जिन क्षेत्रों में इसका उत्पादन लिया जा रहा है, तो वहाँ पर इसकी वृद्धि सर्दी अधिक होने के कारण कम हो जाती है, लेकिन इसको नष्ट नहीं होती है। अब इसका क्या है, इसके लिए कैसी भूमि की आवश्यकता होगी? इसके लिए या अधिकतर चारे वाली फसलों के लिए हमको ऐसी भूमि का चयन करना है जो कैसी हो, उत्तम जल निकास वाली होना चाहिए, जब पानी का जल निकास अच्छा हो। यदि बलुई दोमट भूमि है, दोमट मतलब जिसमें रेत की मात्रा भी अच्छी है, उससे क्या होता है, उसमें जल का निकास अच्छा होता है। ऐसी भूमि

0: समतल कर लेना चाहिए पाटा चला करके, पूर्व फसलों के अवशेष नहीं रहना चाहिए, मतलब खेत हमारा बिल्कुल साफ सुथरा और दो तीन बार उसकी जुताई हो और उसको मिट्टी को भुरी कर ले, मतलब ढेले नहीं रहे और खेत समतल हो जाना चाहिए। ऐसा खेत हमारे लिए या ऐसी भूमि हमारे लिए नेपियर घास को उत्पादन के लिए बहुत अच्छी तैयारी मानी जाती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, नेपियर घास की जो उन्नत किस्में हैं उनके बारे में आप थोड़ा बताएं। कई बार जो है बीज होते हैं तो बीजों की बुआई करते हैं, तो नेपियर घास किस तरह से और उपलब्ध कैसे होगी खासतौर से बीज के लिए?
0: नेपियर घास की किस्में बहुत अच्छी हैं अपने यहाँ। ऐसी किस्मों को लगाना है जिनमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी और मिठास भी हो। हमारे पशु बहुत स्वादिष्ट तरीके से खाएं। पूसा जायंट है, पूसा जायंट एक किस्म है, 25% प्रोटीन है और 12% शर्करा है। दूसरी वेराइटी है नेपियर हाइब्रिड बाजरा, NB21 वेराइटी है, इसे भी हम लगा सकते हैं। APBN एक वेराइटी है, इसका भी है। उसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से निकली हुई पूसा नेपियर 1 है और पूसा नेपियर 2 है, जो सर्दियों में भी अच्छा उत्पादन देती है। यदि तापक्रम नीचे जाता है उसके बाद भी पूसा नेपियर 1 और पूसा नेपियर 2, इनसे हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको बोने के लिए सबसे वर्षाधीन जहाँ क्षेत्र है, जहाँ वर्षा होती है, मानसून पर है, इसकी बुवाई हमको मानसून के बाद जून जुलाई में कर देना चाहिए। यदि सिंचित क्षेत्र है कि जहाँ वर्ष भर हमको पानी देने की व्यवस्था रहेगी तो आप फरवरी में कर सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बुवाई का जो समय माना गया है वो फरवरी मार्च माना गया है कि फरवरी मार्च में यदि हम इसकी बुवाई करते हैं तो सबसे उत्तम मानी जाती है। अब ये तो बुवाई का समय है, अब इसको बोने के लिए दो विधियां हैं
1: जी।
0: इनके बोने के लिए तना कटिंग या जड़ कटिंग या प्रकंद, इनका उपयोग किया जाता है। इसके बीजों को नहीं बोया जाता, जैसे हम गन्ना के लगाते हैं ना, गन्ना की कटिंग लगाते हैं
1: जी,
0: ऐसे ही इसके टुकड़े लगाए जाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो इसके टुकड़े लगाए जाते हैं और इनको 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई पर हम बो देते हैं। इसको बोने के दो विधियां हैं, एक तो कूड़ों में बुआई करना चाहिए किसान भाइयों को
1: जी।
0: और दूसरी बुआई करना चाहिए इसके टुकड़ों को 45 डिग्री के कोण पर झुका के लगाना चाहिए। तो कूड़ों में बुआई करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा खेत लें जिसमें पर्याप्त नमी हो, क्योंकि हम जो भी कोई बुआई करते हैं किसी फसल की तो नमी होना उसमें पर्याप्त आवश्यक है। उस समय हम क्या करते हैं, 60 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर कूड़ बना देते हैं और दूसरा क्रॉस में कूड़ बनाते हैं हम, इसका अंकुरण हो जाता है। अंकुरण के बाद हम फिर इसमें सिंचाई करते रहते हैं। पर भूमि आपकी कैसी है, मान ली भूमि आपकी थोड़ा हल्की है तो हमको जल्दी सिंचाई करना पड़ेगी, भूमि यदि हमारी भारी है तो हम 20 दिन पर सिंचाई करेंगे, तो पहली विधि दीजिए। दूसरी विधि क्या है, टुकड़ों को 45 डिग्री के कोण पर झुका के लगाना। इसमें क्या करते हैं, खेत में कूड़ बना देते हैं और दोनों कूड़ के साथ क्रॉस आते हैं
1: जी।
0: उस पर हम कटिंग को खड़ी लगाते हैं, तो जो कटिंग लगा रहे हैं उसका एक बड दो कली कम से कम हर कटिंग में होना चाहिए। एक कटिंग हमारी जमीन के अंदर जाए और दूसरी बड ऊपर रहे और उसको 45 डिग्री के कोण पर झुका के लगाया जाता है। लगाने के बाद उनको सब कटिंग को हम दबा देते हैं, दबाने के बाद फिर उनमें हम सिंचाई कर देते हैं और हर बार 15 से 20 दिन के अंतर हमें इस प्रकार से सिंचाई करते रहना चाहिए। ये दो विधियां हैं।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब आपने ये दोनों विधियां बताई, इनको बुआई कैसे करें ये भी आपने बता दिया, इसमें उर्वरक वगैरह की भी आवश्यकता रहती है क्या?
0: इनकी बुआई के पूर्व हमको 40 से 50 किलो नत्रजन डाल देना चाहिए पहले खेत में प्रति हेक्टेयर, 60 से 80 किलो इसको डाल देना चाहिए और 20 से 30 किलो पोटाश हमको खेत में डाल के फिर बुआई करना चाहिए। बुआई के बाद पहली कटाई हम जो करते हैं वो 70 से 80 दिन में करते हैं, तो हर कटाई के बाद हमको फिर 40 से 50 किलोग्राम नत्रजन हर कटाई के बाद डालना है। जैसे मान लो अपन 6-7 कटाई एक वर्ष में कर रहे हैं तो हर कटाई के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नत्रजन का उपयोग करना पड़ेगा जिससे हमारी बढ़वार अच्छी हो और अच्छा चारा हमको मिल जाए।
1: तो डॉक्टर साहब काफी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है। अब आप ये बताएं कि नेपियर घास को अगर लगाया है तो उसकी कितने दिन में कटाई हो सकती है, मतलब कितने दिन में वो जो है पशुओं के चारा का उपयोग हम उसको कर सकते हैं?
0: नेपियर घास की प्रथम कटाई जैसे मैंने कहा 70 से 80 दिन में करना चाहिए। तो आपने अच्छी जो अपन बता रहे हैं इस तरीके से यदि आपने प्रबंधन किया है तो 70 दिन में आपकी कटाई के लिए वो हो जाती है। तो पहली कटाई करते हैं, हर कटाई में हमारे किसान भाई को ये ध्यान रखना है कि कम से कम कटाई 2 इंची ऊपर से करना है। इससे करने से क्या होगा, दूसरी बार जब उसकी बढ़वार बहुत तेजी से हो, अगर हम जमीन के आधार से काट देंगे तो बढ़वार की वृद्धि नहीं होगी। दूसरी कटाई के बाद हर कटाई हमको 35 से 40 दिन करना है। हर कटाई के बाद हमको एक बार 40 किलोग्राम नत्रजन अवश्य देना है, क्योंकि नत्रजन एक ऐसी खाद है इसको देने से बढ़वार बहुत अच्छी होती है। और किसान भाई को एक बात और ध्यान रखना है, केवल रासायनिक खाद नहीं, खेत की तैयारी के समय उसको 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत में अवश्य डालना है, जिससे हमारा और अच्छा उत्पादन हमको मिले। 3 से 4

0: वर्ष तक इसकी कटाई करते रहेंगे और प्रतिवर्ष कम से कम 6 से 8 कटाइयां हम कर सकते हैं और एक साल की कटाई में इससे 150 से 200 टन यानी 1500 से 2000 क्विंटल तक हम हरा चारा इससे प्राप्त करेंगे।
1: तो किसान भाइयों, इस तरह से यदि आप नेपियर घास का उत्पादन करते हैं तो ये पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी है, बहुत आसान है लगाना, और एक बार आप लगाते हैं तो लगभग 4 साल तक इसकी आप कटाई आसानी से करके अपने पशुओं को जो है खिला सकते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग साहब, आप यहाँ पर आए हमारे स्टूडियोज में, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य हेतु चारा प्रबंधन पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सभी किसान भाइयों को राम राम।
2: सो बहुत ही बढ़िया जानकारी हती पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य के लाने चारा प्रबंधन पे छेची सलाह दे दी विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग जी ने। सो किसान भैया हरो उम्दा प्रश्न पूछ रहे हते महेश भैया। सो आज हम सब ने सीख ले ली कि हरो चारो चोकर चुनी देव पशुओं को शान, दूध दही घी से रहे हमारे सभी सम्पन्न किसान। भैया बहन हरो बातें हो गईं, चर्चा कर लई, जानकारी सुन लई, कहते हैं खेतों की मेहनत के बाद मल्हार गीत की एक तान साहुन की याद दिलाऊ थे और तन मन की थकान उतर जाते है। सो देखो बदरा भी घिरे आए हैं। सो हम सबई को मन कर रहा है लोक गीत गावे को और सुनवे को। भोरा करत है गुंजार, सखियां गा रही गीत मल्हार। सो सुनत है मंजू मिश्रा के सुरीले स्वर में प्यारो सो मल्हार गीत।

0: भैया बहनहरो, मन एकदम खुश होगा मल्हार गीत सुन के। लोक गीतों की धुन और बेटा बिटियाहरों की किलकारी तन मन को खुश कर दी थे। और हम सबई तो जो ही चाहते हैं कि जा किलकारी हर घर में गूंजत रहे। सो ई के लाने उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखवो भैया बहनहरो, बहुत ही जरूरी है। सो भैया भौजी हरो, हमारी बात ध्यान से सुन लियो। आज हम शिशु टीकाकरण की बातें कर रहे हैं। जे टीका अपने लला लली को 10 से 12 खतरनाक बीमारियों से बचाओ थे। सो भैया बहनहरो, टीका को लेकर 3 बातों की गांठ बांध लियो। पहली है कि जन्म के बाद 6 हफ्ता, 10 हफ्ता और 14 हफ्ता और 9 महीना में आंगनबाड़ी दीदी आपको कार्ड बना दे है, ऊपर तारीख लिख दे है। सो फिर उ तारीख को भूलियो ने, समय पर टीका लगवात रहियो। और दूसरी बात जा है कि भैया बहनहरो, टीका लगवावे के बाद हल्को बुखार सुई आ जाते है। सो डरियो ने, घबरियो ने, ई निशानी से पता चल जाते है कि टीका अच्छे से काम कर रहा है। और सबसे जरूरी तीसरी बात जा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी में पोलियो, खसरा, टिटनस, निमोनिया, टीबी जैसी बीमारियों के टीका बिल्कुल निःशुल्क लगाते हैं। और फिर हमारे बेटा बेटिया रहे हमेशा सदा स्वस्थ रहे, निरोग रहे। भैया बहने, आलस तो बिल्कुल न करियो। याद रखियो, कल ही जाके अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में और आंगनबाड़ी दीदी या ENM से मिलकर टीकाकरण कार्ड बनवा लियो। सुनो भैया बहनों, यदि एक ही टीका छूट गयो तो कहते हैं पूरी सुरक्षा कवच कमजोर हो जाते। सो टीकाकरण करियो और बेटा बेटिया को स्वस्थ बनाए रहियो। किसान भैया बहनों, इस समय सोयाबीन की फसल में घास फूस बहुत ही उग जाते है। सो जंगली घास को नियंत्रण करवो बहुत ही जरूरी है, तभी तो सोयाबीन उत्पादन न हुई है। सो सुनो जानकारी, सोयाबीन में समेकित खरपतवार प्रबंधन विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनोज कुमार तरवरिया।
1: आज हम बात करेंगे सोयाबीन की समेकित खरपतवार प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि सोयाबीन की फसल में खरपतवार एक प्रमुख समस्या होती है। कई किसानों ने सोयाबीन की फसल की बुवाई कर ली हुई, कुछ ने लेट की होगी। किसान भाइयों, समेकित खरपतवारों तो वो वैज्ञानिक विधि होती है जिसमें हम खरपतवारों को नष्ट करने के लिए एक विधि पर निर्भर न रहकर हमें कई विधियों का उपयोग करना है, जिसमें हम निवारण, सांस्कृतिक, यांत्रिक, जैविक, रासायनिक और कृषि क्रियाओं के साथ सही समय पर उपयोग करना है। इसका मुख्य उद्देश्य किसान भाइयों यह होता है कि हमें किसी एक विधि पर निर्भर नहीं रहना है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही उस खरपतवार का प्रबंधन करना है। किसान भाइयों, खरपतवार वो अनचाहे बीट्स होते हैं जिन्हें किसान अपने खेत में बोता नहीं है, स्वयं ही उग जाते हैं। इनके कंट्रोल की काफी सारी विधियां हैं जिसमें हम निवारण हैं, उन्मूलन हैं, रासायनिक विधियां हैं। किसान भाइयों, निवारण विधि वही होती है जिसमें हम समय रहते हुए खेत का जो भी खरपतवार उग रहे हैं उनका कंट्रोल करना है। उन्मूलन, उनको जड़ से उखाड़ लेना है किसान भाइयों। और रासायनिक विधि के द्वारा हम जो सोयाबीन का खेत है उसको समय रहते हुए उनका दवा का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, जैसे कि खेत में जब बुवाई हो जाती है सोयाबीन की फसल, उस समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें इसमें प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस जो रासायनिक दवा होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। प्री इमरजेंस दवा का प्रयोग बुवाई के 2 से 3 दिन बाद कर देना चाहिए, जबकि पोस्ट इमरजेंस दवा का प्रयोग हमें बुवाई के 25 से 30 दिन बाद कर देना चाहिए। इसमें कुछ दवाएं जैसे कि पेंडी मेथिलीन प्री इमरजेंस में आती, पोस्ट इमरजेंस में एमेजा थाइपा 70% WP, ये सारी दवाएं आती है। किसान भाइयों, हमें जब दवा का स्प्रे करें उस समय हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि दवा डालते समय हमें तेज गति से नहीं चलना है बल्कि हमें धीमी गति से चलना है। तेज हवा और वर्षा की संभावना हो या वर्षा के दौरान हमें छिड़काव ना करें। छिड़काव करते समय खेत में नमी होना चाहिए, दवा का घोल एक समान बनाना चाहिए तथा उनको प्रयोग करते

0: इस समय खेत में हमें कौन कौन सी सुविधाएं रखना है, उनमें दस्ताने, मास्क, चश्मा आदि का प्रयोग करना चाहिए ताकि रसायन का शरीर पर प्रभाव ना पड़े। दवा की अनुशंसित मात्रा का हमें अधिक या कम मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो हम दवा मार्केट से लेके आ रहे हैं उनको पैकेट में जो दवा है उनको बच्चों के आसपास या घर में रखना चाहिए या उनको नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि रासायनिक विधि के द्वारा किसान जो सोयाबीन की फसल में जो भी हमारे खरपतवार उगते हैं उनको आसानी से कंट्रोल कर लेता है, उनमें जो क्रॉप बी कंपटीशन होता है वो 15 से 45 दिन के बीच में होता है। इस समय रहते हुए अगर हम खरपतवार का कंट्रोल कर लेते हैं तो उपज में 25 से 60% तक की उपज में वृद्धि होती है, साथ ही हमारे किसान भाइयों को सही मुनाफा मिल जाता है जिससे उन्हें उचित मात्रा में उपयोग मिल सके।
1: सो भैया रो याद रखियो, समय पे निंदाई गुड़ाई करियो और सही दवाई डालत रहियो। सो देखो बहुत ही उम्दा जानकारी मिल गई। इस समय सोयाबीन में समेकित खरपतवार प्रबंधन पे विशेषज्ञ थे डॉक्टर मनोज कुमार तरवरिया। किसान भैया बहन हरो, आज अपन इंदौर मंडी के भाव के बारे में सोई जान लेवे कि इस समय अनाजों के का भाव चल रहे हैं। गेहूं की बात करें तो लगभग 2400 रुपया से 2650 प्रति क्विंटल हैं और काबुली चना 7000 से 7150 रुपया प्रति क्विंटल चल रहा है और प्याज की बात करें तो 1100 से 1800 रुपया प्रति क्विंटल है। और भैया हरो, फिर अनाजों की गुणवत्ता के अनुसार भाव तय होते हैं तो इते इंदौर मंडी के भाव इस समय जे हते। भैया बहन हरो, अब बात कर लेते हैं खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य की, मौसम की। इस समय देखो खरीफ की फसलें एकदम बड़वार पे हैं। सो पहलो काम निराई गुड़ाई और खरपतवार प्रबंधन को, काहे कि इस समय घास फूस बहुत ही उग जाऊ थे धान सोयाबीन उड़द मूंग में, तो 15 दिन में एक बार निराई गुड़ाई जरूर कर लियो। और दूसरो काम है ज्यादा वर्षा हो गई हुए तो खेतों में पानी की निकासी जरूर कर रहियो, नहीं तो देखो फसलों की जड़ें सड़ जाते हैं। और तीसरो काम का है भैया, बस वही हम बताए देते हैं, कीट और रोग की निगरानी इस समय बहुत ही जरूरी है। सो हफ्ता में 2 बार खेतों में जाके पत्ता पलट के देखियो, कीड़ा दिखे तो तुरंत ही कृषि विभाग या कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेके दवाइयों को छिड़काव करत रहियो। और भैया बहनों याद रखियो, निराई गुड़ाई निकासी निगरानी तभी तो खरीफ की फसल बढ़िया हुई है, अच्छी हुई है। भैया बहनों, अब हो रही है जाबे की बेरा। सो हर मंगलवार गुरुवार शनिवार को संजा बिरिया 7:30 बजे से सुनियो किसान वाणी कार्यक्रम। स्वस्थ रहे घर, स्वस्थ रहे खेत, करियो हिलमिल काम। पुष्पा बहन की अब स्वीकारो, भैया बहनों राम राम।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: बड़ी।
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, मीडियम व्यू 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए सिंगापुर में आज चौथा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भाग लिया। ये सम्मेलन पहली बार 2022 में नई दिल्ली में, दूसरी बार 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बार 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये चौथा गोलमेज सम्मेलन है भारत और सिंगापुर के बीच और इन दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने की ओर। इन नियमित मंत्री स्तरीय बैठकों के महत्व पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। एम्बेसडर सज्जनहार, आपसे सर्वप्रथम यही जानना चाहेंगे कि सिंगापुर भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट एक बायलैटरल पार्टनर है और हमारे संबंध कितने प्रगाढ़ हैं और उस संदर्भ में इस गोलमेज सम्मेलन का क्या महत्व है।
2: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जैसे आपने बताया, ये चौथा राउंड टेबल हो रहा है, आज के दिन अभी संपन्न हुआ है वहां पर सिंगापुर में। चार मंत्रियों का एक साथ आना और मिलना ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बिजी स्केड्यूल होते हैं, बहुत ही उनका जो टाइम टेबल होता है, कार्यक्रम होता है। इन सभी को मिलाकर, सभी को साथ में लाना, चार सिंगापुर के मिनिस्टर, हालांकि हमने देखा जो आज जो सिंगापुर में मुलाकात हुई है उसमें करीब 6-7 सिंगापुर के मिनिस्टर शामिल थे
1: जी।
2: और हमारी तरफ से तो जैसे आपने बताया ये चार मंत्री उसमें शामिल थे, तो इससे ये तो पता चलता है जो सिंगापुर अपने भारत के साथ संबंधों को कितना महत्व देता है। दूसरी बात इसमें ये है, जो आसियान के जो 10 देश हैं उन सब में सबसे ज्यादा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग है तो वो हमारा सिंगापुर के साथ है। करीब सिंगापुर भारत का, मैं कहूँ तो, छठा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी राष्ट्र है और करीब हमारा $36 बिलियन उसके साथ द्विपक्षीय एक्सचेंज है, ट्रेड एक्सचेंज है। अगर इसको हम देखें इस परिप्रेक्ष्य में जो पिछले सालों में कितना ये और आगे बढ़कर उभरा है, तो मैं ये कहूंगा 2004-2005 में जब हमारे संबंधों को और आगे ले जाने की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी तो तब दोनों देशों के बीच का सहयोग था करीब $7 बिलियन, आज वो बढ़कर $36 बिलियन हो गया है। हालांकि इसमें ये भी देखना होगा जो हमारा आयात है सिंगापुर से वो कहीं ज्यादा है, निर्यात हमारा उसका करीब 50% है, करीब $24 बिलियन हम इम्पोर्ट करते हैं और करीब $11-12 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट है, वहां पर निर्यात है। परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है जो इतने छोटा देश है जिसके 6 मिलियन लोग पॉपुलेशन है सिंगापुर की और वो हमारा छठा सबसे बड़ा सहयोगी राष्ट्र है। आखिरी बात सोनू जी, मैं इसमें ये कहूंगा जो अगर निवेश के नजरिए से देखा जाए, अगर पिछले साल देखें तो करीब $19.8 बिलियन का निवेश सिंगापुर की तरफ से भारत में आया, वो करीब 1/4 निवेश है जो कि भारत को मिला पूरे विश्व से, तो उसमें 1/4 हिस्सा सिंगापुर का था। अगर आप देखते हैं 2018 से तो सिंगापुर प्रथम श्रेणी पर आता है जहां से निवेश भारत में आया है। और आखिरी बात निवेश के बारे में कहूं, अगर 2000 से लेकर 2026 तक भारत में सिंगापुर से निवेश आया है करीब $200 बिलियन, जितना भी हमारे पास निवेश आया है $800 बिलियन का इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में, तो उसका 1/4 हिस्सा सिंगापुर से आया है। तो इसीलिए व्यापारिक क्षेत्र से, निवेश क्षेत्र से, उसके बाद हम अब आजकल की जो और महत्वपूर्ण जो पहलू हैं जैसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, इन सभी क्षेत्रों में भारत और सिंगापुर के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो चौथा इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल आज हुआ है उसका यही उद्देश्य है, इन संबंधों को और आगे ऊंचाई पर हम इसको लेकर जा सकें।
1: सो एम्बेसडर सर्जनहा, जैसे आपने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और सारे जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स हैं उन पर सहयोग बढ़ाने की खास तौर से आज बात हुई है। जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके तहत जैसा आपने कहा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, फिनटेक, डिजिटलाइजेशन, एआई गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, सो आपको लगता है कि ये सारे जो हाई टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स हैं इनमें हमारा जो आपसी सहयोग है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे वो हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें हमने सिंगापुर के पे नाउ के साथ 3 वर्ष पहले एक समझौता किया, जो पहला देश था जिसके साथ हमने ये किया। सो आपको लगता है कि हमारे डिजिटल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत प्रगाढ़ संबंध की पोटेंशियल है?
2: जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए आपने जिक्र किया है दोनों देशों के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसकी शुरुआत 3 साल पहले हुई थी 2024 में, जब प्रधानमंत्री मोदी का सिंगापुर में यात्रा हुई थी, और फिर पिछले साल जब वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत आए थे तो उन्होंने यही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे ले जाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया था, और उसमें हमने करीब 8 ऐसे क्षेत्र धारित किए थे, और उसमें सभी ये जो आपने बताया है, डिजिटलाइजेशन है, ग्रीन एनर्जी है, हेल्थ केयर, मेडिसिन है, सस्टेनेबिलिटी है, ये सभी चीजें उसमें शामिल होती हैं। और आज की जो मुलाकात हुई है भारत के 4 मंत्री और वहां से करीब 6-7 मंत्री सिंगापुर से, तो उनमें इसी को आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 2 वहां पर MOU भी साइन किए गए हैं मैरिटाइम हेरिटेज के ऊपर और फूड सिक्योरिटी के ऊपर, लेकर कैसे इनको और आगे बढ़ाया जाए। परंतु मैं कहूंगा जो इसमें बातचीत तो होती रही है, परंतु एक जो बहुत जोरदार कदम लिया गया था वो जब प्रधानमंत्री मोदी 2024 में सिंगापुर गए थे, तो उन्होंने उस समय शुरुआत हुई थी जो कैसे हम अपने यहाँ पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करें, और वहां की एक बहुत बड़ी कंपनी है AEM जिनके साथ सेमीकंडक्टर कंपनी, वहां पर उन्होंने विजिट किया था, उसमें उनके साथ सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भी गए थे वहां पर, और दोनों देशों ने यही बात की जो कैसे दोनों देशों के सहयोग इस क्षेत्र में जो अपना नए तकनीकी क्षेत्र है, हाईटेक क्षेत्र है, उसमें आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ट्रेडिशनल सेक्टर्स में हमारा सहयोग अच्छा बढ़ रहा है, अच्छा चल रहा है, तेजी से प्रगति कर रहा है, परंतु अब जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा AI का जमाना है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ये सब का जमाना है, और इसमें सिंगापुर ने बहुत अच्छी महारत हासिल की है, तो इसको कैसे आगे लेकर जाया जाए। पिछले 3 सालों में हमने देखा है जो काफी प्रगति की है, और आज की जो मुलाकात हुई है उसमें भी इसको काफी आगे लेकर जाया जाएगा। और एक बात मैं इसमें कहूं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की आपने बात की है, आपने फिनटेक की बात की है, तो हमारा जो UPI है और उनका जो पे नाउ है, पहला देश था ऐसा जिसके साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ, और अब तो UPI बहुत प्रचलित हो गया है, मेरे विचार से 20 देशों से ज्यादा में उसे हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। परंतु जिसे कहा जाए ये जो रास्ता सीधा सामने किया गया था, ये सिंगापुर के साथ हमारे सहयोग के साथ ही किया गया था।
1: एम्बेसडर सज्जनहार, जब हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट आज जो उभर के आया तथ्य कि डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति दी जाएगी, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लगता है स्किलिंग, ये जो अब नई उभरती टेक्नोलॉजी है उसमें?
2: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्किल डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्षेत्र उभर कर आया है, और उनके जो लीडर ऑफ द डेलीगेशन, जैसे हमारे यहाँ से निर्मला सीतारमन जी हमारी डेलीगेशन को लीड कर रही थी, और उनकी तरफ से जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गैन किम यांग हैं, उन्होंने जब इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है, क्योंकि अगर वहां पर ये एडवांस टेक्नोलॉजी की सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं, सहयोग को बढ़ाते हैं, तो अब बहुत सारी सिंगापुर की कंपनीज हैं जिन्होंने वहां पर निवेश किया है, वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें मैं ये भी बता दूं जो हमारी तरफ से अभी 2 साल पहले हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने वहां पर इन्वेस्ट इंडिया का ऑफिस खोला है, जिससे कि और ज्यादा वहां से निवेश हो सके भारत में, वहां से इन्वेस्टमेंट हो सके, और अलग अलग वहां की सिंगापुर की कंपनी भारत में आकर अपने को स्थापित कर सके और दोनों देशों के सहयोग को आगे ले जा सके। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट में ये बिल्कुल जैसे कहा जाए इंडस्ट्री बेस्ड एक एक्टिविटी इनिशिएटिव होगा, जो भी इसमें इंडस्ट्रीज लग रही हैं, जो कंपनीज आ रही हैं, वो अपने लोगों को कैसे स्किल किया जाए उसमें सिंगापुर बहुत हमारी सहायता कर सकता है और कर रहा है। इसको और आगे ले जाने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास और चाहे क्षेत्रों में जैसे आपने बताया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में हमने बहुत प्रगति की है, परंतु और जो बहुत क्षेत्र हैं जैसे ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, AI है, इसमें हमने अपने को स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हमको जोर देना है, जो कि हम सिंगापुर के सहयोग से बिल्कुल कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। और सिंगापुर भी इसमें बहुत ही तत्पर प्रतीत होता है क्योंकि वो भी देख रहा है जो भारत एक सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। हालांकि हमने देखा है विश्व में कितने ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, बदलाव आ रहा है, परंतु फिर भी भारत का जो दर है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति आगे बढ़ रही है वो काफी मजबूत है। और यह देखते हुए सिंगापुर भी चाहता है जो भारत के साथ सहयोग को और तेज किया जाए और ज्यादा प्रगाढ़ किया जाए।
1: जी बिल्कुल, कुछ आंकड़े हैं कि लगभग 9000 भारतीय कंपनियां सिंगापुर में हैं, 6 हमारे पब्लिक सेक्टर व्हीकल्स हैं, 10 बैंक हैं और सिंगापुर की भी 4 से 40 ज्यादा कंपनियां भारत में हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि जिस तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं इन्वेस्ट इंडिया को लेकर या स्किलिंग को बढ़ाने के, बायलैटरल ट्रेड आपको लगता है इससे बढ़ेगा, और जो ये आपसी संबंध है, जो प्रेजेंस है सिंगापुर की भारत में, भारत की कंपनियों की सिंगापुर में, इसमें और हम बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं?
2: जी, मेरे विचार से बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया हमारी करीब 9000 कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, इसके अलावा हमारी PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बैंक्स हैं बहुत मात्रा में वहां पर, सिंगापुर के बैंक्स भी यहां पर हैं जैसे DBS है जो कि वहां का सबसे बड़ा बैंक है, काफी यहां पर भारत में भी विस्तार कर रहा है। तो इसीलिए और ये जो इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस है ये वही है जो इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है परंतु सिंगापुर कंपनीज भी यहां पर हमको लेकर आनी है। और इसीलिए अगर आप देखें जो इसका अनुपात 9000 है भारतीय कंपनी वहां पर और करीब 440 कंपनी है सिंगापुर की जो भारत में है, और भारत इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतना बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो यहां पर यकीनन और भी सिंगापुर कंपनी आएंगी तो उनके अपना फायदा होगा और मैं ये कहूंगा जो भारत का भी फायदा होगा क्योंकि भारत में अगर निवेश होता है, भारत में अगर नई कंपनी इस्टेब्लिश होती है, न केवल स्टॉक एक्सचेंज में करें, न केवल स्टॉक मार्केट में करें, परंतु वहां पर कोई नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर उसमें निवेश किया जाए तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा जो कि हमको चाहिए, और हमारा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा। तो इसी क्षेत्र में बात की जा रही है जो वहां से जो स्किल डेवलपमेंट के लिए हैं और जो सेमीकंडक्टर हैं और जो नए एडवांस्ड एरियाज हैं मैन्युफैक्चरिंग के, उन सभी में भारत में आया जाए, सिंगापुर कंपनीज को यहां पर लाया जाए। कनेक्टिविटी की एक और बात है, जैसे हम केवल फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं, हालांकि फिजिकल कनेक्टिविटी के बारे में भी आज बात हुई जो कैसे सिविल एविएशन से और ज्यादा फ्लाइट्स दोनों देशों के बीच में हो सकती हैं, परंतु उसके अलावा चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर्स हो, इन सब प्रकार की कनेक्टिविटी को दोनों देशों के बीच में और ज्यादा जोड़ना और ज्यादा आगे ले जाना, मेरे विचार से ये दोनों देशों के हित में होगा और इसी के बारे में आज बातचीत हुई है। अगले कुछ सालों में हमें इसके जरूर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका एम्बेसडर सज्जन हार, भारत और सिंगापुर के उभरते द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर हमसे बातचीत करने के लिए।
2: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: अभी आप सुन रहे थे भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जन हार, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये

0: कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdetalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: सुर्खियों में
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। मीडियम वेव 462.94 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया के इस अंक में, और मैं हूं राहुल तिवारी। शाम का वो पहर जब मन शांत होने लगता है, जब हवाएं भी अपनी गति को थोड़ा मंद कर लेती हैं, जब फूलों की खुशबू धीमे धीमे हमारे भीतर प्रवाहित होने लगती है, जब नदियों का पानी ठहर सा जाता है, एक सुकून एक शांति का माहौल हर तरफ नजर आता है, और तब जहन में याद उठती है उस शख्स की, उस शख्स खास की जिससे हम मोहब्बत करते हैं।

अगर भुलाना भी चाहें तो भुला ना पाएं। किसी की यादों को जब अपने भीतर जज्ब करें तो फिर कैसे भला उसे खुद से दूर कर पाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश की अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
3: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि 3री याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत की

0: योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आमतौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
2: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में 2 तरीके अपनाए गए हैं। मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
3: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित है। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा

0: रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
1: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड इस चीज के लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने का टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
0: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाती संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त आवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबाल्डो डे ला एस्प्रिला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुअर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कर्शियंग।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रुपये पर बंद हुआ।
0: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Union Cabinet decides to set up a bench of Jammu and Kashmir High Court at Ladakh, announces Home Minister Amit Shah. Supreme Court forms 5-member panel to investigate violence during student protest across the country. Jharkhand High Court stays state government's decision to cancel 11th to 13th JPSC and food safety officer examinations. Government allows duty-free imports of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October. Centre unveils Delhi Master Plan 2047 to transform national capital into inclusive and world-class city. Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir elected as country's 23rd president. And in hockey, Indian women's team qualifies for second round after a goalless draw with England in Pool D match of World Cup in the Netherlands. And now the news in detail. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah today announced this, sharing a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensure constitutional safeguards. The Supreme Court has constituted a 5-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy to independently examine allegations of violence during the student demonstrations held at Jantar Mantar in New Delhi and other locations across the country last month. A report.
5: The High-Powered Inquiry Committee has been asked to examine both the allegations of excessive and disproportionate use of force by police and paramilitary forces against protesters, as well as the alleged use of violence by protesters against security personnel and injuries sustained by them. The other members of the High-Powered Inquiry Committee are former Punjab and Haryana High Court Chief Justice Ravi Shankar Jha, former Delhi High Court Judge Justice Shalinder Kaur, former CBI Director Rishi Kumar Shukla, and retired Meghalaya Director General of Police Dr. L.R. Bishnoi. A 3-judge bench comprising Chief Justice of India Suryakant, Justice Joymala Bagchi and Justice V. Mohanna passed the order while hearing a batch of writ petitions concerning the nationwide demonstrations over alleged examination paper leaks. The High-Powered Inquiry Committee has been directed to deliver an interim report on its initial findings at the earliest. Swati Rakheja, Akashvani News, Delhi.
4: The Jharkhand High Court today stayed until further orders the state government's decision to cancel appointments made through the 11th to 13th JPSC civil services examination and the food safety officer recruitment. Justice Deepak Roshan passed the order while hearing 3 separate petitions challenging the government's Tuesday notification cancelling the examinations and appointments. The court directed that the selected candidates be reinstated, observing that they could not be removed without following due process and the principles of natural justice. The court sought a response from the state government and the Jharkhand Public Service Commission and fixed 15th of September for the next hearing. The government has allowed duty-free imports of up to 10 lakh metric tons of raw sugar until 31st of October this year. The Directorate General of Foreign Trade, in a notification issued today, said imports of raw sugar will be allowed without duty under a tariff rate quota of 10 lakh metric tons subject to specified conditions. The move comes ahead of the festival season when sugar demand typically increases and follows concerns over supplies in the domestic market. India is the world's second largest sugar producer. The government unveiled the Delhi Master Plan 2047 today. The master plan provides the long-term spatial, economic and institutional framework to transform Delhi into a globally competitive, environmentally resilient and inclusive capital. It will combine economic dynamism, technological innovation and high standards of livability while preserving its rich historical and cultural heritage. The master plan for

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है चित्र गीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं गीत फिल्म के इस गीत के साथ, मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रानी रूपमती फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, भरत व्यास के बोल और SN त्रिपाठी का संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं नीलकमल, इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्र गीत। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का

इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz आपके लिए लेकर आ रहा है इस शुक्रवार यानी कल दिनांक 21 अगस्त 2026 सुबह 10:32 से 12 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। ये कार्यक्रम कल यानी शुक्रवार दिनांक 21 अगस्त 2026 को सुबह 11:32 से 12 बजे तक FM 101.6 MHz विविध भारती चैनल पर प्रसारित हो रहा है। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान इस कार्यक्रम में सीधे प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। एक बार फिर से फोन नंबर सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। शुक्रवार दिनांक 21 अगस्त 2026 सुबह 11:32 से 12 बजे तक विविध भारती चैनल पर आप फोन करके साइबर क्राइम रोकने हेतु ये विशेष जानकारी हमारे विशेषज्ञ सुनील मेहता DCP इंदौर कमिश्नरेट और नरेंद्र सिंह रघुवंशी स्टेट साइबर सेल इंदौर से जान सकते हैं। आप हमें कल यानी शुक्रवार को 21 अगस्त 2026 को सुबह 11:32 से 12 बजे के बीच फोन कर सकते हैं और कार्यक्रम सुन सकते हैं विविध भारती FM 101.6 MHz पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुने फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम मनभावन।

मन भवन सुनने वाले सभी श्रोताओं को राहुल तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम मन भवन में। हाजिर हैं हम लेकर आपके खत, आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। और वैसे तो हमारे जो नियमित श्रोता हैं वे सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अपने खत किस प्रकार से आकाशवाणी तक पहुंचाना है, लेकिन जो नए श्रोता ऐप के माध्यम से, रेडियो सेट के माध्यम से, देश भर से हमें सुन रहे हैं, उन्हें हम एक बार फिर से बता दें कि इस कार्यक्रम में आप भी अपना पत्र हमें भेज सकते हैं। हमें अपने नए श्रोताओं के पत्रों का हमेशा इंतज़ार रहता है, तो हमें पत्र भेजने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक साधारण सा पोस्ट कार्ड जो कि किसी भी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है उसे लेना है, और उस पर सबसे पहले आपको लिखना है अपनी फरमाइश, फिल्म का नाम, गीत का नाम, गीत के बोल, साथ ही साथ आप और आपके कौन कौन सदस्य जो है इस गीत को सुनना चाहते हैं उन सभी के नाम, और उसे भेज देना है इस पते पर। सबसे पहले आप कार्यक्रम का नाम लिखेंगे, जैसे मनभावन कार्यक्रम है तो आप लिखेंगे कार्यक्रम मनभावन, उसके नीचे हमारा पता होगा आकाशवाणी केंद्र, मालवा हाउस, इंदौर, और इंदौर का पिन कोड जो है वो है 452001, यानी 452001। तो इस पते पर आप अपने खत हमें भेज सकते हैं, और निश्चित रूप से आपके खतों को पढ़ते हुए, आपके नाम को यहाँ से बोलते हुए हमें भी उतनी ही खुशी होती है जितनी कि आपको अपना नाम और अपनी पसंद का गीत सुनकर होती है। तो चलिए, बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा श्रोताओं कार्यक्रम में, क्योंकि आज मन भवन कार्यक्रम है और बहुत सारे खत मेरे सामने हैं, बहुत सारे गीतों की फरमाइश जो है वो इस वक्त यहाँ पर प्लेलिस्ट में लगी हुई है। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहली फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की हमने कार्यक्रम में ली है, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौहाणकर, राही सरिता गौहाणकर, प्रिंस एकांश गौहाणकर, मुंबई से सिद्धांत गौहाणकर, प्रणीता अर्जुन गौहाणकर, और नागपुर से वैशाली शैलेश, सुमित गौहाणकर और ध्वनि, चांदुर बिस्वा से नारायण खड़से, ललिता खड़से, स्वाति, परी, संजना, गणेश और कार्तिक खड़से, और राजकोट से हमारे श्रोता हैं मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। तो आइए, आप सभी की पसंद पर सबसे पहले कार्यक्रम में आज सुन रहे हैं अनोखी अदा फिल्म से ये कव्वाली, किशोर कुमार की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनभावन। और रात का ये जो पहर है, ये जो समय है, निश्चित रूप से आपकी फरमाइशें आप तक पहुंचाना और ये सुकून भरे वो पल हैं जब आप निश्चित रूप से सभी अपने कामों से निवृत्त होकर रेडियो के पास होंगे और आप सभी अपने नाम को सुनने के लिए उतने ही उत्साहित होंगे जितना हम आपके नामों को यहाँ से प्रेषित करने के लिए उत्साहित हैं। तो आइए अगली फरमाइश आप तक पहुँचाते हैं बिना किसी देरी के। ये फरमाइश हमने ली है फिल्म अमर अकबर एंथोनी से। मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। पसंद हमारे इन श्रोताओं की, राजपुर से घीसू दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे। गांव कोटड़ा बहादुर, जिला मंदसौर से हमारे श्रोता हैं तूफान दांगी, मिस्टीना और लक्ष्य बाबू। और नेपाल पैलेस सागर से हमें खत लिखा है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबिन और इनके परिवार के सदस्यों ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

0: तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: श्रोताओं, आइए मनभावन कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं अगली फहरिस्त की ओर, अगली फरमाइश की ओर। यह फरमाइश हमें भेजी है इंदौर से हमारे श्रोताओं ने, लाभ्या भेरू से, अनिल बामलिया, प्रमीना बामलिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और समस्त बामलिया परिवार के सदस्य। सुदामानगर इंदौर से हमारे श्रोता अनिल भंडारे, उषा भंडारे, समता, चित्रा, निशा और इनके परिजन। और इंदौर से हमारे एक और श्रोता हैं सपना संगीता रोड से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आइए आपको सुनवाते हैं प्रेम पुजारी फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। नीरज ने इसे लिखा है और तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने।
7: आत्मा बदलना चाहती है जो हिंसा और मारपीट में विश्वास रखती हो। एक तरफ मन कहता है कि किसी की जान लेना पाप है और हमेशा दूसरे के दुख पर तड़पता है, और दूसरी तरफ ये फौजी वर्दी एक ऐसे फर्ज में जकड़ लेने की कोशिश में है कि मौका आने पर एक निशान बेशुमार जाने लेने के लिए मजबूर करते हैं। क्या ऐसा वक्त आने पर मैं फर्ज के सामने अपने अहिंसा के नियमों को ठुका सकूंगा? मैं कह नहीं सकता।

श्रोताओं विविध भारती इंदौर पर कल आप एक कार्यक्रम सुनेंगे जिसके संबंधित ये सूचना ध्यान रखिएगा, साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz आपके लिए 21 अगस्त 2026 शुक्रवार सुबह 11:32 से 12 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान का प्रसारण करेगा। इसमें साइबर अपराधों से जुड़ी जानकारियां आप हासिल कर सकेंगे। हमारे विशेषज्ञ सुनील मेहता जी DCP इंदौर कमिश्नरेट और नरेंद्र सिंह रघुवंशी जी स्टेट साइबर क्राइम सेल इंदौर से। इस कार्यक्रम में आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224 और इंदौर का STD कोड है 0731। एक बार फिर से नंबर याद रखिएगा, STD कोड है 0731, नंबर है 2710223 और 2710224। तो कल 11:32 से 12 बजे तक सुनना ना भूलें कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। ये कार्यक्रम आप विविध भारती 101.6 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर सुन सकते हैं। आइए मनभावन कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब अगली फरमाइश हम आपको सुनवा रहे हैं आंसू जो बन गए फूल, इस फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में गोविंद मुनिस के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। पसंद हमारे इन श्रोताओं की कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज। सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मुस्कान मालाकार और इनके परिजन और संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर हक डावर। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं अनामिका फिल्म से गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। पसंद आप सभी श्रोताओं की। सोमनाथ तालुका जिला जालाना से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश कार्तिक, अश्विनी वैष्णवी जगदाले, हर्षुल सांगवी, वैभव गौरव लोखंडे, भाव सिंहपुरा, औरंगाबाद से मेघराज युवराज कोलते, रिधोरा देवी, रुद्र कोलकर और इनके परिजन। महाराष्ट्र से ही गोराई से हमारे श्रोता है दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे। और ग्राम मोहद से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, राजूबाई, परू, मुबारक बारे, विलास, मनोहर ठाकुर, तैमूर। रावेर से हमारे श्रोता हैं अरशद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी। और बुरहानपुर ग्राम मोहत से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज़ रोज़मीन और इनके सभी परिजन। आइए आपको सुनवाते हैं अनामिका फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन आकाशवाणी इंदौर से। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। नूरी फिल्म से ये फरमाइश है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़, जानिसार अख्तर के बोल खयाम का संगीत। पसंद आप सभी की छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। और यवतनमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी मनवर। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

ये श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आप तो ऐसे ना थे इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। निदा फाजली ने इसे लिखा है, संगीत रचना उषा खन्ना की है। इंदौर से हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश है। इंदौर से हमारे श्रोता हैं गुमाश्ता नगर से अनिल कौचाले, साबिहा, सुषमा, आरती, अमृता, रूपाली, तृप्ति, पूजा और श्वेता। फलदाना का इंदौर से हमारे श्रोता हसीना भी मंसूरी, अमीना भी मंसूरी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। और कृष्ण बाग कॉलोनी इंदौर से हमारे श्रोता हैं नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उमेद राजिया, जुनेद अलीना, आयत और मुआज मंसूरी। आइए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

एक धा मिल गया। इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश और रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री, चांदुर विश्वास से नारायण भाव खड़से, रक्षा खड़से, ललिता संजना, गणेश कार्तिक, मालती और प्रयाग चौधरी, और दतरेंगी भाटापारा से किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा।

और आई श्रोताओं, मन भवन कार्यक्रम के अंत में आपको हम सुनवा रहे हैं एन इवनिंग इन पेरिस, इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, पसंद आप सभी की मॉडर्न टाउन करनाल से मीनाक्षी तिवारी, सुधीर नूतन, मुरी गेट दिल्ली शहर से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, और लिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके परिवार के सदस्य।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, आप शास्त्रीय संगीत में सुनते हैं ललित मोदी का सरोद वादन, राग है बागेश्री।

शास्त्रीय संगीत में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे ललित मोदी का सरोदवादन, राग था बागेश्री। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर

0: और देश के अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नवीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली तीन अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। एम्स्टर्डम में एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड के मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ दो मुकाबले ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence today and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs, and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet Secretary, Secretaries of key ministries and departments, and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Minister of Defense, Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on PM Modi today. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The PM outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. PM Modi also recalled his detailed discussions with Japanese counterpart Sanae Takaiji during her recent visit to India for the 16th India-Japan Annual Summit in July this year. Mr. Modi also appreciated the steady momentum in defense collaboration between India and Japan. Sharing a social media post, Mr. Modi said that they had an excellent conversation on deepening defense and security ties between India and Japan. The PM noted that the special strategic and global partnership between the two nations is an important anchor for peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah today announced this, sharing a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensuring constitutional safeguards. PM Modi has congratulated Hakainde Hichilema on being re-elected as the President of Zambia. In a social media post, Mr. Modi noted that India greatly values its multifaceted partnership with Zambia. The PM added that he looks forward to working together with President Hichilema to further strengthen India-Zambia relations. Veteran Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir was today elected as the country's 23rd president. The 78-year-old leader secured 255 votes in the presidential election held at the Jatiya Sangsad, the country's parliament. He defeated former army officer Oli Ahmed, the candidate backed by the 11-party opposition alliance led by the far-right Bangladesh Jamaat-e-Islami and the country's first major student-led political party, National Citizen Party, who received 88 votes. In badminton, the fifth-seeded Indian pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty defeated Junaidi Arif and Roy King Yap of Malaysia in the pre-quarterfinals men doubles match at the BWF World Championships 2026 in New Delhi. The Indian pair had lost the first game 21-23 but bounced back to win the second and third games 21-19, 21-17 in a close encounter. The duo will now face third seeds Liang Wei Kang and Wang Chang of China in the quarterfinals. In hockey, the Indian women's team has advanced to the second round of the FIH World Cup after playing out a goalless draw against England in their final Pool D match at Amstel Wien in the Netherlands. Both teams created opportunities but failed to find the back of the net, with India's defense holding firm throughout the contest. The draw helped India, led by Salima Tete, sealing a vital second place finish in Pool D. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। इस वक्त रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी यह सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर हम अपनी प्रातःकालीन सभा में आप सभी की सेवाओं में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।